लाइटिंग वेव 336.7 मीटर अर्थात 800 किलो हर्ट्स और FM 102.9 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि तदनुसार 7 जुलाई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा मीडियम वेव एवं FM पर एक साथ आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सस के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

भक्ति संगीत की श्रद्धा रूपी पुष्प सबसे पहले अर्पित करते हैं श्री गजानन लंबोदर के चरण कमलों में, जो दुखों को हरने वाले हैं, सुख समृद्धि और वैभव प्रदान करने वाले हैं।

अभी आपने भजन सुने बेला सुलाखे और अनूप जलोटा की आवाजों में, और अब नाते मुबारक के साथ इबादत करते हैं। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हसन और इमाम हुसैन, जिनको जालिमों ने जहर देकर और इमाम हुसैन को भूखा प्यासा करबला में शहीद कर दिया, उनके खानवादों को, उनके बेटों को, दोस्तों अहबाबों को, सबको शहीद कर दिया। तो आइए इन्हीं के खानवादों का जिक्र करते हैं इस इबादत में शामिल।

सत गुरु हमारे बिगड़े कार्य संवारने वाले आप ही तो हैं। हमें इतना ज्ञान दीजिए कि परमात्मा को पहचान सकें, अपने हृदय में बसाने के लिए मन को पवित्र बना सकें। आराधना करते हैं हम अपने प्रभु की।

हे माँ, जबकि ठोकरों ने हमें मायूस किया है, एक तेरा ही सहारा है, तू ही दुखों को हरने वाली है, अपनी कृपा बरसाने वाली है। तेरे दरबार में खड़े हैं, विनती कर रहे हैं तेरे सारे भाई।

कार्यक्रम वंदना में अभी आप सुन रहे थे बेला सुलाख के अनूप जलोटा, शमीम मुबारक बेगम, गोपाल सिंह रागी और एलएस लखा को। इसी भजन के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: अगर चित्त शुद्ध हो तो शत्रु भी मित्र हो जाता है, उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है, दुख भी सुख प्रदान करने लगता है। आग की ज्वालाएं शीतल पड़ने लगती हैं, वो प्राणी मात्र को प्राणों से भी प्रिय हो जाता है। संत तुकाराम नित्य समीप के मंदिर में कीर्तन करने जाते थे। उनके अभंग बड़े लोकप्रिय थे। तुकाराम की प्रसिद्धि देखकर कुछ विरोधियों ने मंदिर के मार्ग में कांटे बिखरा दिए। तुकोबा ने देखा कि मंदिर में दर्शन के लिए जाने वाले भक्तों को इससे कष्ट होगा, अतः उन्होंने कांटे बटोर कर किनारे कर दिए। इस पर उन दुर्जनों ने उन्हीं कांटों से तुकाराम पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। तुकाराम जी वहीं लहूलुहान होकर अचेत हो गए। चेतना प्राप्त होने पर उन्होंने कहा कि आपने मेरा बड़ा उपकार किया, इससे मेरी क्षमा की सीमा की परीक्षा भी हो गई और मैंने क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली। बुरे के कारण भले की पहचान होती है, दुर्जनों के कारण ही सज्जन प्रकाश में आते हैं। एक के बिना दूसरे की कोई कीमत नहीं। विष अमृत की योग्यता बढ़ाता है, कड़वा मीठे की और हानि लाभ की। मन की शुद्धि करनी हो तो काम क्रोधादि को संसर्ग टालना चाहिए। दंभ दूर कर ईश्वर का स्मरण करते हुए अपना कर्म करना चाहिए। जब तक हमारा मन शुद्ध न हो, हमें दूसरों को नसीहत देने का कोई अधिकार नहीं है। चित्त शुद्ध होते ही स्थिर हो जाता है और इष्ट पर जम जाता है। मंथन करने के बाद ही नवनीत की प्राप्ति होती है, इसलिए सुकर्म बार बार करते रहना चाहिए। पौधा जब तक जमीन में अच्छी तरह जम नहीं जाता, तब तक उसे पुनः पुनः सींचने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे कार्य में धैर्य की आवश्यकता है। जो सोना कसौटी पर कसा जाता है, आग में परखा जाता है, उसकी कीमत ऊंची होती है। जो दुखी लोगों को अपनाता है वही साधु है, देव वहीं पर हैं। सज्जनों का चित्त बाहर भीतर एक सा मृदु रहता है। जो जगत के आघातों को सहता है वही साधु है। जैसे चंदन अग्र से मूल तक सुगंधित रहता है, पारस का कण भी लोहे को सोना बनाने की शक्ति रखता है, शक्कर मीठी होती है, उसी प्रकार संतों के पास अवगुण नहीं मिलते। संतों की संगति से ही मन वचन और कर्म पवित्र हो जाते हैं।
0: ये था आज का चिंतन। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। 6:35 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर विनय वर्मा।
2: स्वास्थ्य संदेश के श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, जीव जंतु के शरीर में जन्म से ही विद्यमान रोगों से लड़ने वाली सामान्य व्याधि क्षमता को नैसर्गिक व्याधि क्षमता यानी नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। उचित आहार विहार के पालन से यह क्षमता बढ़ती है या बनी रहती है तथा अनुचित आहार विहार करने से यह घटती है या नष्ट होती है। व्यक्ति के आहार विहार, रहन सहन और पथ्य अपथ्य पालन के आधार पर यह व्याधि क्षमता अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। इसीलिए कुछ व्यक्ति तो उत्तम व्याधि क्षमता वाले होते हैं तो कुछ व्यक्ति क्षीण व्याधि क्षमता वाले होते हैं। व्याधि क्षमता जब बलवान होती है तब शरीर प्रायः निरोग रहता है और यदि रोग हो जाए तो जल्दी ही ठीक हो जाता है और इस कारण ऐसे लोगों की आयु दीर्घ हुआ करती है। इसके विपरीत जिनमें व्याधि क्षमता दुर्बल या नगण्य होती है उनका शरीर बार बार रोगग्रस्त होता रहता है और रोग जल्दी ठीक भी नहीं होता। व्याधि क्षमता के कुछ प्रकार होते हैं। कुछ संक्रामक रोगों के होने पर शरीर में उन रोगों के प्रति उत्पन्न होने वाली व्याधि क्षमता को उपार्जित व्याधि क्षमता यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। यह कुछ में अल्पकालिक, कुछ में दीर्घकालिक और कुछ में आजीवन रहती है। वैक्सीनेशन द्वारा विशिष्ट व्याधि क्षमता उत्पन्न की जाती है, उसे कृत्रिम व्याधि क्षमता यानी आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन कई बार हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर के स्वस्थ ऊतकों और बाहरी तत्वों यानी एंटीजन के बीच भेद नहीं कर पाती है और कई बार शरीर के स्वस्थ ऊतकों को हानि पहुंचाने लगती है। ऐसे में व्यक्ति स्वस्थ नहीं महसूस करता है। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम प्रोटीन, बायोकेमिकल्स और कोशिकाओं से मिलकर बनता है जो हमारे शरीर को बाहरी बैक्टीरिया तथा वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन कभी कभी इस सिस्टम से भी गलती हो जाती है और यह शरीर में मौजूद प्रोटीन्स को ही नष्ट करना शुरू कर देता है, जिससे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे ऑटो इम्यून बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। शोध के मुताबिक कुल जनसंख्या का 1% हिस्सा ऑटो इम्यून बीमारियों की चपेट में है, जबकि 10 में से 9 महिलाएं और 1 पुरुष ऑटो इम्यून रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। यानी इस रोग में सबसे ज्यादा महिलाएं ही ग्रस्त हैं। जोड़ों के दर्द, लंबे समय तक बुखार रहना, रक्तस्राव, रुक न रहा हो और ये लक्षण युवा उम्र की महिलाओं में हो तो ऑटो इम्यून डिजीज होने की आशंका और अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी है समय पर सही इलाज और जीवन शैली में संतुलित बदलाव। ऐसे मरीजों को खाने में वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए। खमीर युक्त भोजन जैसे डोसा, जलेबी, दही आदि से परहेज करना चाहिए। खट्टी व ठंडी चीजों से भी परहेज करें। वैसे किसी पदार्थ का सेवन न करें जो सुपाच्य न हो। लहसुन, जीरा, हल्दी, धनिया, अदरक, मूंग दाल और सौंठ का प्रयोग जरूर करें। खान पान के अलावा दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव लाकर ऑटो इम्यूनिटी की बीमारियों, खास रूप से रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षणों पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। जैसे ठंडे पानी से स्नान करने से परहेज करें क्योंकि इससे रक्त संचार प्रभावित होता है। हमेशा गुनगुना पानी से स्नान करें या स्टीम बाथ लें। दिन में नींद न लें, इससे मांसपेशियां कड़ी होती हैं और पाचन क्रिया धीमी हो जाती है। रात में सोने से पहले गर्म पानी से हाथ पैरों को धोएं या सेकें, इससे रक्त संचार बढ़ता है। नीम और अरंडी के पत्तों से भी जोड़ों की सिकाई कर सकती हैं। दिन भर के तनाव से मुक्त और क्षतिग्रस्त मांसपेशियों को दुरुस्त करने के लिए नियमित और भरपूर नींद जरूर लें। अनावश्यक तनाव से बचें। ऑफिस या घर के काम के दौरान ज्यादा तनाव महसूस कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए पैदल टहलने निकल जाएं या ध्यान करें, कोई मनपसंद किताब पढ़ें या संगीत सुने। इससे आपके शरीर के स्ट्रेस हार्मोन्स का स्तर घटेगा जो कि शरीर में सूजन पैदा करते हैं। इस तरह जीवन शैली में बदलाव लाकर आप अपने लिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार कर सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में जानकारी बस यहीं तक। नमस्कार।
0: स्वास्थ्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रोग प्रतिरोधक क्षमता विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विनय वर्मा। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं।

आइए अब एक नजर डालते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले इस सभा की शेष और दूसरी सभा की प्रमुख कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:45 पर रोजाना की भांति प्रसारित किया जाएगा श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। लोक रंग कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा 7:00, जिसमें आज की कलाकार होंगी रंगिनी। फिल्मी गीतों का एंटरटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे हम लेकर हाजिर होंगे 7:31 पर। हंड्रेड 2.9 मॉर्निंग हिट्स में आज सुनिएगा नए फिल्मी गीत 8:45 पर। गौरव भारत देश के ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा 9:25 पर। उर्दू प्रोग्राम 9:30 पर नशर किया जाएगा आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। 9:50 पर उपशास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे मुन्ने काका तबला वादन, ताल झपताल, सारंगी पर संगत देंगे जाकिर खां। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर प्रसारित किया जाएगा 10:05 पर। 10:30 पर आज आप सुनेंगे कार्यक्रम सुनहरा दौर। 11:00 प्रसारित किया जाएगा नाटक जलवायु संकट दोषी कौन, लेखिका होंगी नीलम सक्सेना। श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम होगा आज मन भवन 11:30 पर। ईमेल संदेशों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत आपके नाम हम लेकर हाजिर होंगे 12:10 पर। 1:15 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम परिवार जगत, जिसमें चर्चा का विषय होगा घर का स्वस्थ वातावरण और मानसिक स्वास्थ्य। इसके अलावा वार्ता होगी बच्चों की शिक्षा और तनाव मुक्त जीवन शैली। वार्ताकार होंगी सोनी गुप्ता। क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में सुनिएगा वृक्षारोपण और हमारा योगदान विषय पर जानकारी। साथ ही दी जाएंगे हेल्थ टिप्स और बरसात के मौसम में बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा पर जानकारी दी जाएगी। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग का प्रसारण समय रहेगा 2:30 पर।

फिल्मी गीतों का कम्पेयर कार्यक्रम आज शाम आप तक पहुंचेगा। शाम 5 बजे 5:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाणी। 6:20 पर किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत, जिसमें चर्चा का विषय होगा ड्रैगन फ्रूट की खेती से अधिक लाभ कैसे लें। भेंटवार्ता होगी डेयरी फार्म प्रबंधन पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर पंकज, आपसे बातचीत करेंगे अनिल किशोर। कानून और हम, ये कार्यक्रम आप तक पहुंचेगा शाम 7 बजे। सुगम संगीत में सुनिएगा गजलें 7:31 पर। कलाकार होंगे राजेंद्र मेहता और नीना मेहता। गीत गाता चल कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8 बजे। 9:30 पर सुनिएगा कवि गोष्ठी, जिसमें कला कवि होंगे प्रतिभागी शिव कुमार शर्मा चंदन, डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय, आशीष कुमार शर्मा, सतीश चंद्र शर्मा। 10 बजे प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। गीतांजलि का समय रहेगा रात्रि 10:30 पर। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए श्री रामचरितमानस से आज का प्रसंग। आज सुनिए भाग संख्या 351।

लंका से विदा होने की घड़ी है। पुष्पक विमान उत्तर दिशा में उड़ रहा है। ऊंचे सिंहासन पर सीता सहित श्री राम विराजमान हैं। वे जनक नंदिनी को वे स्थान दिखाते हैं जहां मेघनाथ, कुंभकर्ण, रावण आदि का वध हुआ, वो स्थल जहां से सेतु बांधा गया, वो भी जहां रामेश्वर महादेव की स्थापना की गई।

0: चतुर्देशीय प्रवासस्य द्वितीय चरणे बहरीन नगरं सम्प्राप्तवान्। अत्रावसरे सः बहरीन देशे निवसद्भिः प्रवासी भारतीयैः सह वार्तां साधितवान्। भारतर्तुविभागेन अद्य गुजरात सौराष्ट्र कच्छ मध्य महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक प्रदेशेषु अतिवृष्ट्या सह प्रचंड वृष्ट्यै रेड अलर्ट इति रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता। आगामी दिनद्वयोः दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब बिहार छत्तीसगढ़ हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड आंतरिक कर्नाटक मध्य प्रदेश विदर्भ उपम हिमालयी पश्चिम बंग सिक्किम राज्येषु प्रचंड वृष्टिः भविष्यति इति विभागेन पूर्वानुमानितम्। अंडमान निकोबार द्वीपेषु आंध्र प्रदेशे गांगेय पश्चिम बंग प्रदेशे अरुणाचल प्रदेशे असम राज्ये मेघालये छत्तीसगढ़े नागालैंडे मणिपुरे मिजोरम राज्ये त्रिपुरा राज्ये च अग्रिमेषु त्रिषु चतुर्षु दिनेषु मेघगर्जनेन सह विद्युद्योतनम् झंझावातः च भविष्यति इत्यपि विभागेनोक्तम्। फुटबॉल क्रीडायां स्पेन देशेन गतरात्रौ डलास क्रीडांगणे राउंड ऑफ 16 क्रीडायां पोर्चुगल देशः 1-0 इत्यंकांतरालेन पराजित्य फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। स्पेन इदानीं शुक्रवासरे लॉस एंजलिस क्रीडांगणे यूएसए बेल्जियम वा देशं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग। आज के कलाकार हैं धर्मपाल सिंह। सुनिए उनकी गाई हुई रागनी।
2: संध्या तर्पण हवन।

लोक गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग में अभी आप सुन रहे थे धर्मपाल सिंह की गाई रागनी। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है।

0: गुप्ता शानदार हिट फिल्मी गीतों के साथ कीजिए अपने दिन की खुशगवार शुरुआत।
1: सुनिए 102.9 मॉर्निंग हिट्स सवेरे 8:45 से 9:15 तक
0: प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार।
2: 102.9 मॉर्निंग हिट्स आकाशवाणी रामपुर से।
3: मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:18 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित, स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। 12 जुलाई को प्रदेश भर में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत तथा बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से दिखाई हरी झंडी। अब समाचार विस्तार से। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा के इस्तीफे को मंजूर कर लिया गया। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने यह जानकारी दी।
1: इस न्यास के बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अनुसार त्याग पत्र देते ही वह स्वीकृत माना जाता है और इसलिए हम लोगों के पास अन्य कोई चारा ही नहीं था। ऐसी स्थिति में और हम लोगों ने उसका स्वीकार भी कर लिया। उस समय हमने चंपत राय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है।
0: ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: इससे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने पत्र के माध्यम से कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता की घटना से वह बेहद आहत हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा विश्वास है। उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने कल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद एक प्रेस वार्ता में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट के गठन के साथ ही स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 का प्रस्ताव भी पारित किया गया।
2: 17,000 स्टार्टअप हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। इसको और आगे बढ़ाने के लिए इंक्यूबेटर्स और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बीच एक समन्वय स्थापित करने के लिए और स्टार्टअप मिशन डायरेक्टरेट की स्थापना की जाएगी। अभी तक स्टार्टअप का कार्य केवल यूपीएलसी देखती थी। इसकी एक अलग बॉडी होगी जिसमें सीईओ होंगे और नीचे के एक इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से होगा।
0: श्रम और सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने श्रम विभाग की ओर से गोरखपुर और मुरादाबाद में 100-100 बेड के अस्पताल तथा वाराणसी में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए निशुल्क भूमि आवंटन को सहमति दी है।
3: गोरखपुर में 5 एकड़ जमीन हॉस्पिटल बनाने के लिए दी जा रही है, मुरादाबाद में भी 5 एकड़ जमीन 100 बेड के हॉस्पिटल को बनाने के लिए दी जा रही है और 13 एकड़ जमीन बनारस में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए भारत सरकार को निःशुल्क आवंटित की जाएगी। जो मेडिकल कॉलेज बनारस में बन रहा है उसमें 50% सीट जो MBBS की होगी वो श्रमिक के बच्चों के लिए आरक्षित होगी, 18% उसमें राज्य सरकार का आवंटन होगा और 7% केंद्र सरकार उसमें छात्रों का चयन करेगी।
0: संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि बैठक में शाहजहांपुर जनपद के जलालाबाद कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को स्वीकृति दी गई। बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
4: कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के होमगार्ड्स एवं उनके परिवार के सदस्यों को कैशलेस सुविधा का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से चयन को मंजूरी दी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: कैबिनेट ने नगर निगम गोरखपुर और मुरादाबाद द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किए जाने तथा अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने के लिए धनराशि उपलब्ध कराए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आगामी 12 जुलाई को एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत उत्सवपूर्ण वातावरण में एक दिन में 35 करोड़ पौधों का वृहद वृक्षारोपण महायज्ञ आयोजित किया जाएगा।
5: 12 जुलाई को इसके लिए हम लोगों ने तिथि तय की है। हर एक घंटे में कहां कहां पर कोई बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है ये भी हम लोग लाइव दिखाएंगे। कितना वृक्षारोपण के लक्ष्य को हमने प्राप्त किया है इसको भी हम वहां पर बताते हुए जाएंगे। आपको हर टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत होंगी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज के कालीघाट पर स्थित प्रेरणा पार्क का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और अशोक सिंगल की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्र है कि विकास करने के लिए विरासत का सम्मान करना जरूरी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से टनकपुर से पीलीभीत और बरेली होकर महाराष्ट्र के नांदेड़ जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद पीलीभीत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि नई ट्रेन के चलने से पूर्णागिरी देवी मंदिर, नेपाल रीठा साहेब आदि कैलाश और नानक मत्ता साहेब तक यात्रियों की पहुंच सुगम होगी।
6: जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ था पीलीभीत की धरती पे और उन्होंने कहा था कि पीलीभीत का कायाकल्प करके दे देंगे और मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा ट्रेनें यहाँ चलने का काम नरेंद्र मंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। ये ट्रेन सिर्फ जुड़ाव उद्योग बनाता है। भारत की जनता इस पीलीभीत की धरती पे आएगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, आमदनी के जरिए मिलेंगे।
0: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री प्रसाद ने शाहजहांपुर तक विस्तारित टनकपुर पीलीभीत पैसेंजर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में कथित अनियमितता के मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर। कृष्ण मोहन को बनाया गया अंतरिम महासचिव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 प्रस्ताव पारित। स्टार्टअप नीति 2026 और डाटा सेंटर नीति 2026 को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। 12 जुलाई को प्रदेश भर में लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टनकपुर से पीलीभीत तथा बरेली होकर महाराष्ट्र जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से दिखाई हरी झंडी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
7: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
8: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
9: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। अब समय है फिल्मी गीतों का इंफरटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे का।

कार्यक्रम सुबह सवेरे में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कबूल कीजिए इरम फातिमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, सबसे पहले कार्यक्रम में बात करते हैं आज के इतिहास की। आज के इतिहास में क्या कुछ हुआ खास, हम आपको बता दें कि आज के इतिहास में बहुत सी घटनाएं घटित हुई। 1896 में फ्रांस के लुमियर ब्रदर्स ने मुंबई के वाटसन होटल में पहली बार 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया था, जिसकी टिकट 1 रुपए थी। 1550 में यूरोप में पहली बार 7 जुलाई को

चॉकलेट पेश की गई थी तब से मनाया जाता है विश्व चॉकलेट दिवस। 1999 में कारगिल युद्ध में निडरता साहस का परिचय देने वाले भारतीय सेना के जांबाज कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए। आज ही के दिन 1981 में भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक और दिग्गज क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का जन्म हुआ था। वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर क्रिकेटर गैरी सोबर्स का वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर क्रिकेटर का जन्म हुआ था 1936 में आज ही के दिन। पुर्तगाल के लिस्बन में एक वैश्विक सर्वेक्षण के आधार पर दुनिया के नए 7 अजूबों की घोषणा 2007 में आज ही के दिन की गई थी जिसमें भारत का ताजमहल भी शामिल हुआ था। 2017 में संयुक्त राष्ट्र यूएन ने परमाणु हथियारों पर रोक लगाने वाली ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि TPNW को स्वीकार किया था। 1981 में सोलर चैलेंजर नामक सौर ऊर्जा से चलने वाले विमान ने पहली बार इंग्लिश चैनल को पार कर इतिहास रचा था। आज ही के दिन अपनी खास सूफी गायकी के लिए मशहूर भारतीय पार्श्व गायक कैलाश खेर का जन्म 1973 में हुआ था। आज ही के दिन रंग दे बसंती और भाग मिल्खा भाग जैसी बेहतरीन फिल्में बनाने वाले निर्देशक और फिल्म निर्माता राकेश ओम प्रकाश मेहरा का जन्म 1963 में हुआ था। 7 जुलाई 2021 में ट्रेजडी किंग कहे जाने वाले महानायक दिलीप कुमार का निधन हुआ था। दोस्तों ये था आज का इतिहास और अब सुनिए ये संदेश।

साथियों, आप देख रहे हैं कि गर्मी अपना कहर ढा रही है। हर तरफ उमस और एक गर्माहट का आलम है, जिसमें कि जिंदगी उलझी उलझी सी, बेचैन सी है और कोई भी काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि गर्मी में घर से बाहर निकलना एक पूरा मसला है और इसलिए गर्मी में जाम भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जाम लगने की वजह से लोग गर्मी से बचने के लिए तेज़ रफ्तार गाड़ियां चला रहे हैं और ये ध्यान नहीं देते कि इससे उनकी और सामने वाले की जानों का खतरा भी हो सकता है। आए दिन आप देख रहे हैं कि रास्तों में कभी ई रिक्शा को कुचलता हुआ कोई वाहन गुजर गया और ई रिक्शा वाले की मौत हो गई, और कभी बाइक सवार एक छोटी फैमिली को पीछे से टक्कर मार दी किसी बड़े वाहन ने और वो फैमिली गिरी गड्ढे में और जान बच गई लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो दोस्तों, वाहन चलाते वक्त चाहे वो ट्रक ड्राइवर हों, चाहे वो बाइक सवार हों या फोर व्हीलर चला रहे हों, सभी को एक दूसरे का ध्यान रखकर गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि आए दिन हादसे हो रहे हैं और जानों का नुकसान हो रहा है, जान का भी और माल का भी हर तरीके से। और सोचिए, माल तो फिर भी आ सकता है, अगर ज़िंदगी रही तो फिर कमा लेंगे, फिर आ जाएगा, लेकिन जान एक मर्तबा चली गई तो कभी लौट कर नहीं आती है। तो इसलिए वाहन चलाते वक्त अपना भी ध्यान रखिए और सामने वाले का भी। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला भी नहीं टक्कर मारता है, पीछे से तेज़ रफ्तार आता हुआ वाहन आगे वाले को धकेल देता है। ऐसे ही खबरें छप रही हैं रोज के अखबार में, अखबार की सुर्खियों में। और आपको बता दें कि रजा लाइब्रेरी देखने जाने के लिए अब टिकट लगेगा। दोस्तों, पहले बिना टिकट के रजा लाइब्रेरी में जाया जा सकता था, किताबें पढ़ी जा सकती थीं और उसका भ्रमण किया जा सकता था, लेकिन अब रजा लाइब्रेरी में सोमवार को प्रशासन और वित्त संबंधी सलाहकार समिति और लाइब्रेरी बोर्ड के सदस्यों को बैठक हुई। बैठक में विभिन्न संविदा पदों पर नियुक्तियों के लिए गठित की जाने वाली चयन समितियों का अनुमोदन किया गया। विभिन्न विशेषज्ञ एवं तकनीकी पदों पर योग्य कार्मिकों की संविदा आधारित नियुक्ति को स्वीकृति CISF के साथ अग्निशमन इकाई की स्थापना के अलावा लाइब्रेरी परिसर में आगंतुकों का प्रवेश टिकट लागू करने का प्रस्ताव पर मोहर लगी है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि डॉक्टर पुष्कर मिश्र लाइब्रेरी निदेशक ने कहा है कि केवल यहाँ पर दुर्लभ पांडुलिपियों एवं पुस्तकों का भंडार नहीं है, बल्कि ये भारत की बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक और बहुविषयक ज्ञान परंपरा का एक जीवंत राष्ट्रीय केंद्र है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आगामी वर्षों में एक विश्व स्तरीय शोध, संरक्षण, डिजिटलीकरण, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण संस्थान के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से अनेक दूरदर्शी योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।

खिलाड़ियों की भी एक खुशखबरी है, अब रजत कांस्य पदक विजेताओं को भी सरकारी नौकरी मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी के अवसरों का दायरा और बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। संशोधित नियमावली के तहत 35 नए पद शामिल किए गए हैं, जिससे ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और विश्व चैंपियनशिप जैसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवाओं में अधिक अवसर मिलेंगे।

0: दोस्तों ये तो बात हुई अखबार के आईने में, और अब बात करते हैं आज के विश्व दिवस की। आज है विश्व चॉकलेट डे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जिस चॉकलेट के बच्चे, बूढ़े, जवान सब शौकीन हैं और मीठा स्वाद के लिए खाते हैं, ये कभी तीखी और कड़वी भी होती थी। जी हाँ, आपको बता दें 4000 साल पहले अमेरिका में कोको को के दानों को पीसकर एक तीखा झागदार पेय बनाया जाता था। इसे देवताओं का भोजन भी मानते थे, करेंसी के रूप में भी इसे इस्तेमाल करते थे। 7 जुलाई 1550 में जब पहली बार चॉकलेट यूरोप पहुंची तो यूरोपियंस ने इसमें दूध चीनी मिलाकर इसे मीठा बनाया। तब से ये मीठा चॉकलेट हमारे और आपके सामने आया, जिसे हम और आप मजे से खाते हैं। इसलिए 7 जुलाई को हर साल विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। चॉकलेट सिर्फ स्वाद नहीं है दोस्तों, इसमें सेहत और खुशी भी शामिल है। खासकर डार्क चॉकलेट दिल को दुरुस्त रखती है, तनाव दूर करके मूड हैप्पी करती है। चॉकलेट दोस्ती का बेहतरीन जरिया है, रोटी को मनाना हो या त्योहारों को एंजॉय करना हो, किसी को सरप्राइज देना हो या किसी को सॉरी कहना हो, चॉकलेट हमेशा मददगार और अच्छा एक विकल्प है। चॉकलेट पहले बचपन और बच्चों के लिए मखसूस मानी जाती थी कि बच्चे चॉकलेट खाते हैं, टॉफीज खाते हैं, लेकिन चॉकलेट आज हर उम्र की पहली पसंद है। चॉकलेट है, चॉकलेट हर कोई खाता है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। चॉकलेट आपस में प्यार, त्याग बांटकर खाना सिखाती है। इसके छोटे छोटे पीस में, टुकड़ों में जो मिठास होती है, जो अपनत्व होता है, अपनापन होता है, वो कहीं नहीं मिलता, और इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों में खुशी मिलती है। तो आइए हम सब भी अपने दोस्तों, बहन भाइयों, घर वालों के साथ चॉकलेट और इस गीत का मजा लेते हैं।
1: टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन लेट्स स्टार्ट द फन।

साथियों, आज 7 जुलाई है और आज मनाई जाती है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जयंती। हिंदी साहित्य के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और युगांतरकारी कहानीकार, निबंधकार और विद्वान थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उन्होंने बहुत कम कहानियां लिखी, लेकिन उनकी एक ही कहानी उसने कहा था ने उन्हें हिंदी कथा साहित्य में हमेशा के लिए अमर कर दिया। बचपन से ही गुलेरी बेहद कुशार बुद्धि के थे। गुलेरी जी का जन्म जयपुर में हुआ था, लेकिन उनके पिता पंडित शिवराम शास्त्री मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के गुलेर गांव के रहने वाले थे, जिसके कारण उनके नाम के आगे गुलेरी जोड़ा। उन्होंने कम उम्र में ही संस्कृत, वेद, पुराण आदि का गहरा अध्ययन कर लिया था। बाद में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की और कोलकाता विश्वविद्यालय तथा प्रयाग विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा प्रथम श्रेणी में पूर्ण की थी। गुलेरी जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और निबंध के क्षेत्र में बहुत काम किया, लेकिन जनमानस में वो अपनी कहानियों के लिए सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में केवल 3 मुख्य कहानियां लिखी, लेकिन उनका स्तर इतना ऊंचा था कि वो मील का पत्थर बन गई। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धों का काटा। उसने कहा था 1915 में, ये हिंदी की एक पहली आधुनिक और शिल्प की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई ये कहानी निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा का एक अद्भुत उदाहरण है। वो एक गंभीर निबंधकार और समीक्षक भी थे। उनके निबंधों में गहरा व्यंग और ज्ञान देखने को मिलता है। समालोचक नामक साहित्यिक पत्रिका 1900 में उन्होंने लिखी, साहित्यिक पत्रिका संपादन संभाला, जिसमें उनकी तीखी टिप्पणियों की काफी चर्चा होती थी। अपने जीवन के अंतिम वर्ष 1922 में उन्हें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहास और धर्म के मनेन्द्र चंद्र नंदी पीठ का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। जयपुर के जंतर मंतर वेदशाला को संरक्षित और सहेजने में भी उनका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान रहा। दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के महान योगदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, हमेशा उनको याद किया जाएगा। दोस्तों, आज ही के दिन मनाया जाता है वैश्विक क्षमा दिवस। क्षमा यानी माफ करना। दोस्तों, गुस्सा करना हराम है। गुस्सा क्रोध अक्ल को इस तरह खा जाता है जैसे दीमक लकड़ी को। इसके अलावा हसद, जलन रखना, अहंकार, ये सब वो भावनाएं हैं जो इंसान को अंदर से कमजोर बनाती हैं। हर धर्म में इनकी मजम्मत यानी बुराई की गई है। आपस में प्यार, मोहब्बत, एक इत्तेफाक से रहना और त्याग का जज्बा इंसान को बड़ा बनाता है। अगर किसी ने दुख पहुंचाया या नुकसान किया है तो संयम रखें, गुस्से को पी जाएं और कोशिश करें माफ करने की, क्योंकि क्षमा करने वाला दुनिया में भी इज्जत पाता है, सबकी नजरों में बड़ा बनता है और ऊपर वाला भी उससे राजी होता है, खुश रहता है। आज 7 जुलाई है, आज के दिन मनाया जाता है वैश्विक क्षमा दिवस। दोस्तों, आपको बता दें कि ये दिन मुख्य रूप से जैन धर्म में क्षमावाणी पर्व या संवत्सरी के रूप में मनाया जाता है। ये सिर्फ दिखावा या औपचारिकता नहीं होती, बल्कि 10 दिनों के त्योहार के अंतिम दिन सब एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं, अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए, आपसी रिश्तों को मजबूत करने के लिए। जैनियों का ये एक बेहद पवित्र और महान उत्सव है, जिसमें संदेश भेजकर या गले मिलकर माफी मांगी जाती है कि अगर जाने अनजाने में मेरे मन, वचन या कर्म, यानी कि सोच, बोल या व्यवहार से आपको दुख पहुंचा हो तो हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं। और ये सिर्फ इंसानों से ही नहीं बल्कि संसार में छोटे बड़े जीव जंतुओं से भी क्षमा मांगते हैं। दोस्तों, तरीका तो ये बहुत अच्छा है,
किसी से बदला लेना, गुस्सा करना, द्वेष रखना आसान है, लेकिन माफ करना बहुत बड़ा काम है और बहुत मुश्किल तरीन काम है। दोस्तों, जिसने माफ कर दिया वो दुनिया का सबसे बड़ा बहादुर है, क्योंकि क्षमा करने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है, झुकना पड़ता है, और झुकता वही है जिसमें लचक होती है।

इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का एंटरटेनमेंट कार्यक्रम सुबह सवेरे यहीं संपन्न करने की अपनी रेडियो सहेली इरम फातिमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सवेरे, मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को ही कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे समाचार।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
4: India and Indonesia are very close and strategic partners.
5: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने

0: शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
1: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं। 39,000 पैक्स किसान समृद्धि केंद्र बन चुके हैं। 700 पैक्स जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। 75 पैक्स ने पेट्रोल और डीजल का खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने 6वें स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले तीन से चार दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
4: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secure 20 medals including 4 gold at under 20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain book place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today. Mr. Modi arrived in Jakarta yesterday on a 3-day state visit at the invitation of Indonesian President. In a special gesture, President Prabowo personally received the Prime Minister at the airport. Indonesian Air Force fighter jets escorted the Prime Minister's aircraft after it entered Indonesian airspace. More from our correspondent.
6: Describing the welcome as deeply touching, Prime Minister Modi said he looked forward to holding discussion with President Prabowo to impart fresh momentum to the India-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership, which was established during his 2018 visit. Prime Minister Modi praised the rich cultural performances presented during his arrival in Jakarta, saying they reflected the deep civilizational, cultural and spiritual ties shared by India and Indonesia. The Prime Minister also appreciated a Bharatanatyam performance by Samana Vaya group comprising Indonesian students. The Prime Minister witnessed a series of performances. These include Indonesia's iconic Wayang Kulit shadow puppetry depicting the Ramayana, a Bharatanatyam recital by Indonesian students, and a devotional Buddhist dance paying homage to the triple gem, Sri Ratna. Expressing gratitude to the Indian community, the Prime Minister said he was touched by the warm reception accorded to him in Jakarta. Prime Minister Modi received an enthusiastic welcome from the Indian diaspora upon his arrival at the hotel in Jakarta. India's ambassador to Indonesia, Sundeep Chakraborty, said major announcements expected across defense, maritime, security, digital connectivity, critical minerals and trade sectors.
7: We will be doing a lot of understandings and agreements on several areas of cooperation. There will be cooperation announcements or agreements in five sectors. One would, of course, be defense and maritime security, then trade and investment, food security and fertilizer security, energy security, critical minerals, and of course, educational and health sectors.
6: Indonesia is the first stop of Prime Minister Modi's three-nation tour, which will also include visit to Australia and New Zealand later this week. Shandip Andashgupta, Akashvani News, Jakarta.
5: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has said that Cooperation Ministry has infused new energy into the lives of nearly 30 crore people associated with the cooperative sector over the past 5 years. Addressing the 5th Foundation Day celebrations of the Cooperation Ministry in New Delhi, Mr. Shah said the ministry established by Prime Minister Modi in 2021 has transformed the cooperative ecosystem into one that is modern, transparent, technology-driven and competitive.
8: सहकारिता से जुड़े हुए देश के 30 करोड़ लोग
9: For 30 crore people associated with the cooperative sector and more than 8.5 lakh cooperatives across the country, this is a day they had been waiting for over the past 75 years. Prime Minister Narendra Modi decided to establish an independent Ministry of Cooperation in the Government of India. This decision by the Prime Minister has served to elevate the country's cooperative movement to a new stage.
8: सहकारिता आंदोलन को नए स्टेज पर ले जाने का काम
5: He said the ministry has identified the key challenges facing the cooperative sector, prepared a comprehensive roadmap for its development and resolution, and introduced reforms that have modernized the entire ecosystem. He added that when the nation celebrates the centenary of its independence in 2047, the cooperative movement will serve as the strong foundation of a prosperous India. Recalling the creation of the ministry on July 6, 2021, Amit Shah said the decision ended a 75-year wait for millions of people associated with the cooperative sector. The Sri Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust has accepted the resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra. Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed Interim General Secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case, in which 8 people have been arrested. The trust has also decided to appoint a chief executive officer and has formed a 3-member committee to recommend candidates. Addressing the media, trust treasurer Govind Dev Giri said the possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out. He also asserted that all donated ornaments and valuables are safe, properly accounted for, and that details of donated items are available with the trust. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIRNewsAlerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Amid the political storm intensifying in Pakistan-occupied Kashmir POK, the Jammu-Kashmir Joint Awami Action Committee, JAAC, has issued a 48-hour deadline to the government in Islamabad, threatening a grand and final response on the 9th of July if the conditions remain unfulfilled. In a formal declaration, the committee announced that its current sit-in protest will persist indefinitely until all of its demands are satisfied. More from our correspondent.
10: The committee has called upon residents throughout POK and the members of the Kashmiri diaspora to participate in the protest scheduled for July 9. Police brutality by Pakistani forces has intensified on Sunday against the people protesting against the severe crackdown by Islamabad and the sweeping arrest of more than 600 civil rights activists in Pakistan-occupied Kashmir, with reports of shelling, firing and clashes emerging from several parts of Muzaffarabad. Thousands of people took to the streets on demanding an end to the blockade, restoration of communication services, uninterrupted supplies of food and medicines, the release of detained leaders and implementation of a 38-point written agreement. The demonstrations have intensified since Pakistan banned the JAAC under the Anti-Terrorism Act. Protest organizers allege that more than 600 workers and political leaders have been arrested, while authorities have imposed an economic blockade by restricting the supply of food, flour and essential medicines. Yashasvi Kiryal for Akashvani News, Delhi.
5: External Affairs Minister S. Jaishankar met with King Hamad bin Isa Al Khalifa in Bahrain and discussed ways to further strengthen bilateral partnership. Dr. Jaishankar arrived in Bahrain from Qatar on the second leg of his four-nation visit to the Gulf, which also includes Kuwait and Oman, from July 5th to July 10th. The minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to the King and thanked him for ensuring the safety and well-being of the Indian diaspora in Bahrain. Dr. Jaishankar also interacted with the members of the Indian community in Bahrain. During the ongoing visit, Dr. Jaishankar has been meeting his counterparts and top leaders of the Gulf countries to enhance bilateral relations and exchange views on regional developments and issues of mutual interest. Heavy rains continue in the coastal part and the Ghat areas of Maharashtra, with a red alert being sounded for Palghar, Raigad and Ghat areas of Nasik and Pune for today. Coastal districts including Mumbai and North Maharashtra districts have been given orange alert, with the possibility of moderate to heavy rains in certain areas.

0: Back to you, Pramod.
1: Thank you, Sarab. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta today to provide fresh momentum to comprehensive strategic partnership between the two countries. Home and Cooperation Minister Amit Shah says Cooperation Ministry infused new energy into lives of nearly 30 crore people over the past 5 years. Pakistan-occupied Kashmir protesters issue 48-hour ultimatum to Islamabad, warn of grand and final action on July 9th if demands are not met. India secured 20 medals including 4 gold at Under-20 Asian Wrestling Championships in Pattaya. And Spain booked place in FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 1-0 victory over Portugal. Belgium beat US 4-1 to enter the quarterfinals. And with that we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में मुजाहिरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। भारत ने पटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। और फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन पुर्तगाल को 0-1 गोल से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है, जबकि बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। जनाब मोदी सदर प्रबोवो की दावत पर इंडोनेशिया के 3 रोजा सरकारी दौरे पर कल जकार्ता पहुंचे। खुसूसी खैर सगाली के जज्बे का इजहार करते हुए सदर प्रबोवो बजाते खुद हवाई अड्डे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। इंडोनेशिया की फिजाइया के लड़ाका तैयारों ने इंडोनेशिया की फिजाई हदूद में दाखिल होने के बाद वजीर आजम के तैयारे को हिफाजती हिसार में भी फराहम किया। पेश है एक रिपोर्ट।
3: अपने इस्तकबाल को नहायत शानदार और दिल को छू लेने वाला करार देते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि वो सदर प्रबोवो के साथ मुलाकात के मुंतजिर हैं ताकि भारत इंडोनेशिया जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को नई रफ्तार दी जा सके, जिसकी बुनियाद 2018 के उनके दौरे के दौरान रखी गई थी। वजीर आजम ने जकार्ता आमद पर पेश किए गए रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों की तारीफ करते हुए कहा कि ये भारत और इंडोनेशिया के दरमियान गहरे तहजीबी सकाफती और रूहानी रिश्तों की अक्कासी करते हैं। उन्होंने इंडोनेशिया के तलबा पर मुश्तमिल समन्वय ग्रुप की जानिब से पेश किए गए भरतनाट्यम रक्स की भी सताइश की। भारतीय बिरादरी के तई तशक्कुर का इजहार करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जकार्ता में उनके पुरतपाक इस्तकबाल ने उन्हें बेहद मुतासिर किया। वह होटल पहुंचने पर वहां मौजूद भारतीय बिरादरी ने उनका नहायत जोश व खरोश के साथ खैर मकदम किया। इंडोनेशिया में भारत के सफीर संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि वजीर आजम मोदी का यह दौरा भारत और जुनूब मशरकी एशिया की सबसे बड़ी मईशत इंडोनेशिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को एक नई बुलंदी तक ले जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दौरे के दौरान दिफा, समंदरी सिक्योरिटी, डिजिटल रबताकारी, अहम मादनियात और तजारत के शोबों में कई अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। ये जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के क्याम के बाद वजीर आजम मोदी का इंडोनेशिया का पहला 2 तरफा दौरा है। ये दौरा जनवरी 2025 में इंडोनेशिया के सदर के यौम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खसूसी की हैसियत से भारत के दौरे के बाद हो रहा है। इंडोनेशिया वजीर आजम मोदी के 3 मुल्कों के दौरे का पहला मरहला है। इस दौरे के अगले मरहले में वो इसी हफ्ते ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दौरा भी करेंगे। जकार्ता

0: करेंगे। इस बातचीत का मकसद भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी को नई रफ्तार देना है। उमूर दाखिला और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि पिछले 5 बरसों के दौरान इमदाद बाहमी की वजारत ने इमदाद बाहमी के शोबे से वाबस्ता तकरीबन 30 करोड़ अफराद की जिंदगी में नई तवानाई पैदा की है। पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में मुजाहरीन ने पाकिस्तान की हुकूमत को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने खबरदार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो 9 जुलाई को हतमी और फैसलाकुन एहतजाज किया जाएगा। और भारत ने पटाया में मुनक़िदा 20 साल तक की उम्र की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 4 तमगों समेत 20 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर 8:45 में है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स।

कार्यक्रम 102.9 मॉर्निंग हिट्स का पहला गीत सुनिए, जवान फिल्म से। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और शिल्पा की।

मीडियम वेव 336.7 मीटर अर्थात 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:15 होने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुनेंगे जिले की हलचल। अब से बस कुछ ही देर में

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अलीगढ़ और झांसी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अलीगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रजनेश सिंह का।
2: अलीगढ़ जिलाधिकारी अविनाश कुमार द्वारा ग्राम सचिवालयों को और अधिक प्रभावी बनाने, ग्रामीणों को राजस्व सेवाएं उनके गांव में ही सुलभ कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने जनपद के सभी ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर जारी कर दिया है। निर्धारित रोस्टर के अनुसार लेखपाल अपने आवंटित ग्राम सचिवालयों में नियमित रूप से बैठक आमजन की राजस्व संबंधी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। उन्होंने बताया कि शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम सचिवालयों को ग्रामीण जनसेवा का प्रभावी केंद्र बनाया जा रहा है। इसी क्रम में ग्राम सचिवालय में लेखपालों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर लागू किया गया है। इससे ग्रामीणों को आय, जाति, निवास, हैसियत प्रमाण पत्र, खतौनी की नकल, वरासत, भू अभिलेख सत्यापन तथा अन्य राजस्व संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक रूप से तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एडीएम प्रशासन सौरभ भट्ट ने बताया कि लेखपाल अपने निर्धारित दिवस एवं समय पर ग्राम सचिवालयों में उपस्थित रहकर राजस्व संबंधी प्रकरणों में आवश्यक मार्गदर्शन, अभिलेखों का सत्यापन, जांच एवं अन्य प्रशासनिक कार्य संपादित करेंगे। इसे राजस्व सेवाओं के निस्तारण में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही सुनिश्चित होगी तथा ग्रामीणों को समयबद्ध सेवाओं का लाभ मिलेगा। सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदारों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जारी रोस्टर का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही प्रत्येक ग्राम सचिवालय में रोस्टर को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए ताकि ग्रामीणों को लेखपाल की उपलब्धता की पूर्व जानकारी मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर अलीगढ़ में अस्मिता साइकिलिंग का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस कंट्रोल रूम सेवा भवन से हुई। साइकिल रैली सेवा भवन से विभिन्न मार्गों से होते हुए आगे बढ़ी। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज जादौन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एसएसपी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी साइकिल चलाकर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। युवाओं ने पूरे जोश के साथ भाग लिया और कार्यक्रम में फिटनेस व पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामघाट रोड स्थित RAF 104 बटालियन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों, जवानों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर बटालियन के कमांडेंट विनोद कुमार ने परिसर में पौधा रोपित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उनके साथ अन्य अधिकारियों एवं जवानों ने भी विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। कार्यक्रम में शामिल नल्ले मुन्ने बच्चों ने भी उत्साह पूर्वक वृक्षारोपण किया और स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता का संकल्प लिया। सभी प्रतिभागियों ने पौधों की नियमित देखभाल करने तथा उन्हें वृक्ष के रूप में विकसित करने का प्रण लिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की इगलास तहसील के कस्बा वेसवा निवासी भारतीय नौसेना के जाबाज मरीन कमांडो राम गोयल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। नवंबर 2024 में आतंकवाद रोधी ऑपरेशन चुंतावाड़ी के दौरान भारी गोलाबारी के बीच अदम्य साहस, असाधारण वीरता और कर्तव्य के प्रति सर्वोच्च समर्पण का परिचय देने पर उन्हें देश के प्रतिष्ठित वीरता पुरस्कार में शामिल शौर्य चक्र प्रदान किया गया। देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले इस वीर सपूत ने न केवल भारतीय नौसेना बल्कि पूरे अलीगढ़ और उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है। वेसवा से राष्ट्रपति भवन तक यह सम्मान हर युवा के लिए प्रेरणा है। अलीगढ़ में 7 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन चुका है। अब जिले से भी नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी बनकर तैयार होंगे। उच्च कोटि के कोचों की देखरेख में खिलाड़ी अपने खेल में निखार लाएंगे, जिसका उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा का कहना है,
3: स्मार्ट सिटी अलीगढ़ द्वारा लगभग 60 करोड़ की लागत से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें नेशनल लेवल का ऑल वेदर हीटेड स्विमिंग पूल है। इसके अलावा 4 उसमें बैडमिंटन कोर्ट हैं, इसके अलावा उसमें बास्केटबॉल कोर्ट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं जैसे पिकल बॉल इत्यादि हैं, उनको लाया जा रहा है। लगभग 550 लोगों के बैठने की उसमें दर्शक भीड़ है।
2: प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सफलता पूर्वक 6 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश शासन के नगरीय विकास विभाग के मार्गदर्शन में डूंडा स्थित कार्यालय सभागार में पीएम स्वनिधि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया।
1: अलीगढ़ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं झांसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विकास कुमार का।
4: झांसी प्रशासन ने शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप विकास कार्यों तथा जनहित योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया। जिलाधिकारी गौरांग राठी की अध्यक्षता में विभागवार समीक्षा बैठकों का आयोजन, अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। विशेष रूप से पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क निर्माण, ग्रामीण विकास और कानून व्यवस्था से जुड़े कार्यों की नियमित समीक्षा की गई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे जनपद में उत्साहपूर्ण मनाया गया। ऐतिहासिक झांसी किले परिसर में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभागिता की। उन्होंने योग को स्वास्थ्य जीवन का आधार बताते हुए जनपद वासियों से नियमित योग अपनाने का आह्वान किया। जिले के सभी विकास खंडों, विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा सरकारी कार्यालयों में भी सामूहिक योग अभ्यास आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री ने झांसी प्रवास के दौरान मंडलीय विकास एवं कानून व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने अवैध खनन, भू माफिया, ओवरलोडिंग तथा अपराध नियंत्रण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही झांसी में प्रारंभ किए गए जनसंवाद मॉडल की सराहना करते हुए इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा की। विकास परियोजनाओं में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विशेष बल दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मानसून को देखते हुए संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान चलाया गया। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तथा अन्य मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग, एंटी लार्वा का स्वच्छता अभियान तथा जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर लोगों को बीमारी से बचाव के उपाय बताए। महिला एवं बाल विकास तथा पोषण विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य सरकार ने झांसी की उपलब्धियों की सराहना की। महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री ने जिले में जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, ICDS, कुपोषण उन्मूलन तथा आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। गंभीर और मध्यम कुपोषित बच्चों की स्थिति में सुधार तथा आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की सराहना की। जल संरक्षण एवं पेयजल उपलब्धता के क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अंतर्गत उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई। कई ग्राम पंचायतों में ग्रामीण समुदाय ने स्वयं पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी, जिससे जन भागीदारी आधारित जल प्रबंधन को नई दिशा मिली। शिक्षा के क्षेत्र में नए शैक्षिक सत्र के मद्देनजर स्कूल चलो अभियान, नामांकन अभियान तथा विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म तथा छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की प्रक्रिया तेज की गई। शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं 100% नामांकन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। रोजगार और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में झांसी को उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य जारी रहा। प्रशासन द्वारा निवेश, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजन करने के प्रयास लगातार जारी है। कृषि विभाग की खरीफ फसलों की तैयारी को लेकर किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना तथा कृषि यंत्रीकरण योजना की जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई गई। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों के जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण, संपर्क मार्ग निर्माण तथा रोजगार सृजन के कार्य में तेजी लाई गई। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पूरे जिले में व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। सरकारी विभागों, विद्यालयों, स्वयंसेवी संस्थाओं और आम नागरिकों ने पौधारोपण कर हरित झांसी के निर्माण का संकल्प लिया। श्रम विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त प्रयास से झांसी ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। जिले के सभी 496 ग्राम पंचायतों को बाल श्रम मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया पूरी की गई, जिससे झांसी उत्तर प्रदेश का पहला एक ऐसा जिला बनने की दिशा में अग्रसर हुआ जहां ग्रामीण क्षेत्र बाल श्रम मुक्त घोषित किए गए। इस अभियान के अंतर्गत हजारों बच्चों को पुनः विद्यालयों से जोड़ा गया और उनके परिवार को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
0: जिले की हलचल में अभी आपने सुनी अलीगढ़ और झांसी जिलों की खबरें।
5: हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं। अब भी प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव भारत देश की। कार्यक्रम में सुनिए हजरत मोहम्मद साहब के जीवन से ये गौरव प्रसंग।

ये प्रेरक प्रसंग हजरत मोहम्मद साहब से जुड़ा है। हजरत मोहम्मद अपने घर से जब निकलते तो रोज उनकी एक पड़ोसन उनके ऊपर घर की छत पर रखा कूड़ा फेंक देती। वास्तव में वो उनसे न जाने किस कारण से नफरत करती थी, परंतु मोहम्मद साहब कुछ नहीं कहते। वो एक नजर उस पर डालते और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते। उनकी इस बात से वो और चढ़ जाती। वो भी अपनी जिद पर आमादा थी कि देखते हैं कि आखिर बर्दाश्त की भी हद क्या है। ये सिलसिला लंबे अरसे तक चलता रहा। न तो मोहम्मद साहब को ही गुस्सा आया और न ही पड़ोसन की नफरत कम हुई। एक दिन क्रम भंग हुआ जब मोहम्मद साहब उस गली से गुजरे और उनके ऊपर कूड़ा नहीं पड़ा तो उन्होंने छत की ओर देखा। पड़ोसन नदारद थी, इसलिए मोहम्मद साहब ने अन्य पड़ोसियों से उसकी खोज खबर ली। मालूम हुआ कि रात से उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बीमार पड़ी है। मोहम्मद साहब ऊपर गए, पड़ोसन का हालचाल पूछा और उसकी सेहत के लिए वहीं बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगे। ये सारा नजारा देखकर पड़ोसन हैरान रह गई। वो मोहम्मद साहब के पांव में गिर पड़े, अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगी। मोहम्मद साहब ने बिना किसी गिले शिकवे के उसे दिल से लगा लिया और इस तरह से लंबे अरसे से चली आ रही नफरत का सुखद अंत हुआ। पड़ोसन मोहम्मद साहब की शिष्या बन गई और वो जीवन भर उनके गुणगान करती रही। एक बार एक महिला अपने पुत्र को लेकर पैगंबर मोहम्मद साहब के पास गई और बोली, इस बालक की बहुत अधिक मिठाई खाने की आदत है और इससे इसका स्वास्थ्य चौपट हुआ जा रहा है। मैं हमेशा इससे इसकी बुरी आदत को छोड़ देने को कहती हूं, पर इस पर कोई असर ही नहीं होता। यदि आप कृपा करके इसे समझाएं तो यह निश्चित ही अपनी बुरी आदत छोड़ देगा। पैगंबर क्षण भर तो चुप रहे, फिर बोले, मैं इस बालक को अवश्य समझाऊंगा, पर अभी नहीं, एक हफ्ते बाद। उनके इस जवाब से विस्मित हुई महिला वापस लौट गई। सप्ताह भर बाद वो पुनः अपने पुत्र के साथ पैगंबर साहब के पास आई। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। बालक को सीधे सादे शब्दों में अधिक मिठाई खाने से होने वाली खराबियां समझाई और ये बुरी आदत छोड़ देने को कहा। तब उस महिला ने पैगंबर साहब से प्रश्न किया कि ये तो आप पहले दिन ही समझा सकते थे, फिर इसके लिए सप्ताह भर का समय क्यों लिया? पैगंबर साहब का उत्तर था, सप्ताह भर पहले जब आप इस बालक को लेकर मेरे पास आई थी, मैं स्वयं इस आदत का शिकार था, पर इस एक सप्ताह में मैंने खुद वो आदत छोड़ दी है। हफ्ते भर पहले मैं सलाह देने योग्य नहीं था, खुद को इस काबिल बनाने के लिए मैंने एक हफ्ते का समय लिया था।

गौरव भारत देश की कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद साहब के जीवन से प्रसंग। मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हमारा आज का उर्दू प्रोग्राम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से नशर किया जाएगा।

उपशास्त्रीय संगीत में अभी आप सुन रहे थे मुन्ने कां का तबले पर बजाया ताल झपताल, सारंगी पर संगत दे रहे थे जाकिर खां। हम आकाशवाणी रामपुर से बोल रहे हैं और अब समय हो चला है श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम आपके अनुरोध पर

आपके अनुरोध पर कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को इरम फातिमा का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम। साथियों, कार्यक्रम पत्रों पर आधारित है और हमें पहला पत्र मिला है कस्बा शीशगढ़ से गुड्डू इदरीसी का, मोहम्मद फरहान इदरीसी का। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, समरीन, परवीन, मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर। रियासत हुसैन सिद्दीकी, पंजू सराय संभल से छोटे अंसारी आलम अंसारी, सईद मुख्तार अंसारी, असद भाई। गांधी समाधि रोड रामपुर जिला अस्पताल के पास से गफ्फार खान, राजिया खान, सिमरन खान, रूमा खान, बॉबी खान, शमा खान, मिक्की खान, बुशरा खान, आसिम खान। जिला अस्पताल के पास से ही गजन खां, शमा परवीन, शमशाद अली अजम, गुलफशा, शहनाज, बाबू अंसारी, राजिया गफ्फार और हबीब अहमद इदरीसी का। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान। मोहल्ला हलवायान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक़ार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साइजा रानी और हिना कौसर का। आप सभी ने सुना चाहा है ये गीत फिल्म गुरु से, आवाज़ें श्रेया घोषाल और उदय मजुमदार की।

कार्यक्रम की अगली फरमाइश। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा की है। राजद्वारा रोड मीठे कुएं रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित रस्तोगी, अभेरिया आरुष, महादेव घाट अमरेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारणी ठाकुर, सूरज और ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर, अफजलपुर पट्टी तहसील सदर जिला रामपुर से राहुल गौतम, दिलीप सिंह, विशाल, चमन लाल मिस्त्री, रूमा, मंजू, प्रियंका, शीतल, पूजा, अंशु गौतम और इनकी साथी। दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, साइमा नदीम, जमनी मोहल्ला इस्लामनगर से मुजफ्फर अली खान, मतीन खान, अल्फिया खान, इंशा खान, नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुसरत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, तस्लीम रजा और पप्पू भाई अंसारी। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म अंदाज का ये गीत कुमार सानू और अलका याग्निक की

कार्यक्रम का अगला पत्र हमें मिला है बोरखेड़ा जिला उज्जैन से। विनोद मूर्त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूर्त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मूर्त का कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से अनुरोध किया है। ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया निवादा गाजीपुर से, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से, अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमस खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। आप सभी ने सुनना चाहा है ये गीत फिल्म सलामी से।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरा दौर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे 70 के दशक के कुछ फिल्मी नगमे।

मीडियम वेव 336.7 मीटर और FM 102.9 MHz पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है

फिल्म छोटी सी बात में अभी आप सुन रहे थे यशदास और आशा भोसले का गाया गीत। और अब सुनिए गीत फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर की आवाज में

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में अभी आपने सुना ये फिल्म गीत का नगमा। और अब सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत।

फिल्म सीता और गीता में अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को, और अब लता मंगेशकर किशोर कुमार को सुनिए। फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा।

फिल्म प्रेम पुजारी के इस खूबसूरत नगमे के साथ कार्यक्रम सुनहरा दौर, जिसमें आप सुन रहे थे 70 के दशक के फिल्मी गीत, अब यही संपन्न होता है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरा दौर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर में नाटक जलवायु संकट, दोषी कौन, लेखक हैं नीलम सक्सेना।

0: अरे अरे अरे, तनिक रुको भैया, देखो ये अखबार में क्या लिखा है।
1: कहाँ, क्या है? अरे लीजिए अखबार, मैं तो करीब करीब पूरा ही पढ़ चुका हूँ, आप ही देख लीजिए।
0: देखो ये लिखा है, सूबे में आज किसानों की सदमे से और मौत।

0: फसल के नष्ट होने से सदमे से हुई मौतों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिले के करीब 20,000 किसान इस तरह की आर्थिक तंगी से गुजर रहे। 125 करोड़ की आबादी को अन्न खिलाने वाला किसान भूखा मरने की कगार पर। किसान की सदमे से मौत अथवा आत्महत्या। ओहो, अब क्या होगा इन सब परिवारों का, गांव के गांव पट हो गए।
1: अरे कुछ मत पूछिए, बड़ी बुरी स्थिति है। अभी एक गांव का सर्वे करके ही लौट रहा हूँ।
0: अच्छा, आप क्या?
1: हाँ भैया, हम लेखपाल ही हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: बड़ा दिल दुखी होता है।
0: हुँ.
1: लेकिन कर कुछ नहीं सकते, प्राकृतिक आपदा है।
0: बिल्कुल भैया, 16 आने सच्ची बात है आपकी।
1: इस बेवक्त की बरसात और ओलावृष्टि ने तो किसानों को तबाह करके रखा, कहीं का न छोड़ा।
0: रोटी के लाले पड़ गए हैं बेचारों को। हर किसान की कमोवेश यही हालत है भैया। और जिनकी जमीन भी ना है, ठेका या बटाई पर की है, उनकी तो और भी बुरी स्थिति है। ना तो वे बेचारे सरकारी मुआवजे के हकदार हैं और ना ही सरकारी ऋण के। किसी छूट का भी उन्हें कोई फायदा नहीं है। साथ ही जिसकी जमीन है उसे तो भैया अपना तयशुदा पैसा या अनाज चाहिए ही चाहिए।
1: बिल्कुल, अभी सर्वे के दौरान जो हालात देखे बद से बदतर नजर आए। एक किसान जो कि अकेला कमाने वाला था घर में, सदमे से मौत हो गई। अपने पीछे 7 बच्चे, पत्नी और एक बूढ़ी माँ छोड़ गया है।
0: ओहो,
1: उसकी बेटी की अभी सहालग में शादी भी होने वाली थी, वो शादी भी टूट गई।
0: हे राम,
1: बाकी बच्चों की पढ़ाई भी छुड़वानी पड़ी। अब रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
0: और वो मुआवजे का पैसा भैया?
1: हाँ, वो तो मिलेगा ही उसे। मैंने तुरंत लिखकर भेज दिया है, जिससे जल्दी से जल्दी उस परिवार को कुछ राहत मिले।
0: हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया, कुछ ना कह सकते, रुपया में चवन्नी ही हाथ लगती है।
2: तो इसमें दोष किसका है?
1: बात दोष की नहीं है, वस्तु स्थिति की है।
2: अंकल क्षमा करना, छोटे मुँह बड़ी बात, इस वस्तु स्थिति को बनाने वाला कौन है?
1: बिल्कुल सही प्रश्न है। मैं हूँ, तुम हो और इस तन से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, जो निजी तुच्छ स्वार्थ के वशीभूत होकर ऐसी भीषण और दयनीय स्थिति को भी नजरअंदाज कर अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं।
2: अगर ईमानदारी से देखा जाए तो सरकारी नीतियों में कहीं कोई कमी नहीं होती है। वो अधिक से अधिक जितना संभव हो सकता है जनता के हित के लिए ही काम करती है। कमी तो नीतियों के क्रियान्वयन में होती है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कमी तो हमारे अंदर है, जो हम मानव मूल्यों को ही खोते जा रहे हैं।
2: और यही मानसिकता सरकारी नीतियों की धज्जियां उड़ा देती है।
0: 16 आने सच्ची बात कह रहे हो भैया। वैसे बेटे आप करते क्या हो?
2: जी मैं एक समाज सेवक हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: एक एनजीओ चलाता हूँ। अभी फसल बर्बादी से आहत किसानों के लिए हमारा एनजीओ एक जागरूकता अभियान चला रहा है।
0: बहुत बढ़िया बेटा, वरना आज की युवा पीढ़ी तो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की दौड़ में अंधाधुंध दौड़ी जा रही है।
2: अब हर तरह की सोच होती है अंकल, मेरे जैसी सोच के भी हैं जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, परमार्थ के लिए जीना चाहते हैं, उन्हें उसी में आनंद मिलता है।
1: जागरूकता अभियान के दौरान आपका अनुभव क्या रहा?
2: यही कि जितना हालात हमारा अहित नहीं करते हैं, उससे ज्यादा अज्ञानता और अफवाहें हमारा अहित करती हैं।
1: मतलब
2: क्या अंकल? अब आप ही देखिए, जो हुआ उसमें ना तो सरकार का दोष है न किसान का, प्राकृतिक आपदा है ये तो। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है किसानों को मदद देकर उसे इस स्थिति से उबारने की। अब चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो यहाँ तक आश्वासन दे डाला कि किसान स्वयं को अकेला ना समझे। मेहनत कश किसानों के अच्छे भविष्य के लिए हम सभी मिलकर निरंतर काम कर रहे हैं।
0: लेकिन किसानों की माली हालत इतनी खस्ता है भैया कि उनके परिवार दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। ऊपर से कर्ज का बोझा, करें तो क्या करें वे बेचारे।
2: अंकल आप सरकार की स्थिति को भी तो समझिए, कोई भी प्रक्रिया हो उसके क्रियान्वयन में कुछ ना कुछ तो समय लगता ही है।
1: बस यही हालात स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। किसान के पास समय बिल्कुल भी नहीं है और सरकार को स्थिति से निपटने के लिए थोड़ा सा तो वक्त चाहिए।
0: हाँ यही कारण है कि किसान हताश होकर सदमे से मर रहा है और फिर आत्महत्या कर रहा है।
2: मेरा ये जागरूकता अभियान भी इसी मुद्दे को लेकर चल रहा है। मैं और हमारे साथी गांव-गांव जाकर किसानों को समझा रहे हैं, उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं, साथ ही सरकारी योजनाओं के बारे में बता रहे हैं।
0: बेटे आपके जागरूकता अभियान से लाभ हो रहा है क्या लोगों को?
2: हाँ अंकल बिल्कुल हो रहा है, काफी हद तक तो किसान समझ भी रहे हैं। बस यही बात है कि किसान इस कदर हताश है कि कोई रास्ता उसे नजर नहीं आ रहा और वो प्रतीक्षा कर नहीं पा रहा है।
0: भगवान करे जल्दी ही स्थिति सुधरे और हमारे देश का किसान फिर से समृद्ध हो जाए।
2: इंशाल्लाह जल्दी ही वो दिन आएगा।
0: अच्छा भैया हमारा तो स्टेशन आ गया, आप सबके साथ यात्रा बहुत सुखद रही। अब बखत हो गया।

0: या हमारे जाने का, अब पता नहीं आगे मिले या ना मिले। अच्छा, राम राम जी।
1: मरे बंदरन को तो कोई काम है ही ना, देखो तो कैसे गमला गिरा गिरा के चले गए। अरे कल ही तो बहू रानी ने नए पौधे खरीदे थे, कैसे जड़ से ही उखाड़ गए मरे। ऐसी उजड़ कौम है बंदरन की तो। हाँ
0: पाए लागू भौजी।
1: अरे लल्ला जी आओ आओ।
0: अरे कौन की उजड़ कौम है भौजी, का बड़बड़ा रही हो अपना आप से।
1: अरे कछु ना लल्ला जी, जिन बंदरन ने तो नाक में दमी कर रखो है। अरे जे देखो सारे गमला तोड़ गए, जे सब पौधे उखाड़ गए, नुकसान पे नुकसान ही करत जाते मरे। जने कहाँ से आ गए हैं?
0: कहाँ से गए हैं भौजी, ये जंगल सब कट रहे हैं ना, उन्हें भी तो रहने को कछु जगह चाहिए।
1: हाँ तो का हमारे घर में ही रहेंगे?
0: अरे भौजी तुम तो फालतू में पजर रही हो, उन्हें कहा पतो कि तुम्हारो।
1: अरे पतो कैसे ना, जा बरस तो कचरी पापड़ कछु ना बनाए इन मरे बंदरन की वजह से। बनाओ, इतनी मेहनत करो, फिर उनकी रखवाली करो, और जरा सी नजर बची के वे बगैर सब खा जाते हैं।
0: अरे भौजी उन्हें भी तो भूख लगत है, खान को कुछ चाहिए ना उनको।
1: अच्छा चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ इतनी देर कैसे लग गई? अरे ट्रेन तो 10 बजे आ जावे।
0: अरे कहा बताए भौजी, अपन बिटुआ हमें बताए दिए कि स्टेशन से पास में ही घर है, सो हम चल पड़े खरामा खरामा पैदल। रास्ते में देखा कि एक पानी की पाइप लाइन फट गई, सिगरी सड़क पे पानी ही पानी।
1: तो कट लाइन ठीक करन लागे?
0: ना भौजी ना, सो कंप्लेंट लिखाने चले गई म्युनिसिपैलिटी में।
1: बहुत अच्छा किए, वरना शहर में तो देख के आगे बढ़ जावे, जे काम तो कोई ना करे।
0: भौजी बिटुआ के घर में हरियाली देख के तो हमार तबीयत हरी हो गई, वरना शहरन में तो बिल्डिंग पे बिल्डिंग के अलावा कछु दिखाई ही ना देवे।
1: ये तो बहू रानी की जिद थी, बोली कि जमीन पक्का करन से प्रदूषण बढ़ रहा है। अरे पृथ्वी का दम घुटा जाए रहो, हम तो कम से कम 12x14 फीट की जगह कच्ची छोड़कर उसमें घास लगाते, इससे ऑक्सीजन भी मिलती हमें।
0: बहू रानी ने बहुत ही समझदारी वाली बात करी जे तो भौजी, इतनी कच्ची जगह से 3 सिलेंडर के बराबर ऑक्सीजन मिल जाती है।
1: अब कुछ खा पी लो, सवेरे से ऐसे ही घूम रहे हो तुम।
0: हाँ भौजी चलो। अरे ये का भौजी, टीवी पंखा बत्ती सब फालतू में चल रहे हैं।
1: अब भाई तो बच्चा स्कूल से आयो है, अरे बे चला गए होंगे।
0: चला गए होंगे?
2: सादर चरण स्पर्श चाचा जी।
0: सौभाग्यवती रहो, खुश रहो बेटा। अरे जे बालक कहाँ है?
2: अभी फ्रेश होने गए हैं, आते ही होंगे।
0: हद है भाई बर्बादी की।
3: प्रणाम दादाजी।
0: जीते रहो बेटा, जीते रहो मनु।
2: दादाजी नमस्ते, आप कैसे हैं दादाजी?
0: अच्छा हूँ बेटा, अच्छा हूँ। और तुम सुनाओ, पढ़ाई कैसी चल रही है?
2: आज से हमारी छुट्टियाँ हो गई हैं, आज आखिरी दिन था स्कूल का।
0: अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
3: मम्मा रिमोट कहाँ है, और ये टीवी किसने बंद किया?
0: अरे ये पीटीवी बेटा मैंने बंद किया है, और रिमोट रिमोट ये रहा लो।
3: थैंक यू दादाजी।
0: इट्स ओके।
2: चाचा जी खाना लग गया है, आ जाइएगा। तनु मनु बच्चों चलो आ जाओ जल्दी से।
0: अरे ये बाहर स्ट्रीट लाइट क्या दिन भर ऐसे जलती रहती है?
1: और ना तो का, ऐसे ही पजरत रहते, कितनी बार तो फोन करके बता दियो, कछु असर ही ना होता।
0: वो भी क्यों, एक तो जनता ही उदासीन रहती है इन सब बातों से, और अगर कभी जनता कंप्लेन कर भी दे तो कर्मचारी नहीं सुनते। ये भौजी ये बिटुआ कब तक आएंगे?
1: वो तो संझा तलक ही आते हैं, आजकल सरकारी महकमन में भी काम बहुत हो गयो है।
0: काम तो बहुत हो ही गयो है।
3: अच्छा दीदी अभी रुको, अभी बताता हूँ आपको।
2: मनु के बच्चे नहीं मानेगा, सारे कपड़े भिगो दिए।
3: इसी बार से भी बुरा हाल करूँगा आज तो। दीदी चलो पूरे लॉन में पानी भर देते हैं, फिर उसमें तैरेंगे, मजा आएगा।
2: चल ठीक है, सारी नालियाँ बंद कर देते हैं।
0: अरे भाई ये क्या हो रहा है बच्चों, ये क्या हो रहा है?
3: ए दीदी चल दादाजी को भी भिगो,
2: चल हट, बहुत गुस्सा करेंगे दादाजी।
0: भौजी ये सब का है, का कर रहे हैं ये बालक?
1: अरे मानते ही ना है, ठहर जाओ अभी ठीक करती हूँ।
0: कोई बात ना भौजी, अब तुम भीतर जाओ, हम देखते हैं इन्हें। आओ बालको आओ हमारे पास आओ। अरे

0: अरे की कोई बात नहीं है बेटा, तुम मुझे भिगोना चाहते हो ना, आओ आओ जी भर कर भिगो। मगर एक शर्त है।
1: वो क्या है दादाजी?
0: हाँ वो ये कि जितना जी चाहे भिगो, मगर पानी नल से भरोगे भिगोने के लिए।
1: ठीक है, लेकिन फिर आप ना नहीं कहेंगे।
0: हाँ बिल्कुल ठीक, चलो अब नल से पानी भरो।
1: दीदी आधी बाल्टी मैंने भर दी, अब आधी तुम भरो।
2: अभी आधी कहाँ हुई, थोड़ा और भरो।
1: लो अब तो हो गई।
2: मेरे बस का नहीं है ये फालतू के काम करना।
1: नहीं नहीं नहीं, ये तो चीटिंग है, तुम्हें भरना पड़ेगा।
2: अच्छा चल ठीक है, बस बस अब मेरे बस का नहीं है, चाहे कुछ कर ले।
1: दीदी ये तो गलत बात हुई। मुझसे तो पूरा भरवा लिया।
2: हाँ तो मुझसे नहीं भरा जा रहा ना भाई।
0: अच्छा भाई ठीक है, अब तुम दोनों मेरे पास आओ। आओ तनु और मनु, देखो तुम दोनों से मिलकर एक बाल्टी नहीं भरी गई, और इस अकेली टंकी से तुम दोनों ने मिलकर कितना पानी भरवाया, कुछ सोचा है इसके बारे में?
1: ये तो टंकी है दादाजी।
0: टंकी है तो क्या हुआ, इसकी भी तो सीमा होती है बच्चों, एक क्षमता होती है।
1: दादाजी ये हमारी तरह थकती थोड़ी ना है।
0: कैसे नहीं थकती है बेटा, मान लो जैसे अभी तनु ने पानी भरने को मना कर दिया, अगर ये भी मना कर दे तो तब तुम क्या करोगे?
1: ये तो टंकी है, ये मना कैसे कर रही है?
0: बिल्कुल कर सकती है बेटा, इन टंकियों में भी पानी एक बहुत बड़ी टंकी से आता है, जब हम इस तरह पानी बहाएंगे बर्बाद करेंगे तो स्वाभाविक है उस टंकी का पानी भी खत्म हो जाएगा, और जब उस टंकी में पानी नहीं होगा तब इन टंकियों में पानी कैसे आएगा?
2: अरे नहीं दादाजी, पापा ने तो समरसिबल लगवा रखा है।
0: समरसिबल लगवाने का मतलब जल स्तर नीचे चला गया है, और आज जो पानी पहले 8-10 फीट नीचे पर आता था अब 70-80 फीट पर भी नहीं मिल पा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है बेटा।
1: फिर हमें क्या करना चाहिए दादाजी?
0: फिर हमें पानी को बचाना चाहिए।
2: वो कैसे दादाजी?
0: वो ऐसे कि प्रत्येक को पानी की जितनी आवश्यकता हो उतना ही प्रयोग में लाना चाहिए, बर्बादी को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
1: जी दादाजी।
0: बच्चों तुमने देखा होगा जब लोग सैकड़ों लीटर पानी अपनी गाड़ी धोने में ही बर्बाद कर डालते हैं, या पेड़ पौधों में क्यारियों में पानी डालने के नाम पर टंकी चलाकर पाइप को लॉन में खुला छोड़ देते हैं, इससे पानी की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही पानी का संकट भी गहराने लगता है।
2: मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं दादाजी।
0: तो अब सोचो बेटा, सोचो कि तुम गर्मी में स्कूल से आते हो पसीने में तरबतर, इच्छा होती है कि गर्मी में फटाफट नहा लो, बाथरूम में जाकर जैसे ही टंकी खोलते हो उसमें पानी ही नहीं आता, तब तुम्हें कैसा लगेगा?
1: बहुत बुरा।
0: और फिर सोचो तेज गर्मी में तुम्हें प्यास भी बहुत तेज लग रही है, ठंडा पानी पीना चाहते हो, फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हो लेकिन वो तो ठंडी नहीं है।
1: मगर क्यों दादाजी?
0: वो इसलिए बेटा क्योंकि आप हर जगह की बत्ती पंखा सब कुछ तो खुला छोड़ देते हो, बिजली पानी सब साधन सीमित होते हैं, जब हम इन चीजों का दुरुपयोग करेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर वो हमें नहीं मिलेगी।
1: बात तो कुछ कुछ समझ में आ रही है।
2: कुछ कुछ मुझे तो लगता है दादाजी की 100% बात सही है।
1: वैसे आप गए कहाँ थे?
0: बेटा मैं गया था बिजली के दफ्तर।
1: वो क्यों?
0: वो इसलिए कि जो घर के बाहर 2400 घंटे स्ट्रीट लाइट जलती रहती है उसकी कंप्लेंट लिखाने गया था।
3: और कछु काम ना है का, जो कभी बिजली की कभी पानी की कंप्लेंट पे कंप्लेंट लिखवाए चले जा रहे हो?
0: ये काम भी तो जरूरी था भौजी, नुकसान भी तो हमारा ही है इसमें।
3: अरे वो तो ठीक है, लेकिन कॉलोनी में किसी के घर से कोई गया जो हर जगह हम ही जाते फिरे?
0: भौजी अगर सब यही सोचने लगे कि हम ही क्यों करें दूसरा करे, तो कोई काम हो ही नहीं सकता है, और इस तरह तो हम अपना नुकसान खुद ही करते रहेंगे। हाँ
2: लेकिन दादाजी पापा तो कह रहे थे कि कंप्लेंट से कुछ फायदा नहीं होता है, कोई सुनता ही नहीं।
0: ऐसा नहीं है तनु बेटा, हमने ऐसी ऐसी धारणा बना ली है। और अगर मान भी लें कि कर्मचारी ईमानदारी से अपना काम नहीं करते हैं, तब भी हमें तो अपना कर्तव्य निभाना ही चाहिए ना।
1: और अगर कल भी ये स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं हुई तो क्या करेंगे दादाजी?
0: तो फिर मैं जाऊँगा कम्प्लेंट लिखाने, देखते हैं कब तक ठीक नहीं करेंगे।
1: वाह दादाजी, यू आर ग्रेट।
0: और आपको भी इसी सोच के साथ ग्रेट बनना है।
1: जी दादाजी।
2: दादाजी, ये प्लास्टिक की थैलियाँ हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक दूषित कर रही है ना?
0: बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, इससे जमीन बंजर हो रही है। कुछ भी खाने पीने की चीज अगर इसमें रखें तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है।
2: दादाजी, हमारे स्कूल में तो प्लास्टिक की थैलियों के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है।
0: होना भी चाहिए बेटा।
3: अरे कतई ना सोचा थे, पूरे शहर में रोक लगा दे तब भी मरे चोरी छिपे काम में लेते रहते।
0: तुम ठीक कह रही हो भौजी। बच्चों, तुम इन सब के महत्व को समझो और अमल में लाओ। अगर हर व्यक्ति सुधार को समझ ले तो समाज तो अपने आप ही सुधर जाएगा। अच्छा अब चलो जल्दी से अंदर जाकर नहा लो, बहुत देर हो गई है भीगे हुए कपड़े पहनते हुए, ठंड लग जाएगी। हाँ आओ।
2: जी अच्छा दादाजी, चल मनु।
1: दीदी, एक बात पूछूं?
2: हाँ पूछना।
1: किसी से कहोगी तो नहीं?
2: ऐसी क्या बात है,
1: पहले प्रॉमिस करो।
2: ऐसा क्या खास है भाई जो तुझे प्रॉमिस चाहिए?
1: करो ना दीदी, पक्का प्रॉमिस।
2: चल ठीक है मनु, बोल क्या बात है?
1: पक्का प्रॉमिस है, तोड़ना नहीं।
2: हाँ हाँ ठीक है, पक्का प्रॉमिस, अब बोल क्या बात है।
1: दीदी, ये दादाजी कब जाएंगे यहाँ?
2: क्यों क्या हुआ, तुझे क्या परेशानी है?
1: बताओ ना कब जाएंगे।
2: अरे तुझे क्या, और वैसे भी ये तो उन्हीं का घर है।
1: नहीं, का घर तो गांव में है, बताओ ना कब जाएंगे।
2: अरे पागल है क्या, दादाजी हैं वो हमारे हेड ऑफ द हाउस, उनकी मर्जी जब तक चाहे रहे।
1: अरे यार मेरा तो जीना मुश्किल कर दिया।
2: अच्छा ऐसा क्या कर दिया दादाजी ने?
1: ओफो, ना देर तक सोने देते हैं, ना मर्जी का खाने देते हैं, और तो और टीवी देखने पर भी रोक हद कर दी।
2: अच्छा बहुत नाइंसाफी हो रही है मनु रे तेरे साथ।
1: सोचा था छुट्टियों में ऐश करूंगा, लेकिन सब
2: रियली मनु सब गड़बड़ हो गया।
1: मम्मी पापा भी दादाजी से कुछ नहीं कहते।
2: हाँ मनु बिल्कुल सही, लेकिन क्या कहना चाहिए?
1: यही कि मनु छोटा बच्चा है, उसे अपनी मर्जी से जीने दो।
2: हाँ मनु बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ।
1: दीदी आप मुझसे मजाक कर रही हैं।
2: नहीं बच्चा, आई एम सीरियस।
1: पक्का?
2: बिल्कुल पक्का है ना मम्मा?
4: बिल्कुल पक्का जी।
1: मम्मा, आप मेरी और दीदी की बातें छुपकर सुन रही थी?
4: मैं तो छुपकर नहीं सुन रही थी, जब तुम मुझे देख ही नहीं रहे तो मैं क्या कर सकती हूँ।
1: ये अच्छी बात नहीं है।
4: लेकिन आपकी बहुत अच्छी बात है।
1: कौन सी वाली?
4: यही कि आप अपने दादाजी के जाने की बात कर रहे थे।
1: सर मम्मा आप भी यही चाहती हैं?
4: पापा से पूछना पड़ेगा आखिर वो क्या चाहते हैं।
5: मुझसे क्या पूछना, जो तुम्हारी मम्मी चाहती हैं वही मैं भी चाहता हूँ।
1: सच पापा, कितने अच्छे हैं आप।
5: लेकिन चाहता क्या हूँ ये तो बताओ मुझे।
2: आपका लाडला पूछ रहा है दादाजी वापस कब जाएंगे अपने घर।
5: ओहो ये बात है। माई डियर मनु, आपको स्पष्ट कर दूं, ये दादाजी का ही घर है, अगर वो चाहें, वैसे तो वो चाहेंगे नहीं, हाँ अगर वो चाहें तो मुझे तुम्हें सबको घर से बाहर कर सकते हैं। और आपकी बेहतरी के लिए एक सलाह है मेरी, इस विचार को आप अपने हृदय से सदा सदा के लिए विदा कर दें। बाय द वे आपको दादाजी से परेशानी क्या है बेटा?
1: वो सुबह सुबह 4 बजे तो सबको उठा देते हैं, आपको बुरा नहीं लगता?
2: सही बात है पापा। मनु मुर्गा थोड़ी है जो 4 बजे सुबह उठकर टुकड़ों को करने लगेगा।
4: बात में दम है।
5: और क्या परेशानी है भाई?
1: अरे पापा, सुबह सुबह योगा प्राणायाम ये कोई करने की चीज है?
2: बिल्कुल सही बात है
1: दादाजी, क्या जाने सुबह की नींद इतनी अच्छी होती है।
5: वास्तव में दादाजी नहीं जानते हैं अदिति, जब से मैंने होश संभाला है चाचा जी को हमेशा नियम से 4 बजे उठते देखा है। इन्हीं नियम, संयम, आहार विहार और आचार विचार का परिणाम है कि चाचा जी पूर्ण स्वस्थ रहते हैं।
1: इसका मतलब आप दादाजी की साइड हैं?
5: बच्चे, मैं किसी की साइड नहीं हूँ, लेकिन सोचो दादाजी जो कुछ भी आपसे करने के लिए कहते हैं उसमें दादाजी का क्या फायदा है? सुबह उठने से, योगा प्राणायाम से या फिर स्वास्थ्यवर्धक भोजन करने से आप ही का तो फायदा होगा। वो तो आप सबके हित के लिए ही ये सब कर रहे हैं बेटा।
4: अच्छा चलो, अब सब लोग जल्दी से सो जाओ क्योंकि सुबह जल्दी सबको उठना भी है।

0: अच्छा भाई, अब सब कुछ देर जॉगिंग कर।
1: अब हमें तो लल्ला जी रहने ही दो।
0: अरे तुम्हें कैसे रहने दें भौजी, रक्तचाप एकदम सामान्य रहने लगेगा। आओ मेरे साथ करो।
2: दादाजी, जब से आपने सुबह उठाकर एक्सरसाइज करवानी शुरू की है, दिन भर बड़ा फ्रेश फ्रेश लगता है।
0: मेरे जाने के बाद भी सब नियमित रूप से योगा प्राणायाम करते रहना आप लोग।
2: कब जा रहे हैं आप?
0: मैं कभी भी जाऊं।
3: चाचा जी, आपका रिजर्वेशन करवा दिया है, कल 7 बजे की ट्रेन है।
1: अरे इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो?
3: अरे अम्मा, गंगा सफाई का अभियान की योजना है, उसे पूरा करना है चाचा जी को।
1: तुमने तो अपनी सिगरी जिंदगी इन्हीं कामों में लगा दी।
0: लगा क्या दी भौजी, एक प्रयास रहा है जीवन को सार्थक बनाने का।
2: दादाजी कुछ दिन और रुक जाते ना।
0: जरूर रुक जाता तनु बेटा, अगर गंगा सफाई अभियान का कार्यक्रम नहीं होता। वो भी बहुत जरूरी है।
3: अदिति, तुम ही तो इसे प्रदूषित करती हो।
4: मैं कैसे?
3: हर महीने 2 महीने में तुम मुझसे कहती हो कि ये पूजा की सामग्री सब गंगा जी में विसर्जित कर देना, और अम्मा का तो ये हाल है कि जब भी गंगा स्नान के लिए जाती हैं, वहीं साबुन से कपड़े धोएंगी, नहाएंगी भी तो साबुन से, जैसे किसी पंडित ने बता दिया हो।
1: अरे चुप रह, ज्यादा ना बोल। तेरे बीवी बच्चे ही तो कहते हैं साबुन से नहाने वाली बात।
3: तो आप मना किया करिए ना। अरे आप तो बड़ी हैं।
0: हाँ भाई, पहल तो हमें अपने घर से ही करनी चाहिए, अपने आप से करनी चाहिए। आगे से कोई भी पूजा सामग्री गंगा जी में प्रवाहित नहीं होगी, समझे? बाहर लॉन में किनारे से मिट्टी में डाल दिया करो, जिससे पैरों में भी नहीं आएगी और ना ही जल प्रदूषण होगा। बहू रानी
4: जी,
0: इस बात का ध्यान तुम्हें रखना है।
4: जी जरूर रखूंगी चाचा जी।
0: और अगली बार से गंगा स्नान करते समय साबुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा, ना ही कपड़े धोने के लिए और ना ही नहाने के लिए। और भी है बिट्टू।
3: वो क्या चाचा जी?
0: वो ये कि जिस अपने शयन कक्ष से अभी आप आ रहे हैं, उसका पंखा बत्ती ये सब बंद करना होगा।
4: अभी बंद करती हूँ चाचा जी।
0: बच्चों, एक तो हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, दूसरे अपनी सुख सुविधा के लिए प्रदूषण नहीं करना चाहिए। पर्यावरण के प्रदूषण का परिणाम ही है प्रलय।
2: ये क्या होता है दादाजी?
0: बताता हूँ। परि जमा आवरण, अर्थात हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है उसी का नाम है पर्यावरण। अगर हम इसे दूषित करेंगे तो इसके दुष्परिणाम हमें भयंकर रूप से झेलने ही पड़ेंगे।
2: इसका मतलब दादाजी, हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए।
0: हाँ, प्रकृति तो हमें मुक्त हस्त से बिना भेदभाव के स्वयं ही सब कुछ देती है, फिर अपने स्वार्थ के लिए उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। वर्तमान समय में जलवायु संकट जो पूरे विश्व में छाया हुआ है, इसी का परिणाम है।
2: ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी जलवायु परिवर्तन के कारण ही है ना दादाजी?
0: बिल्कुल बिल्कुल तनु बेटा, 2015 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा, 2016 इससे भी गर्म होने की घोषणा की गई। अगर ऐसा ही रहा तो मानव जीवन ही संकट में आ जाएगा। वर्तमान समय में पृथ्वी का तापमान 15.5 डिग्री सेल्सियस है। 17.7 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पृथ्वी के लिए खतरनाक होगा।
2: और क्या होगा दादाजी?
0: अगर अभी नहीं संभले तनु, तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप आदि में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होगी। पृथ्वी के 30% जीव जंतु तथा पौधे लुप्त हो सकते हैं। हिमालय के ग्लेशियर भी खतरे में।
2: ये ग्लेशियर क्या होते हैं दादाजी?
0: हिम नदी। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है मनु, वैसे वैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। समुद्री जल के तापमान में वृद्धि होने के साथ साथ अम्लीयता भी बढ़ी है।
2: यह तो पृथ्वी की बात है दादाजी, हम तो सेफ है ना?
0: नहीं मनु बेटा, हमारा देश भी तो पृथ्वी का ही एक हिस्सा है। भारत में अगर समुद्री जल 1 मीटर तक बढ़ता है तो भारत के 14,000 वर्ग किलोमीटर के तटीय क्षेत्र समुद्र में समाने की आशंका है। 70 लाख लोगों को अन्य स्थानों पर बसाना पड़ेगा बेटा।
3: चाचा जी, संयुक्त राष्ट्र समर्थित IPCC के अनुसार दुनिया भर में जारी कार्बन उत्सर्जन ना रुका तो दुनिया का बच पाना संभव नहीं।
0: इसके लिए जीवाश्म ईंधन के अंधाधुंध इस्तेमाल को जल्द से जल्द रोकना अति आवश्यक है। बिट्टू, पृथ्वी पर जो कुछ घट रहा है, जाने अनजाने उसमें हम सभी का कुछ न कुछ योगदान तो है ही। स्पष्ट है कि प्राकृतिक संसाधनों का हमने अंधाधुंध दोहन किया है। उपभोग कम किए बिना इसका कोई हल नहीं निकलेगा। जनसंख्या पर भी नियंत्रण रखना होगा बेटा।
2: दादाजी, नेपाल और कश्मीर का भूकंप, चेन्नई की भयानक बाढ़, सुनामी या फिर उत्तराखंड की त्रासदी और विदर्भ का सूखा, ये सब क्या जलवायु परिवर्तन का ही भयंकर परिणाम है?
0: निसंदेह, और जलवायु परिवर्तन पर्यावरण के प्रदूषण का ही परिणाम है। अतः अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए इसका संरक्षण संवर्धन करना ही होगा। तनु,
5: दादाजी हमें इसके लिए क्या करना चाहिए?
0: इसके लिए बेटा अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, पानी की बचत करें, घर के आसपास टाइल्स न लगाएं, बिजली कम खर्च करें, कूड़ा सड़क पर न फेंकें, प्लास्टिक का प्रयोग बंद करें, कम दूरी के लिए पैदल या साइकिल का प्रयोग करें, अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ रखें, समझे बेटा?
3: अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी इस नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाए तो जलवायु संकट तथा पर्यावरण प्रदूषण पर काफी हद तक प्रतिबंध स्वतः ही लग जाएगा ना चाचा जी?
0: सदैव याद रखना बच्चों, ये पृथ्वी एवं प्रकृति जितनी सहृदयता से हमें देती है उतना ही क्रूरता से अपने प्रति की गई छेड़छाड़ एवं अपमान का भी बदला ले लेती है। एक साहित्यकार हैं इंद्रदेव त्रिवेदी जी, उनकी पंक्तियां हैं, अपनी इस जिंदगी का कहो क्या क्या हिसाब दोगे, रचनात्मक सोच की कहो कौन सी किताब दोगे, हमारे भविष्य के लिए क्या छोड़कर जा रहे हो, बच्चे जब ये पूछेंगे कहो क्या जवाब दोगे, कहो क्या जवाब। इसलिए हम सबको भरसक प्रयास करना है कि आगे आने वाली संतति को हम बेहतर पर्यावरण लेकर जाएं, जिससे वे स्वस्थ और समृद्ध जीवन जिएं। सदैव ध्यान रखना है कि जो जहां मिला जैसा उससे बेहतर छोड़ें। आओ मिलजुल कर कुछ राहें नई जोड़ें, कुछ राहें नई जोड़ें, कुछ राहें नई जोड़ें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम धरोहर में नाटक जलवायु संकट, दोषी कौन। लेखक थे नीलम सक्सेना। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन।

श्रोताओं, आज का मन भावन है श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित, और कार्यक्रम की पहली शब्दावली हमें लिख भेजी है गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खां, राजा खां, सिमरन खान, शहनाज बाबू अंसारी। लिखते हैं, जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ अमल के मुताबिक फल मिलता है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। यहाँ जिंदगी के हजारों झगड़े उठते हैं और फैसला होता है, जैसे यहाँ कोई रहना चाहे वैसे ही दुनिया उसको रखती है। ये तो इंसाफ की जगह है, यहाँ नकद इंसाफ मिलता है। यहाँ जो दूसरों पर रहम करता है उस पर लोग तरस खाते हैं, जो दूसरों की बात रखते हैं उनकी बात रखी जाती है, यहाँ इंसाफ से काम लिया जाता है। इस दुनिया में जो दूसरों की मदद करता है उसी की मदद की जाती है, और जो दूसरों की तकलीफ का कारण बनता है, जो दूसरों को तकलीफ देता है उसको तकलीफ दी जाती है। यहां जैसा करोगे वैसा भरोगे। यहां जो दूसरों की इज्जत करता है उसकी इज्जत की जाती है, और जो अपनी मीठी बातों से दूसरों का दिल ठंडा करता है उसका दिल भी ठंडा किया जाएगा। हम तो बस इतना ही कहेंगे, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अभी आप सुन रहे हैं श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम की अगली शब्दावली हमारे पास आई है राजद्वारा कोठी अफसराला रामपुर से भेजने वाले हैं रूमा खान, बॉबी खान, सुभान, मदीहा, गुलफ शाह, जीनत अमान, शबनम अब्बासी, शमा परवीन। लिखते हैं, जी हाँ दोस्तों, कितना बेहतर हो जाता खामोश हो जाना। ना कोई कुछ पूछता है, ना किसी को कुछ बताना पड़ता है। खामोशी ना सिर्फ 1000 बलाएं टालती है, बल्कि वकार और सलामती की भी जमान है। खामोशी गुस्से का बेहतरीन इलाज है, खामोशी इबादत है, बगैर मेहनत के खामोशी किला है, बगैर दीवार के खामोशी सेवा है। अजीजों का खामोशी जवाब है, जाहिलों का खामोशी हैबत है। बगैर सल्तनत के खामोशी फतेह याबी है, बगैर हथियार के खामोशी दबदबा है। हाकिमों का खामोशी जाहिल की पर्दापोशी है।

अभी आप सुन रहे हैं श्रोताओं की शब्दावली पर आधारित कार्यक्रम मन भावन, और कार्यक्रम की अगली शब्दावली हमारे पास आई है रफत साहब की तरफ से। मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, बहन फिरोजा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी लिखते हैं, दोस्तों अगर हम बरसात की बात करें, बरसातों का अपना अलग मज़ा होता है। तेज़ गर्मी में काली घटाएं, रिमझिम बारिश दिल को बहुत सुकून पहुंचाती है और चारों ओर हरियाली दिल को भर जाती है। बरसात की वह बूंदें जब हमारे तन मन में पड़ते हैं, वाकई में बारिश में भीगने का एक अलग ही मज़ा है। बरसात के इस महीने में हर एक इंसान को बारिश का इंतज़ार रहता है, और बरसात के इस महीने में बहुत सारे लोग अपने अपने घरों में पकवान भी बनाते हैं। बरसात के इस महीने में खाने पीने का एक अलग अलग मज़ा है, चाय के साथ जैसे पकौड़े घर में, छोले पूरी और पत्तों का पकवान होता है, बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैं बरसात का मौसम बहुत खूबसूरत मौसम होता है। जी हाँ रफा साहब, बरसात का मौसम वाकई खूबसूरत है, लेकिन आजकल गर्मी बहुत है और बरसात अगर हो जाती है तो ठंडा मौसम हो जाता है, तो हमें बरसात का मौसम इसलिए भी अच्छा लगता है। बहुत सही शब्दावली आपने भेजी है आज के मौसम को लेकर। और अगली शब्दावली हमारे पास आई है जिशान अली जी की तरफ से, लिखते हैं, कार्यक्रम मनभावन पेश करने वाले समाइन की खिदमत में मेरा प्यार भरा आदाब नमस्कार। हम सब मना रहे हैं वन सप्ताह। पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है तो कल है। वन प्रकृति का अनमोल उपहार है, यह हमें शुद्ध वायु, जल, औषधियों और हरियाली प्रदान करते हैं, साथ ही पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। वन सप्ताह हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने, उसका संरक्षण करने और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की प्रेरणा देता है। आइए इस अवसर पर एक पेड़ लगाने और उसे सुरक्षित रखने का संकल्प लें, क्योंकि हरा भरा पर्यावरण ही स्वस्थ और समृद्ध भविष्य की पहचान है। ये हमारे श्रोता जिन्होंने शब्दावली लिखी, सिंधौली मीरगंज बरेली से जिशान वारसी, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, और वन सप्ताह से जुड़ा ये बहुत ही अच्छा मैसेज इन्होंने हमें दिया है। इसके साथ ये अगली शब्दावली हमारे पास आई है जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से, तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, हमजा सिद्दीकी, गुलशन साहिबा लिखते हैं, दोस्तों जिंदगी में कभी इस गलतफहमी में मत रहना कि लोग तुम्हें सच में चाहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुमसे मिलने वाले फायदे को चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों ये जिंदगी बड़ी अनमोल है, हम किसी भी इंसान से मतलब के लिए व्यवहार न रखें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के काम आते रहें, ये जिंदगी है जनाब, हर हाल में जीना है, क्योंकि जिंदगी में सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमें इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है, मिलकर सामना करना चाहिए, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आज हम खुश हैं ये जरूरी नहीं कि आने वाला कल भी आपको खुशियों से भरा ही मिलेगा और खुशियां देगा, इसलिए ऊपर वाले ने आपको जितना दिया है उतने में ही खुश रहें, क्योंकि जितना आपके पास है ना उतना हर किसी पर मिलता है और ना उतना हर किसी पर नहीं। जिंदगी को ऐसे जियो जो मिसाल बन जाए, काम ऐसे करो लोग आप पर गर्व करें, सब कुछ मेहनत करने से ही होता है, मेहनत करते रहो सफलता जरूर मिलेगी।

घर से निकाला, तमाम बीमारियों ने उनके घर में अपना बसेरा कर लिया। जब लोग साइकिल चलाते थे तो बीमारियां दूर रहती थी। साइकिल को नज़र अंदाज करना यही वजह है छोटी छोटी उम्रों में बड़ी बड़ी बीमारियां। आज व्यक्ति डॉक्टरों के पास जाना पसंद करता है, महंगी महंगी दवाइयां खाना पसंद करता है, अच्छे अच्छे पदार्थ खाने से परहेज करता है, मगर सुबह को एक दो घंटे साइकिल चलाना पसंद नहीं करता। अगर हर व्यक्ति साइकिल चलाने का आदि बन जाए तो काफ़ी हद तक बीमारियों से बचा जा सकता है। साइकिल चलाएं, बीमारियां भगाएं, और यही करोगे तो योग करोगे रहोगे निरोग। बहुत ही अच्छी शब्दावली आपने भेजी है, और ये कार्यक्रम की अगली अंतिम शब्दावली हमारे पास आई है। भेजने वाले हैं मुंबई से अनु बड़जातिया, शमशुल खान, अनुराज बनारा। लिखते हैं, लोकगीत की संस्कृति मिट्टी से निकले सुर, दिल तक पहुंचे नूर। लोकगीत मतलब लोक प्लस गीत, जनता का गीत। ये किसी एक लेखक के नहीं होते, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जुबान से जुबान चलते हैं। लोकगीत की खास बातें, जड़ों से जुड़े खेत, त्यौहार, रिश्ते, मौसम सब इसी में बसते हैं। बिना नोटेशन के इसे सीखने के लिए स्कूल नहीं जाना, चौपाल चाहिए। हर मौके का गीत, जन्म से लेकर मरण तक हर पल के लिए अलग गीत। सरल भाषा, भारी शब्द नहीं, दिल की सीधी बात। भारत के प्रसिद्ध लोकगीत, राज्य लोकगीत कब गाते हैं? बिहार, यूपी, बिरहा, कजरी, सोहर, सावन, शादी, बिछड़न पर, राजस्थान, मांड, पढ़िहारी, त्यौहार, कुएं पर या पानी भरते समय। और आपकी शब्दावली पूरी नहीं पढ़ी जा सकेगी क्योंकि टाइम का अभाव है, लेकिन आपने बहुत ही अच्छी शब्दावली लिखी है। मिट्टी की सौंधी खुशबू है लोकगीतों की, हर तान में शहर भूल जाएं तो भी ये जिंदा रहते हैं गांव की जबान में। और कोशिश करेंगे कि आपके शब्दावली को हम अगले कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करें। तो तब तक के लिए दीजिए कार्यक्रम से अनुराग को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वन भवन, आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। अब अगला प्रसारण दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबा

प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा

0: का आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के
0: आज से शुरू होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हस्ताक्षरित समझौते से भारत की उच्च गुणवत्ता वाली और सस्ती दवाएं इंडोनेशिया के लोगों के लिए अधिक आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की क्षमता, तांग आदि पूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत की जनता को समर्पित किया और इसे भारत तथा इंडोनेशिया के बीच स्थायी ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक बताया। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम का मुकाबला स्पेन से होगा। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। दोपहर के 12:05 हुए हैं। अब सुनिए कुछ आवश्यक संदेश।

0: फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, हुब्बे वतन के पौधे इसमें नए लगाएं।
1: मिल मिल के हम तराने हुब्बे वतन के गाएं, बुलबुल हैं जिस चमन के गीत उस चमन के गाएं।
0: हम सब भी मिलकर गीत गाएं
1: अमन के भाईचारे के।

0: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
1: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाए।

0: आज की सबसे पहली जरूरत ERSS
1: यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम,
0: और ये उपलब्ध है हेल्पलाइन नंबर 112 पर।
1: आपातकाल में साथ निभाए,
0: तुरंत सहायता उपलब्ध कराए
1: 112।
0: सवाल चाहे महिला सुरक्षा का हो
1: या सार्वजनिक स्थानों पर आत्मरक्षा का,
0: यदि चाहिए पुलिस सहायता
1: या फिर अग्निशमन सेवा की हो आवश्यकता,
0: बुलाना हो एम्बुलेंस को,
1: मिटाकर हर सस्पेंस को
0: डायल 112।
1: कोई भी राज्य हो कोई भी इलाका,
0: 112 सच्चा हम सफर है आपका।
1: कॉल 112, SMS करें या पैनिक बटन दबाएं,
0: या फिर भेजें ईमेल alwaysuse112 इंडिया मोबाइल ऐप।
1: जब घेरे कोई भी आपदा,
0: तुरंत मिले सहायता,
1: डायल 112।
0: चिंता से पाएं छुटकारा,
2: पुष्पा झुकेगी नहीं,
3: 112 की सेवा रुकेगी नहीं।

सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव

यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। अपराह्न के 12:10 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत आपके नाम।

रामपुर एट द रेट gmail.com। तो आप इन दोनों ईमेल एड्रेस पर अलग अलग आप फरमाइशें करते हैं, अपनी शब्दावली भेजते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि गीत आपके नाम पर केवल आप गीतों की फरमाइश के लिए ही मैसेज करें। यही गीत हमारे इन सभी

नहीं, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह, दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से हैं, मोहम्मद यासिन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, ये गीत उन्होंने सुनना चाहा है। बेड़ी से हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमने, वैष्णवी डोमने, चंचल डोमने, अर्जुन गावनेकर, धीरज सब्वासेरे। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले श्रोताओं सुनते हैं कुछ आवश्यक संदेश।

ग्राम पंचायत बठेणा पाठन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश प्रमिला बंछौर, यह गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। बुलडाणा

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत आपके नाम, ईमेल पर आधारित, और मैं हूं आपका रेडियो साथी अनुराग सिंह राजपूत। कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश हमारे पास आई है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। यही गीत हमारे इन सभी श्रोताओं के नाम। बिस्मिल्ला मस्जिद रामपुर से फौजिया रोशनी, शायना काजल और भाई शहजाद अली। रघुनाथपुरा ज़िला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी।

0: आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। अब अगला प्रसारण सुनिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त

0: प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी,

मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा पूरी

2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में बढ़त के साथ

336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम परिवार जगत। प्रस्तुति रहेगी

अपने बच्चों के साथ व्यवहार और माता पिता की अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस। माता पिता की भूमिका तो इस दुनिया में सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, और माता और पिता में एक माता के रूप में मेरा ये मानना है

है जो तनाव से दूर करने में उनको का बहुत बड़ा योगदान देती है, जो कि है योग और ध्यान। अगर बच्चे के साथ बैठकर हम खुद थोड़ी देर छोटे छोटे श्वसन के तरीके, सांस लेने के, जिसे जिसे कहते हैं सांस लेने के तरीके, जैसे कि सांस

0: गांधी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि बी द चेंज दैट यू वॉन्ट टू सी इन दिस वर्ल्ड। अब वो परिवर्तन बनिए जो आप इस देश में देखना चाहते हैं या इस दुनिया में देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये पेड़ लगाना कोई सरकारी काम नहीं है, कोई सरकारी योजना का हिस्सा नहीं है। सरकार हमारी हर स्तर पे मदद करने की पूरी कोशिश करती है, पूरा प्रयास करती है। हमारे यशस्वी जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि सरकार अकेली रिस्पॉन्सिबल है या सरकार अकेली ही प्रयास रहते हैं। अगर हम खुद भी एक इकाई समझें अपने अपने आप को समाज की, तो ये जो चेंज है ये एक घर से, एक कॉलोनी से, एक पार्क से, एक छोटे से पेड़ से भी शुरू हो सकता है। और जब हम इतनी क्वांटिटी में पेड़ लगाएंगे तो जाकर विश्व पटल पर या हमारे देश के उस स्केल पर फर्क आएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हम 140 करोड़ की जनसंख्या है, और नंबर केवल और केवल नुकसान का एक विषय नहीं होना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है तो अपॉर्चुनिटीज कम है। मुझे लगता है नंबर एक स्ट्रेंथ होती है और हमें उसे स्ट्रेंथ की तरह लेना चाहिए। अगर हर इंसान जागरूक बने और ये सोचे कि मैं एक अभिन्न अंग हूँ इस समाज का, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं विश्व पटल पर भी प्रभाव डालने का साहस रखता है।
1: अच्छा श्रीकांत जी, अक्सर हमने देखा है कि लोग पौधे तो लगा देते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद उनकी देखभाल नहीं करते। क्या कभी आपने भी ऐसा महसूस किया या देखा है?
0: हाँ, ये मैंने देखा है, कई बार देखा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पब्लिसिटी के लिए और वाहवाही के लिए लोग कैंपेन्स चलाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कैंपेन्स चलाती हैं। मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि वो समाज में अच्छा कार्य करें। लेकिन फिर भी मैंने कई बार देखा है, कई जगहों पर देखा है, कई शहरों में देखा है कि लोग पेड़ तो लगा देते हैं लेकिन फिर उनकी देखभाल करना छोड़ देते हैं। मैं ये गांव से कहना चाहूंगा ये बात, अगर हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हमें जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप उस वृक्ष की देखभाल नहीं कर सकते तो वृक्ष लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने एक बार वृक्ष लगा दिया, वृक्षारोपण कर दिया, तो आपने किसी को जीवन दे दिया और उसके बाद उसको लेने का आपका कोई अधिकार नहीं बनता है।
1: यदि कोई परिवार या आम नागरिक पर्यावरण के लिए कोई छोटा सा योगदान देना चाहे, तो वह क्या कर सकता है?
0: मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है, खासकर
1: जी
0: मैं शहरों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई शहरों में ऐसा देखा है, मैं कई शहरों में रहा भी हूँ, कई शहरों में मैंने ऐसे देखा है जो आसपास के छोटे मोटे पार्क्स रहते थे पहले, जहाँ घास रहती थी पहले, जहाँ बचपन खेलता था, जहाँ बचपन निकल कर आता था, जहाँ से क्रिकेटर्स बाहर आते थे, जहाँ से फुटबॉलर्स बाहर आते थे, छोटे छोटे पार्क से क्रिकेट की शुरुआत होती थी, प्लास्टिक के बॉल से, प्लास्टिक के बैट से। वो चीजें खत्म होती जा रही हैं। हम तकनीकीकरण की तरफ तो बढ़ रहे हैं लेकिन बच्चे के जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं वो खत्म होती जा रही हैं। इस वजह से ये जो ग्राउंड्स और ये पार्क्स होते थे ये बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड रह गए हैं आजकल समाज में। तो सबसे पहला स्टेप जो एक परिवार या फिर आप एक यूनिट के तौर पर ले सकते हैं वो ये है कि आसपास के पार्क्स को रिवाइव करें, दोबारा से पुनर्जीवित करें उन्हें। और आसपास के जो भी आपको एक ऐसा एरिया लगता है जो पब्लिक प्लेस बन सकता है, उसमें घास लगाएं, वृक्षारोपण करें और उसका ध्यान रखें, तो एक छोटा सा इकोसिस्टम तैयार होगा। आप कुछ समय में देखेंगे, अगर वहां पानी का सोता भी है छोटा सा, तो आप देखेंगे वहां अपने आप जीवन पनपने लगेगा। तो एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाता है छोटा सा। अगर ऐसा आप करें और ऐसा हर कोई सोचे तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है पूरे ओवरऑल क्लाइमेट पर।
1: अच्छा, बच्चों और युवाओं की भूमिका पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, बच्चों की और युवाओं की भूमिका सबसे ज्यादा अहम है। उसका कारण यह है कि युवा हमारी

0: रहा हूं, मैं उतने वृक्ष लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है, अगर आप
1: क्या
0: अपने
1: बात
0: जन्मदिन
1: है।
0: पर, अगर आप अपने जन्मदिन पर इतने जीवन दे पा रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। क्योंकि हमारे शास्त्रों पुराणों में भी कहा गया है कि एक पेड़ का मतलब 10 पुत्रों के भांति हमें वो फल मिलता। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हर एक पौधा जब मुस्काएगा, हर एक पौधा जब मुस्काएगा, धरती का कोना कोना हराएगा।
1: कितनी अच्छी बात कही आपने, धन्यवाद श्रीकांत जी। आपने अपने अनुभवों और विचारों के माध्यम से वृक्षारोपण और हमारा योगदान और इसका जो महत्व है हमारे लिए और हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया आपने। आपकी बातें हमें यह संदेश देती हैं कि यदि आज हम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प लें तो आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, हरित और स्वस्थ भविष्य दे सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
2: श्रोताओं, ये था क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता जिसका विषय था वृक्षारोपण और हमारा योगदान। और श्रीकांत शर्मा से बात कर रही थी हमारी साथी प्रेरणा गुप्ता। और अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। प्रेरणा, बरसात का मौसम जितना सुहाना होता है ना, उतना ही ये संक्रमण और मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ा देता है।
1: जी बिल्कुल सुनीता जी, ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्यों ना अपने श्रोताओं को कुछ आसान और महत्वपूर्ण स्वस्थ सुझाव दिए जाएं।
2: बिल्कुल, तो चलिए श्रोताओं, कुछ आसान और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सुझाव आपसे शेयर करते हैं। जैसे कैसे रखें मानसून में बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान।
1: बच्चों को हमेशा ताज़ा घर का बना पौष्टिक भोजन दें, बाहर का कटा हुआ फल, खुला खाना और जंक फूड खाने से बचाएं।
2: और बच्चों को उबला हुआ या स्वच्छ पानी ही पिलाएं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ही जरूरी है और गर्मी के मौसम में तो बहुत ही जरूरी है।
1: खाने से पहले और शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोने की आदत जरूर डालें।
2: और यदि बच्चे बारिश में भीग जाएं तो घर पहुंचते ही उनके कपड़े बदलें और उन्हें फिर से स्वच्छ पानी से नहलाएं एक बार, और शरीर अच्छे से सुखाकर साफ कपड़े पहना दें।
1: मच्छरों से बचाव के लिए पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाएं और घर के आसपास पानी जमा ना होने दें।
2: और बच्चों को पर्याप्त नींद, नियमित खेल कूद और हल्का व्यायाम करने के लिए प्रेरित करें ताकि उनकी जो रोग निरोधक क्षमता है वो अच्छी रहे।
1: तेज बुखार, खांसी, उल्टी, दस्त या सांस लेने में तकलीफ, ऐसे लक्षण दिखाई दें तो बिना देरी किए डॉक्टर से सलाह लें, स्वयं दवा देने से बचें।
2: और स्वतः छोटी छोटी सावधानियां बच्चों को बड़ी बीमारियों से बचा सकती हैं। तो इस बार बरसात के मौसम में स्वच्छता, संतुलित आहार और समय पर देखभाल अपनाएं और अपने बच्चों को जो स्वास्थ्य है उनका पूरा पूरा ध्यान रखें, उन्हें स्वस्थ रखें।
1: सुनीता जी, कार्यक्रम में अब समय हो गया है पत्रों का, तो ये जो प्यारा सा रंगीन खत प्राप्त हुआ है इसे पढ़ लिया जाए।
2: बिल्कुल प्रेरणा, ये प्यारा सा पत्र हमें भेजा है हमारे नियमित श्रोता है थाना 3 ऊंची मस्जिद रामपुर से इरफान खां, PWD वाले शहीद परवीन उर्फ शिवा,
1: इमरान खां, रेहान खां, इकराम खां, समीना बी,
2: आसिफा और शबीना ने। आप सभी को 30 जून की प्रस्तुति जो कि मेरी और प्रेरणा गुप्ता की थी पसंद आई और सभी हमारी कार्यक्रम को इतनी शिद्दत के साथ मिलकर सुनते हैं और कार्यक्रम को पसंद करते हैं और हमें पत्र लिखते हैं, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया।
1: परिवार जगत सुनने वाले सभी श्रोताओं से हमारा अनुरोध है कि हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें अवश्य लिख भेजिए। आपकी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और शुभकामनाएं हमारे लिए बेहद मूल्यवान हैं। आपके पत्रों का हमें सदैव बेसब्री से इंतजार रहेगा।
2: तो प्रेरणा भैया, हमारी और भी श्रोता हमारे कार्यक्रम से जुड़े पत्रों के माध्यम से, तो इसके लिए हम अपना पता बता दें।
1: जी बिल्कुल,
2: तो उठाइए श्रोताओं कागज और पेन और लिखिए, भेजिए हमें पत्र और हमें अपनी प्रतिक्रियाएं भी जरूर भेजिएगा पत्र में कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है। और इसके लिए हमारा पता नोट कीजिए, परिवार जगत कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी रामपुर, पिन कोड नंबर है 2449-01।
1: सुनीता दी, अब अपने श्रोताओं को एक गीत और सुनवा दिया जाए।
2: हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाई गीत का तो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और साथ ही हमारे श्रोता भी कर रहे हैं। और देखिए मौसम भी इतना प्यारा है, तो जो गीत संगीत अगर हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे और हम

0: भी सुनेंगे अपने श्रोताओं के साथ साथ, तो मन और खुश होगा और जो मौसम का लुफ्त है ना वो भी हम अच्छे से
1: बढ़
0: उठा पाएंगे।
1: जाएगा जी।
0: लेकिन गर्मी के साथ साथ ना मौसम का हम गाने के माध्यम से हम जरा और अच्छा अपने आप को महसूस कराते हैं और अपने श्रोताओं को भी कराते हैं। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम से प्रेरणा गुप्ता को दीजिए अनुमति, नमस्कार।
1: और साथ ही सुनीता सिंह को भी दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे इसी वादी के साथ। हमारा स्वीकार करें प्यारा सा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम परिवार जगत। आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। अब मिड डे न्यूज़ और दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: restoration of communication services, uninterrupted supplies of food and medicines, the release of detained leaders and implementation of a 38-point written agreement. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. President Draupadi Murmu unveiled and flagged off the trophies of Durand Cup Tournament 2026 in New Delhi today. Addressing the gathering, the President said this year new teams will compete to become the champions of the Durand Cup, the President's Cup and the Shimla Trophy. Expressing happiness over the participation of the Sri Lankan team in this year's tournament, President Murmu said the inclusion of new teams would make this historic competition even more popular. The President extended her best wishes to all the teams and players participating in the tournament.
1: हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार फुटबॉल में खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हुए टीम को विजेता बनाते हैं उसी प्रकार हम सभी देशवासी एक दूसरे के साथ देते हुए विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे.
0: The Union Ministry of Tribal Affairs Ministry has unveiled a renewed vision for strengthening tribal research institutes as engines of knowledge, innovation and evidence-based policy making for tribal development, inaugurating a national workshop in Bhubaneswar today. Union Tribal Affairs Minister Joel Oram called for integrating indigenous wisdom with cutting-edge technology to preserve tribal heritage and promote inclusive growth. Our correspondent reports.
2: The two-day national workshop on strengthening tribal research institutes began in Bhubaneswar this morning, bringing together policymakers, researchers, academicians and technology experts from across the country. Inaugurating the workshop, Union Tribal Affairs Minister Joel Oram said, tribal research institutes must evolve into centers of excellence that seamlessly blend indigenous knowledge with modern research and technological innovation. He underscored the need to preserve tribal languages, culture and traditional knowledge while leveraging digital technologies and artificial intelligence to strengthen research, documentation and policy formulation. A major highlight of the workshop was the launch of TriveX, a first-of-its-kind digital learning platform dedicated to tribal arts, culture, languages and traditional knowledge. Prakash Das, Akashwani News, Bhubaneswar.
0: Union Home Minister Amit Shah today launched the mission to plant 70 lakh saplings in Delhi under the Ek Ped Maa Ke Naam Abhiyan to increase green cover in the national capital. Speaking on the occasion, Mr. Shah said this campaign is a significant initiative aimed at transforming Delhi's environment. He said Prime Minister Narendra Modi had launched the Ek Ped Maa Ke Naam campaign to promote environmental conservation. The Home Minister highlighted that the government is continuously working to clean the Yamuna River. The Enforcement Directorate today conducted searches at five premises in and around Kolkata in the case of dishonest financial dealings and routing of suspected funds in the bank accounts of Trinamool Congress. The preliminary investigation by ED has revealed that huge funds of more than 150 crore rupees have been routed through aviation and travel companies for suspicious purposes. The sixth batch of pilgrims for the ongoing Sri Amarnath Yatra was flagged off from the Bhagwati Nagar base camp in Jammu early this morning amid tight security arrangements. Our correspondent reports that a total of 8,815 pilgrims left for the Holy Cave Shrine in Kashmir. The Indian Meteorological Department, IMD, has said conditions are favourable for southwest monsoon to further advance into some more parts of North Arabian Sea, Gujarat and remaining parts of Haryana and Punjab and Rajasthan during the next 3 days. The Weather Department forecast heavy rainfall over parts of coastal Karnataka, Gujarat, Konkan, Goa and Madhya Maharashtra today. In Gujarat, heavy monsoon rains continue to lash several parts of the state, especially in Saurashtra and South Gujarat region, with Vapi and Valsad district recording a maximum of 8.5 inches rainfall in the last 24 hours, a report.
3: Heavy rains have affected normal life in the state, leading to temporary relocation of over 700 people, closure of 80 regional roads and power disruptions across multiple rural pockets. Waterlogging in the Mumbai division has led to cancellation of major trains heading from Ahmedabad, Surat, Jamnagar and Okha. As a precautionary measure, schools and Anganwadis in Surat and Navsari districts have been ordered to remain closed today. Meanwhile, the IMD has maintained its active warning for heavy to exceptionally heavy spells across South Gujarat and parts of Saurashtra, advising fishermen to avoid venturing into the Arabian Sea until 9th of July. Aparna Khunt, Akashwani News, Ahmedabad.
0: In men's cricket, India will take on hosts England in the third T20 international of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The men in blue will look to level the series as the new skipper Shreyas Iyer is yet to register a win under his captaincy. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta. MOUs exchanged in several areas including critical minerals, technology, agriculture and maritime security. Prime Minister Modi conferred Indonesia's highest honour, Bintang Adipurna of the Republic of Indonesia, in Jakarta. Gujarat High Court upholds death sentence for 38 accused and life term for 11 persons in 2008 Ahmedabad serial blast case. And southwest monsoon to further advance into parts of Gujarat, Haryana, Punjab and Rajasthan during next 3 days. With that, we end the midday news.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
5: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
5: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने

0: कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंगतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार रखते हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
3: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
4: 6300 हेक्टर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजी

0: और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो करते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।

0: उच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी उमंग।

0: जी
1: लेकिन विमलेश जी, ये होता क्या है?
0: अजीत जी, ये कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन पेड़ों और पौधों के बीच भूमिगत संचार का प्राकृतिक जाल है।
1: जी हमने अक्सर मातृ वृक्षों के बारे में सुना और जाना है।
0: बिल्कुल,
1: मातृ वृक्ष उन्हें कहते हैं जो वृक्षों के समूह में सबसे बड़े और पुराने होते हैं। उनकी जड़ें सूक्ष्म कवक या फंगस द्वारा दूसरे पेड़ों से जुड़ जाती हैं।
0: जी,
1: इसके माध्यम से पेड़ आपस में पानी, पोषक तत्व और रासायनिक संदेश एक दूसरे को भेज सकते हैं।
0: जी, ये जड़ें कमजोर या छोटे पौधों को पानी और अन्य पोषक तत्व भेजती रहती हैं। ऐसे पेड़ों को मातृवृक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक माता की तरह दूसरे पेड़ पौधों का पालन पोषण करते हैं। तो ये तो बात हुई पोषक तत्वों की। अजीत जी, आपने कहा कि पेड़ एक दूसरे को रासायनिक संदेश भी भेजते हैं, इसे जरा श्रोताओं को तो बताइए।
1: जी विमलेश जी, ये जानना सचमुच बहुत रोचक होगा। देखिए, पेड़ पौधे बोल तो नहीं सकते, लेकिन वे रासायनिक संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को हवा और कवकों के माध्यम से संदेश भेजते हैं।
0: जी,
1: ये प्रकृति की अद्भुत व्यवस्था है।
0: श्रोताओं, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब किसी पेड़ या पौधे पर कीटाणु हमला करते हैं तो वे पत्तियों द्वारा हवा में एक विशेष प्रकार का रसायन छोड़ते हैं, जिसे दूसरे पौधे या पेड़ मानो सूंघ लेते हैं और वे पहले से ही रक्षा रसायन बनाना शुरू कर देते हैं,
1: और इस प्रकार से उन्हें आने वाले खतरे की चेतावनी मिल जाती है। इससे उनकी रक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि पेड़ पौधों में बहुत धीमे विद्युत संकेत भी कार्य करते हैं।
0: तो श्रोताओं, पेड़ों के बीच का संचार मूक है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। वे बेशक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन रसायनों, आपस में जुड़ी हुई जड़ों, कवकों और विद्युत संकेतों द्वारा वे आपस में संवाद कर सकते हैं।
1: एक बात और श्रोताओं, पेड़ पौधों में भी रोगों या चोट के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता होती है। जब उनकी छाल कटती है या छीली जाती है तो वे एक प्रकार का रसायन बनाकर अपने घाव को भरने का प्रयास करते हैं।
0: जी,
1: इसलिए आपने देखा होगा कि जब इनकी छाल छीली जाती है तो कुछ समय बाद वहाँ नई छाल विकसित हो जाती है। ये ऐसा ही है जैसा कि हमारा शरीर भी प्राकृतिक रूप से घावों को भर सकता है।
0: इसलिए जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े जीवित समुदाय की तरह कार्य करता है। तो श्रोताओं, कैसी लगी ये जानकारी, हमें जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है श्रोताओं, मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृ वृक्ष किसे कहते हैं और क्यों?
1: आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम चींटी।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्यपुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसमें चींटी के परिश्रम और दृढ़ संकल्प के बारे में एक सुंदर गीत द्वारा बताया गया है, तथा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन में निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें।
1: तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
1: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
1: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
1: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
1: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
1: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
1: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
1: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
1: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
1: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
1: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
1: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
1: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन, आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

0: तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत चींटी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है नील के किनारे।
1: इस कार्यक्रम में मिस्र की प्राचीन सभ्यता के विकास में नील नदी की भूमिका के बारे में बताया गया है।
2: Your attention please. Air India announces the arrival of its flight number AI-806 from Bombay. Your attention please. Air India announces.
3: पापा, कायरा का ये हवाई अड्डा कितना शानदार है।
4: हाँ बेटा।
3: दादाजी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे।
4: यहीं कहीं होंगे, अभी मिल जाएंगे। अच्छा चलो, सामान की ट्रॉली लेकर उधर से निकल चलते।
3: मुझे लगता है दादाजी आए ही नहीं। याद है जब हम उनके पास मॉरिशस गए थे ना, तब भी वो हमें लेने नहीं आए थे।
4: अरे बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो जानबूझकर हमें लेने नहीं आए थे। याद नहीं, उन्हें भारतीय दूतावास के किसी जरूरी काम से सुरीनाम जाना पड़ गया था।
3: तो अब भी उन्हें दूतावास के काम से कहीं जाना पड़ गया होगा।
4: हो सकता है कि...
5: हेलो मिस्टर वर्मा, माफ कीजिए मुझे आने में देर होगी।
4: अरे कादिर, तुम पिताजी नहीं आए?
5: दरअसल उन्हें किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। उन्होंने कल रात मुझे फोन करके कहा कि मैं आपको लेने हवाई अड्डे पहुंच जाऊं। आपको घुमाने की जिम्मेदारी भी मेरी।
4: अच्छा अच्छा, कादिर मेरी बेटी श्वेता से मिलो। और श्वेता, ये हैं अब्दुल कादिर मोहम्मद फादिल।
6: अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह श्वेता बिटिया को तो मिस्री अभिवादन भी आता है। चलिए मिस्टर वर्मा, बाहर गाड़ी खड़ी है, आपको आपके पिताजी के घर पहुँचा दो।
4: ठीक है, चलो श्वेता अपना हैंडबैग उठा लो। आओ
7: आओ, चलो
6: आओ।

0: और सुनाओ कादिर, तुम्हारा शोध कार्य कैसा चल रहा है?
1: अब तो पूरा होने वाला है।
2: कादिर अंकल, आप किस पर शोध कर रहे हैं?
1: मिस्र की प्राचीन सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता की पारस्परिक समानताओं पर।
0: इसी सिलसिले में कादिर 2 साल भारत में भी आकर रहे थे।
2: अच्छा, तभी तो आप इतनी अच्छी हिंदुस्तानी बोल लेते हैं।
3: अरे कादिर अंकल, मैंने तो सोचा था काहिरा पुराने ढंग का शहर होगा, लेकिन यहाँ तो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं।
1: बेटा, ये काहिरा का नया भाग है। जैसे तुम्हारी नई दिल्ली है ना, काहिरा भी दिल्ली की तरह कई बार उजड़ा और कई बार बसा। दिल्ली की ही तरह इसके नाम भी बदलते रहे। आज इसका नाम अल काहिरा है।
3: अच्छा, काहिरा नहीं अल काहिरा।
1: हाँ
3: पापा, पापा वो देखो, नील नदी है ना।
0: हाँ, वो नील नदी ही है। काहिरा शहर नील के किनारे बसा हुआ है। जानती हो, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 6648 किलोमीटर है।
1: लीजिए, वो रहा आपके पिताजी का घर। मिस्टर वर्मा, घर में एक नौकर है, वो आपकी देखभाल करेगा। अभी आप लोग आराम करें, मैं शाम को आऊंगा, फिर आपको काहिरा शहर घुमाने ले चलूंगा।
0: अरे कादिर भाई, एक प्याला चाय तो पीते जाओ।
1: नहीं अभी नहीं, शाम को। अभी मुझे एक व्यक्ति से मिलने जाना है अपने शोध कार्य के सिलसिले में। अच्छा मैं चलता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।

0: कादिर अंकल, ये बाजार तो बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। फुटपाथ पर लोगों ने दुकानें लगा रखी हैं और देखिए कैसे आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रहे हैं।
1: और वो देखो उस दुकान पर सूती कपड़े के कितने थान रखे। जानती हो बेटी, मिस्र की कपास सबसे बढ़िया मानी जाती है।
0: पापा, यहाँ के लोगों की वेशभूषा कितनी अच्छी है। पुरुषों ने लंबा सा चोगा पहन रखा है और ढीला पजामा, सिर पर टोपी है।
2: इस चोगे को गलाबिया कहते हैं।
1: और वो देखो औरतों ने लंबी बाहों वाले कुर्ते पहन रखे हैं।
0: हाँ, बुर्के में कुछ ठीक से दिख नहीं रहा। अच्छा कादिर अंकल, सभी औरतों ने तो बुर्का नहीं पहन रखा, ऐसा क्यों?
2: अब धीरे धीरे बुर्के का रिवाज कम होता जा रहा है।
1: अरे बाप रे, यहाँ कितनी भीड़ है। कादिर, क्या आज कोई खास बात है?
2: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, खास बात यही है कि यहाँ की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। रोजगार की तलाश में लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। जानते हैं काहिरा की जनसंख्या 1000 व्यक्ति प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है, और नतीजा ये कि यहाँ लोगों के पास रहने को घर नहीं।
0: अच्छा, तो फिर ये लोग कहाँ रहते हैं?
2: कुछ लोग इमारतों की छतों पर अपना घर बना लेते हैं, कुछ मकबरों और कब्रिस्तान में डेरा जमा लेते हैं, कुछ तो झुग्गियां बनाकर रहते हैं।
0: दिल्ली में भी तो बहुत से लोग झुग्गियों में ही रहते हैं।
2: हाँ, मैंने कहा था ना कि दिल्ली और काहिरा की बहुत सी बातें मिलती हैं। चलो आओ, तुम्हें जलेबी खिलवाएं।
0: जलेबी? वैसी ही जैसे हमारे देश में मिलती है?
2: हाँ बिल्कुल वैसी।
1: कमाल है
2: मिस्टर वर्मा, जलेबी नहीं, यहाँ बालूशाही, फेनी, मेवे का हलवा, सभी मिठाइयाँ मिलती हैं।
1: वाह।
2: और ईद के मौके पर सिवैयाँ भी मिलती हैं।
0: मैं तो मेवे का हलवा खाऊंगी।
2: ठीक है, चलो उस कोने पर दुकान है जहाँ मेवे का हलवा बहुत बढ़िया बनता है,
1: और इसके बाद घर लौट जाएंगे।
0: इतने जल्दी?
1: अरे कल सुबह पिरामिड देखने नहीं जाना क्या?
0: हाँ, जाना है।
1: फिर
2: ठीक है, कल मैं आप लोगों को सुबह लेने आऊंगा। अभी चलकर मेवे का हलवा खाते हैं।
1: हाँ।

0: पापा, यहाँ तो चारों तरफ रेगिस्तान है। हम लोग काहिरा से कितनी दूर आ गए हैं?
1: कोई 8 मील दूर। वो देखो श्वेता, वो रहा गीजा का महान स्फिंक्स।
0: बाप रे, कितना विशाल है
1: ये स्फिंक्स। 18 मीटर ऊंचा और 57 मीटर लंबा है। कहते हैं ये 5000 वर्ष पुराना है।
0: अच्छा कादिर अंकल, स्फिंक्स का चेहरा आदमी जैसा और बाकी शरीर बैठे हुए शेर जैसा क्यों बनाया गया है?
1: पहले लोग ये रहस्य नहीं जानते थे, लेकिन फिर इस विशाल स्फिंक्स के पंजों के बीच एक प्रार्थना कक्ष में एक शिलालेख मिला, जिससे पता चला कि ये स्फिंक्स सूर्य देव हर्माचीज का एक रूप है। इसकी स्थापना इसलिए की गई थी जिससे ये गीजा के पिरामिडों को शैतानी शक्तियों से बचा सके।
2: वाकई बड़ा भव्य है। अच्छा ठीक है, अब भीतर चलकर पिरामिड देखते हैं।
0: चलिए पापा।
1: यहाँ गीजा में 3 पिरामिड हैं। वो देखो सबसे बड़ा पिरामिड, जानती हो श्वेता इसकी ऊंचाई कितनी है?
0: क्या पता, ये तो पहाड़ जैसा लगता है।
1: हाँ, इसकी लंबाई 147 मीटर है।
0: कादिर अंकल, इन्हें क्यों बनवाया गया था?
1: दरअसल ये पिरामिड प्राचीन मिस्र के राजाओं या फैरों के मकबरे हैं, जैसे आगरे का ताजमहल है ना।
2: इसका मतलब इन पिरामिडों में फैरों की कब्रें हैं।
1: कब्रें नहीं है, शव रखे हैं, जिन्हें ममी कहते हैं। ममी शब्द अरबी भाषा से आया है, जिसका मतलब है संरक्षित शरीर।
0: मिस्री लोग शव को संरक्षित क्यों रखते थे?
1: उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। वो ये मानते थे कि आत्मा पक्षी की तरह दिन भर उड़ती फिरती है और रात होने पर अपने शरीर में लौट आती है, इसलिए शरीर को संरक्षित करना जरूरी था, नहीं तो वो लौट कर कहां आती।
2: कादिर, ममी बनाने का काम बड़ा जटिल होता होगा।
1: हाँ मिस्टर वर्मा, इसमें 70 दिन लगा करते थे।
2: ओ, तो क्या हर व्यक्ति की ममी बनाई जाती थी?
1: अरे नहीं मिस्टर वर्मा, प्राचीन मिस्र के लोग शव को रेगिस्तान की गर्म रेत में दफना दिया करते थे और रेत उन्हें सुरक्षित रखती थी। फिर बाद में महत्वपूर्ण लोगों के लिए मकबरे बनाए जाने लगे, लेकिन इन मकबरों के भीतर उतना सूखापन नहीं होता था जितना बाहर की रेत में होता था। इसलिए शव को संरक्षित करना जरूरी हो गया, नहीं तो वे नष्ट हो जाते।
0: पापा पापा, वो देखिए एक लड़का कितनी तेजी से उस पिरामिड पर चढ़ा चला जा रहा है।
1: बस अब तुम कुछ पैसे निकाल लो।
0: किस लिए?
1: ये लड़का 6 मिनट 47 सेकंड में पिरामिड पर चढ़कर लौट आएगा और इस कर्तव्य के लिए पर्यटकों से इनाम मांगेगा।
2: अरे वो देखो वो उतरने भी लगा।
0: पापा, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी का जो किला है ना, उसके 54 मीटर बुलंद दरवाजे से भी तो एक आदमी नीचे पानी के कुंड में छलांग लगाता है और फिर देखने वालों से इनाम लेता है।
2: अरे लो, वो उतरकर हमारी ओर ही आ रहा है। वाह वाह, शाबाश बेटा शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। ये लो, ये हमारी तरफ से इनाम।
0: पापा, मैं भी पिरामिड पर चढ़कर देखूं?
2: अरे नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं है, थककर चूर हो जाओगी। देखो अभी तो स्टीमर में बैठकर हमें नील नदी की सैर भी करनी है। हाँ
0: तो फिर चलिए।
2: हाँ तो आओ, चलो आओ कादिर, आओ आओ।

0: श्वेता, कहो कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा अंकल। देखिए, काहिरा शहर तो वो पीछे छूट गया। पापा कहाँ हैं?
0: अभी आ रहे हैं, स्टीमर की कैंटीन से कुछ खाने पीने का सामान लेने गए।
1: चलो अच्छा है, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है।
0: वो देखो श्वेता, नील नदी के दोनों ओर हरे भरे खेत दिख रहे हैं।
1: और खेतों में वो औरतें क्या कर रही हैं?
0: कपास चुन रही हैं। जानती हो, कपास नील घाटी की प्रमुख फसल है। यहाँ एक साल में कपास की 3 फसलें उगाई जाती हैं।
1: अच्छा, उस खेत में किसान हल चला रहा है और बैल हल खींच रहे हैं। ये तो हमारे देश जैसा ही है। अंकल, यहाँ ट्रैक्टर नहीं चलते?
0: अरे मिस्र में खेती की जमीन ही कितनी है, बस नील नदी के किनारे किनारे ही तो, बाकी सब तो रेगिस्तान ही है।
2: फिर भी हमें आपका देश बहुत आकर्षक लग रहा है।
1: पापा, मेरे लिए खाने को क्या लाए?
2: ये तले हुए आलू, डबल रोटी की सैंडविच, दूध और कहवा।
0: ओह शुक्रिया। मिस्र की 3 खास चीजें हैं, कहवा, गप्पे और हुक्का।
2: अच्छा ठीक है, तो कहवा तो ये रहा, अब गप और हो जाए।
0: इसके लिए तो आपको किसी कहवा घर में चलना पड़ेगा।
2: क्यों?
0: वहाँ लोग कहवा पीते हैं, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं और गप मारते हैं।

0: अंकल, वो औरतें सर पर क्या रख कर लेके जा रही हैं?
1: अपने आदमियों के लिए खाना। किसान सुबह से शाम तक खेतों पर काम करते हैं और औरतें घर व बच्चों की देखभाल करती हैं और खाना बनाकर लाती हैं।
2: अपने गांव जैसा लगता है ना सब कुछ।
1: जी हाँ, भारत और मिस्र की प्राचीन सभ्यता में भी बड़ी समानता है। मिस्र के लोग सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां होती थी। पिता नील की भी पूजा की जाती थी। अच्छा श्वेता, एक पहेली पूछो।
0: पूछिए।
1: हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर तक नील नदी में पानी चढ़ता जाता है, जबकि यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है, बताओ कैसे?
0: हर साल पानी चढ़ता है।
1: हाँ, इतना कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है।
2: और मिस्र में वर्षा होती नहीं।
1: हाँ,
2: अजीब सी बात है।
1: हार गए?
0: हाँ अंकल, आप ही बताइए ना, ऐसा क्यों होता है?
1: प्राचीन मिस्र के लोग भी इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाए। 19वीं शताब्दी के अंत में जाकर इसका भेद खुला।
2: अच्छा, वो कैसे?
1: देखिए, नील नदी में दो नदियों का पानी आकर मिलता है, सफेद नील का और नीली नील का। सफेद नील युगांडा की विक्टोरिया झील से निकलती है। पूरे साल उसमें पानी एक जैसा रहता है, इसलिए उसके कारण तो पानी बढ़ नहीं सकता। लेकिन नीली नील इथियोपिया के पहाड़ों से निकलती है। पहाड़ों की बर्फ पिघलकर नीली नील में बहती है। साथ ही इथियोपिया के पठारी क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, उसका पानी भी नीली नील में आता है। बस इसी कारण हर साल नील नदी का पानी चढ़ता है।
0: मैं सोच रही थी कि ऐसी ही कोई वजह होगी, पर...
2: ए श्वेता, तुम झूठ कब से बोलने लगी?
1: जानते हैं, प्राचीन मिस्र के लोग नील नदी में आने वाली इस बाढ़ को देवताओं का क्रोध मानते थे, इसलिए हर साल देश की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी का चुनाव किया जाता। बड़ी धूमधाम के साथ पिता नील की पूजा की जाती। और फिर उस सुंदरी को नदी में फेंक दिया जाता।
0: कितनी बुरी बात है।
2: सो तो है, लेकिन उस समय के लोग बाढ़ का सही कारण नहीं जानते थे ना।
1: अब तो जान गए हैं, फिर भी ये प्रथा कायम है। बस अब सुंदरी के स्थान पर एक गुड़िया अर्पित की जाती है।
0: गुड़िया ही क्यों, गुड्डा क्यों नहीं?
2: हाँ भाई खादिर, इस सवाल का जवाब तो जाने।
1: इसका जवाब मेरे पास तो है नहीं। मैं पूछकर बताऊंगा।
0: अंकल सुनिए, कोई गीत गा रहा है उधर खेतों में, है ना?
2: वाह, कितना सुंदर गीत है। अच्छा कादिर, क्या हम लोग आसमान बांध देख सकते हैं?
1: इस स्टीमर से तो नहीं, कल कार से आपको मैं वहां ले चलूंगा।
0: वहां क्या है अंकल?
1: 364 फीट ऊंचा और 12,565 फीट लंबा बांध है बेटा, जिसके पीछे 300 मील लंबी झील बनाई गई है। इसे नासिर झील का नाम दिया गया है।
2: इस बांध के बन जाने से मिस्र के लोगों को काफी फायदा हुआ होगा।
1: हाँ बिल्कुल, अब सिंचाई आसानी से हो जाती है। बांध से पैदा हुई बिजली से उद्योगों को भी बढ़ावा मिला है, लोगों के जीवन में खुशहाली आई है।
2: आबू सिंबल के मंदिर भी यहीं कहीं है ना कादिर?
1: हाँ, बांध के पास ही पहाड़ी पर। जानते हैं,

0: आबू सिंबल के मंदिर की भी कोई पहेली है?
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम नील के किनारे, और अब इसी के साथ हम अपने उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहते हैं। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। कल फिर से होगी मुलाकात। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रामपुर केंद्र है। अपराह्न के ठीक 3 बजे हैं। मीडियम वेव पर हमारी प्रथम सभा अब संपन्न होती है। अब से लेकर शाम 5 बजे तक FM 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम मौजूद रहेंगे। शाम के 5 बजे मीडियम वेव व FM दोनों मीटरों पर

3 बजे हैं। मीडियम वेव पर हमारी प्रथम सभा अब संपन्न होती है। अब से लेकर शाम 5 बजे तक FM 102.9 MHz पर विविध भारती प्रसारण सेवा मुंबई के कार्यक्रम मौजूद रहेंगे। शाम के 5 बजे मीडियम वेव व FM दोनों मीटरों पर

मुंबई के कार्यक्रम मौजूद रहेंगे। शाम के 5 बजे मीडियम वेव व एफएम दोनों मीटरों पर अपनी द्वितीय सभा के प्रसारणों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।

0: हेल्दी नमस्कार, क्या हाल है भाई? हेल्दी से तो ये बात कहना जरूरी है कि सब लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें।
1: जी जी, और ऐसा होता है ना ममता जी, किसी एक को भी ये बात सुनकर अगर ऐसा लगता है, थोड़ा भी अगर वो इंस्पायर होते हैं या उनको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हेल्दी नमस्कार कहना कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप बदल ले लेता है।
0: बिल्कुल सही बात है, अगर एक नहीं बहुत लोगों तक हमारी बातें पहुंचती हैं, करोड़ों श्रोता हमारी बात सुनते हैं और बहुत सारे श्रोता लाभान्वित भी होते हैं। अब देखिए ना, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सभी बरखा रानी की बूंदों का आनंद लेते हैं, भीगने का आनंद लेते हैं, छतरियों का आनंद लेते हैं, लेकिन जो उसके खामियां हैं उस पर लोग कम ही ध्यान देते हैं कि बरसात आपके लिए खुशी तो लेकर आती है, फायदे लेकर आती है, लेकिन मुसीबतें भी लेकर आती है, और इन मुसीबतों के साथ उन मुसीबतों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बहुत सारे लोग, खास तौर से युवा वर्ग, बारिश जब होती है तो बस हाथ में मोबाइल उठाया और रीलें बनाना शुरू और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और कई बार वो इसके पीछे छिपे खतरे को भूल जाते हैं, जैसे नदी के किनारे गए हैं, समंदर के किनारे गए, पहाड़ों पर
1: या
0: झरनों के पास,
1: जी डैम के पास चले जाते हैं, फिर एक तेज कहीं पे
0: लहर आती है,
1: लपट आती है, लहर आती है, वो वीडियो बन जाता है, वो रील जो है हर जगह,
0: वो रील मोबाइल सहित पानी में चला जाता है और खुद भी पानी के अंदर चले जाते हैं, और घर वाले रोते रह जाते हैं, जिंदगी भर महसूसते रह जाते हैं मन कि भाई हमारी संतान चली गई। तो बारिश का आनंद ले, रील बनाने का आनंद ले, लेकिन उनके पीछे छिपे खतरों पर भी गौर करें। और ये रील बनाने की जो आदत है, रीलों से प्रसिद्धि पाने की जो आदत है, ये कई बार आपको मुश्किल में भी डाल देती है।
1: बिल्कुल, मुश्किल में भी डाल देती है, जान से भी कभी कभी हाथ गंवाना पड़ जाता है, कई लोगों का हमने देखा है, सुना, जाना है, अलग अलग जगहों से पता चला है।
0: लाइक
1: कमेंट, कमेंट,
0: आपने
1: लाइक,
0: रील डाली और हमने लाइक किया, अरे तुमने मेरे लाइक नहीं किया,
1: जी इस तरह के झगड़े भी हो जाते हैं और सारा ध्यान फिर अपना दूसरे सब कामों को छोड़ करके अपने हैंडसेट पे चला जाता है कि इसका लाइक आया या नहीं, फलाने ने उसको सब्सक्राइब किया है या नहीं, किसी ने कुछ कमेंट लिखा है या नहीं, तो सारा ध्यान हमारा बस एकत्रित हो जाता है उस रील से संबंधित कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं।
0: वक्त कितना चला जाता है दीपा जी, आपने ये नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि पूरे पूरे दिन जब तक वो जागते रहते तब तक मोबाइल में ये देखते रहते हैं या पोस्ट करते रहते हैं, पोस्टें देखते रहते हैं, लाइक कमेंट। तो ये जो ये जुनून है, एक तरह का जुनून है लोगों में, और जुनून कई बार बीमारी का रूप ले लेता है। और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं, तो आज हमने श्रोताओं को ये विषय दिया है, वायरल होने का जुनून, तो उनके क्या अनुभव है वो जरा बताएं कि अड़ोस पड़ोस बाल बच्चे जो इसके शिकार हैं।
1: कुछ आए हैं संदेश ममता जी, लेकिन हम चाहते हैं वो और अपने अनुभव या अपने आस, जैसे आपने कहा आस पड़ोस का कहीं देखा है, कुछ जाना है।
0: मैं तो डर गई दीपा जी कि आपने कहा अभी कि आज हमने भी एक पोस्ट की है और लाइक कमेंट देख रही थी भाई यहाँ हम लोग ना उलझ जाएं।
1: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोगों ने अपनी राय दी है, अपने बातें बताई हैं और क्या वो इस चीज को लेकर के उनके विचार हैं ये भी आए हैं, हम चाहते हैं लेकिन कुछ और भी बातें वो
0: देख तो रहे हम भी,
1: जी
0: लाइक कमेंट देख रहे हैं कि हमारे श्रोताओं की कितनी सारी टिप्पणियां आई है। देखिए ना, इस समय 52 लोगों ने लाइक किया है और 112 कमेंट आ चुके हैं और 2 लोगों ने शेयर किए हैं, लेकिन हम इसके मतलब इसके फेर में नहीं पड़ते हैं।
1: जी,
0: श्रोताओं की जो टिप्पणियां जेन्युइन है, जो विषय संबंधित है, वो हम उन तक पहुंचाते हैं। तो अपने अनुभव साझा कीजिए, श्रोताओं से ये अनुरोध है। और कई लोगों की आदत होती है कि सीधे सीधे कोई बात न कहें, जैसे कि न नौ मन सोना होगा न राधा नाचेगी, या फिर 100 दिन चले 250 कोस, ऐसे कितने सारे मुहावरे हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: याद है आपको?
1: याद है, जैसे कि आज जो हम लेने वाले हैं, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना,
0: टेढ़ी खीर,
1: टेढ़ी खीर, यानी कि एक कहीं समूह है वहां पे सब लोग कुछ एक बात पे सहमत हो गए हैं, लेकिन कोई एक जनाब होंगे वो कुछ और ही बात अलग करेंगे।
0: कहा जाता है कि रानी कितनी भी गरीब हो जाएंगी, लेकिन 9 मन सोने से थोड़ी ना, उनके पास 9 मन सोना तो होगा ही। ऐसे जाने कितने मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं, जिन्हें हमने बचपन में सुना है, और घर में बड़े बुजुर्ग दादी नानी को तो हमने माँ को मुहावरे में ही बात करते हुए सुना, सीधे सीधे बोलते ही नहीं थे। अगर पढ़ाई के बारे में

0: पढ़ाई शुरू कर दो,
1: जी
0: उसको या तो गानों के साथ या मुहावरों के साथ ही बोलते
1: वैसे
0: थे।
1: ही जोड़ते थे और उसी तरीके से बात
0: तो
1: करते थे।
0: कितने मुहावरे याद है आपको और हमारे श्रोताओं को? चलिए आज
1: चलिए
0: परीक्षा
1: आज
0: होती
1: जानते हैं।
0: है।
1: बिल्कुल ये जानते हैं और आगे बढ़ेंगे, हल्की फुल्की भी कुछ बातें करेंगे, जैसे एक विषय हमने लिया वायरल होने के बारे में विचार करने का, लेकिन एक हल्की फुल्की बातें लेंगे कि मोल भाव करना ये कला है या आदत है। बाजार में जाते हैं कोई तो कहता है ना, हम कभी एक बार ऐसा हो जाता है ना ममता जी, हम कहते हैं अरे हमने ये 250 रुपये में लिया, और आप कहेंगी क्या बात है 250 रुपये में लिया, हम तो कल ही 150 रुपये में लेकर आए, और फिर देखिए जो 250 में लेकर आया है उसका दिल उदास हो
0: बैठ
1: जाता है और
0: जाता
1: मुंह बिल्कुल उतर जाता है। तो ये मोल भाव करना कला है या आदत, इसके
0: है।
1: बारे में भी बात हो। और सखी सहेली विशेष का भी दिन है आज, आज हम बात कर रहे हैं हार्दिका शाह जो कि संस्थापक है एक फिनटेक कंपनी की किनारा कैपिटल नाम से।
0: तो अब क्या करें, अब एक गाना सुन लेते हैं,
1: चलिए
0: फिर और बोलते बतियाते हैं।

0: कहाँ खो गई? कमेंट लाइक कमेंट में,
1: लाइक कमेंट में, और ये देखने के लिए कि जो बातें अभी हमने अपने श्रोताओं से की क्या वो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं या नहीं।
0: अच्छा अच्छा वैसे अगर हमारे श्रोता कमेंट नहीं करेंगे तो हम उन तक उनकी बात कैसे पहुंचाएंगे, तो इसलिए उनकी टिप्पणियों का तो हमें इंतजार रहता है, लेकिन वो नशा नहीं बनना चाहिए लाइक कमेंट का।
1: कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है, पूरा ध्यान एकदम ऐसा होता है ममता जी कि आज इस वाले विषय पर कुछ आए हैं, बात आई है या नहीं आई है, कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, क्या लिखा है, तो ये उत्सुकता बढ़ तो जाती है।

0: का तो हमें इंतजार रहता है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वो नशा नहीं बनना चाहिए लाइक कमेंट का।
1: कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है, पूरा ध्यान एकदम ऐसा होता है ममता जी कि आज इस वाले विषय पर कुछ आए हैं, बात आई है या नहीं आई है, कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, क्या लिखा है, तो ये उत्सुकता बढ़ तो जाती है।

0: का तो हमें इंतजार रहता है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वो नशा नहीं बनना चाहिए लाइक कमेंट का।
1: कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है, पूरा ध्यान एकदम ऐसा होता है ममता जी कि आज इस वाले विषय पर कुछ आए हैं, बात आई है या नहीं आई है, कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, क्या लिखा है, तो ये उत्सुकता बढ़ तो जाती है।
0: तो
1: और
0: अब
1: जी, अब एक और उत्सुकता है कि ये जो हमारी संस्थापक है हार्दिका शाह,

0: कैपिटल की स्थापना की। किनारा कैपिटल इस संस्था का उद्देश्य उन छोटे व्यापारियों, महिला उद्यमियों और सूक्ष्म व्यवसायों को सरल और त्वरित ऋण उपलब्ध कराना था जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग व्यवस्था से सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती थी।
1: जी, और उन्हें यह विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति सही समय पर आर्थिक सहयोग मिल जाता है तो केवल अपना जीवन ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों का भविष्य भी बदल सकता है। और उनके नेतृत्व में किनारा कैपिटल, जो उनकी कंपनी है, आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय स्थापित करता है। संस्थाओं ने हजारों छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है।
0: तो ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा।
1: जी।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली
3: जी। और अपनी कंपनी जो हम बात कर रहे थे हार्दिका शाह के बारे में, उनकी कंपनी के हर विकास कार्यक्रम के माध्यम से वो महिला उद्यमियों को सशक्त बना रही हैं, वो जो कंपनी के सीआरओ सीएसआर कार्यक्रम के माध्यम से महिला सूक्ष्म उद्यमियों को सहयोग देने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। उनका संघर्ष, दूरदर्शिता, समाज के प्रति समर्पण आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे इस विश्वास की एक जीवंत मिसाल है कि दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम और सेवा भाव से असंभव भी हम संभव कर सकते हैं।
2: बिल्कुल सही बात है। तो ये अपने जहन में जरूर रखें, जब भी किसी काम की शुरुआत करें तो ये जहन में रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं
3: जी।
2: तो काम सफल होता है। अब दीपा जी देखिए ना, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जो गाना सुनवाया था वो सजना बरखा बाहर आई फिल्म परख का, और उस पर एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गाना इतना अच्छा लग रहा है कि इस गीत को सुनता हूं तो मुझे वो दिन और में याद आ जाता है। हुआ यूं कि गांव के तालाब में नहा कर आया था, ये आजकल के बरसात के दिन थे, वहां तालाब पर मैंने पपीहे को भी देखा था और घर आया तो ताऊ जी के रेडियो पर यही गीत बज रहा था, तो मुझे वो दिन समय ये गीत याद आ गया। तो देखिए ना, रेडियो से बजते हुए गाने हमें कहां कहां पहुंचा देते हैं।
3: बिल्कुल, और हर एक के जीवन में जो रेडियो का प्रेमी है कहीं

0: ममता जी, आज का समय कुछ ऐसा हो गया है ना कि प्रसिद्धि पाने की लालसा हर एक के मन में कुछ हावी सी होने लगी
1: बिल्कुल
0: है,
1: सही
0: ना?
1: कह रही
0: लगता
1: हैं
0: है ना
1: आप।
0: आपको?
1: और बिल्कुल
0: और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सही या गलत का फर्क उस चक्कर में भूल जाते हैं कई लोग, है ना?
1: और आजकल सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या अब कई लोगों के लिए आत्मसंतुष्टि का पैमाना बन गई है।
0: जी बिल्कुल।
1: कितने फॉलोअर्स हैं, कितने बढ़े कितने नहीं
0: घटे।
1: घटे, ये भी देखते रहते हैं। अरे घट गए तो लोग तनाव में आ जाते हैं कि अरे बाप रे अब क्या करें।
0: जी
1: और दूसरी ओर वायरल पोस्ट लोगों को और अधिक लोकप्रियता की चाह में लगातार नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। कई बार ऐसी बातें सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए फैला दी जाती हैं जो ठीक नहीं होती हैं, सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हो जाती हैं। वायरल से मतलब प्रसिद्धि है।
0: प्रसिद्धि
1: और
0: है जी।
1: कुछ चीजें जो नहीं होनी चाहिए उसे भी लोग अपनी प्रसिद्धि के तहत वायरल कर देते हैं।
0: बिल्कुल। और एक कोई पोस्ट अगर डाली और उस पोस्ट पर अगर उन्हें वो एक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो निराशा बढ़ने लग जाती है, तनाव बढ़ने लग जाता है। किसी ने अगर जवाब नहीं दिया आपके पोस्ट, आपने कोई पोस्ट डाली और उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो इंसान एकदम लगता है किसी ने कुछ देखा नहीं, हमारे मेरे बारे में कोई जानना नहीं चाहता या मेरे इस लिखी हुई चीज को कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये क्या हो गया, क्यों हो गया। और दोस्तों को फोन लगा के पूछ भी लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है कई बार।
1: यहाँ तक हो गया है कि अभी कई लोगों को ये देखा जाता है कि लोग आधी रात को, आप देखिए आधी रात को भी लोग सक्रिय रहते हैं सोशल
0: जी
1: मीडिया पर।
0: जी
1: आप
0: जी
1: ऑनलाइन दिख जाते हैं, हरी बत्ती आपको दिखाई दे
0: दिखाई
1: जाती
0: पड़ती
1: है
0: है जी, तो मालूम पड़ जाता
1: और
0: है।
1: रात को उठ के 2-2.5 बजे 3 बजे भी देखते हैं कि किसने हमारी पोस्ट को लाइक किया, किसने कमेंट किया और
0: जी
1: किसने दिल का साइन लगाया।
0: हाँ
1: वो भी अब
0: ये
1: एक
0: भी
1: अलग पैमाना बन गया है कि अरे
0: जी।
1: उसने तो सिर्फ लाइक करके छोड़ दिया, दिल का साइन नहीं लगाया। और अब लाइक करने के बाद जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करने वाले ये भी उम्मीद करते हैं कि उनके कमेंट्स को भी लाइक किया जाए।
0: जी
1: फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे कमेंट्स को लाइक आपने नहीं किया, तो कमेंट्स को भी लाइक करने की एक प्रथा चल पड़ी है। तो इस प्रवृत्ति का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि कई लोग समाज, कानून और अपनी सुरक्षा की अनदेखी कर बैठते हैं। सड़क पर स्टंट, सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित हरकतें और केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई भ्रामक सामग्री डाल देते हैं, पोस्ट कर
0: बिल्कुल
1: देते हैं।
0: बिल्कुल
1: इससे न केवल व्यक्ति स्वयं जोखिम में पड़ता है बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती
0: बिल्कुल।
1: है।
0: कई बार सड़कों पे आप देखते हैं कि युवक युवती बैठे हैं बाइक पर और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, और हमने ये देखा कि पीछे जो महिला बैठी है वो फोन हाथ में लिए हुए हुए है और आगे बाइक की तरफ से कुछ इस तरह से वो कैमरा का सेटिंग करते हैं फोन का कि वो चलती हुई गाड़ी नजर आए, बाइक नजर आए। तो ये खतरा दूसरों के लिए भी है, खुद के लिए सबसे ज्यादा है। कब कहाँ बैलेंस बिगड़ सकता है इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है ये सड़क पर इस तरह के स्टंट करके इस तरह से कुछ अलग ही तरीके से वीडियो डालना, ये शायद हमें और किस पता नहीं किस प्रसिद्धि की किस पीढ़ी तक लेके जा सकता है।
1: तो दीपा जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर चर्चा और करेंगे और श्रोताओं की टिप्पणियां भी बहुत सारी आ रही हैं। एक गाना सुन लेते हैं,
0: चलिए
1: फिर उसके बाद चर्चा
0: जी।
1: करेंगे।

0: बेचारा दिल क्या करे भाई, लाइक कमेंट देखे तो ना देखे कैसे, बेचारा दिल क्या करे। दिल पर वश नहीं होता है इस मामले में कि लोग कितना भी
1: बात तो
0: खुद को
1: सही है।
0: समझा लें।
1: देखिए जी बिल्कुल, हम कितना भी समझा लें लेकिन हमारी भी नजर जब कार्यक्रम रहता है ना, चलता होता है ममता जी, तो हम ये देखते हैं कि और कितने कमेंट्स आए, और कितने कमेंट्स आए, ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो अच्छे से अच्छे जो कमेंट्स अपने कार्यक्रम
0: श्रोताओं
1: से
0: तक
1: संबंधित है
0: पहुंचा
1: वो
0: देंगे।
1: पहुंचाए हम।
0: लेकिन
1: बिल्कुल
0: यहां पर उद्देश्य अलग है ना, लेकिन जो
1: जी
0: उद्देश्य गलत होता है अपनी प्रसिद्धि पाने का, वो एक अलग मुद्दा है। अभी
1: जी
0: और बातें करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।
1: चलिए।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली और बातें हम कर रहे थे गाने से पहले और इस ब्रेक से पहले कि वायरल होने के जुनून में लोग न जाने क्या क्या करते हैं,
1: कम समय में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर में हमारा नाम हो जाए।
0: अब यही बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है, देखिए इन्होंने लिखा है, आजकल वायरल होने की दौड़ में लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी पहचान कुछ पल की लोकप्रियता नहीं बल्कि अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र है। जो चीज कुछ दिनों के लिए वायरल होती है वो समय के साथ भूल भी जाती है, लेकिन इंसान की अच्छाई, संवेदनशीलता और सादगी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल सही कहा कि मेहनत, सादगी, सच्चाई यही हमेशा आगे तक चलती रहेगी। और एक और संदेश है, ममता जी ये कहते हैं कि आज के सोशल मीडिया के दौर में कई लोगों के लिए वायरल होना ही सफलता का पैमाना ये बन गया है। अधिक लाइक, व्यूज और फॉलोवर्स पाने की चाह में कुछ लोग ऐसे वीडियोज या पोस्ट बना देते हैं जो जोखिम भरे हो सकते हैं। ये जुनून कभी कभी उनकी पढ़ाई, काम, रिश्ते और मानसिक शांति पर भी असर डालते हैं। लोकप्रिय होना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी, सच्चाई, अच्छे मूल्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक हो गया है, ये एक तरह की ऐसी बीमारी बन गई है कि कई बार लोग बड़ी दुखद खबर पोस्ट करते हैं,
1: जी
0: वहां लोग जाकर हंसी का इमोजी लगा देते हैं भूल से,
1: जी
0: हड़बड़ी में, और ये देखना भी नहीं चाहते कि वो पोस्ट क्या है। कई बार लोग बिना पढ़े बिना जाने लाइक कर देते हैं कि फलाने की पोस्ट है तो यहाँ पे लाइक कर देते हैं, पता चलता है कि उससे आपकी सहमति नहीं असहमति थी,
1: जी
0: और किसी जो वो बंदा मुसीबत में है तो आप भी मुसीबत में फंस गए क्योंकि आपने उसे लाइक किया था।
1: बिल्कुल
0: कई बार सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी होती है, कुचर्चा भी होती है, कई विवादास्पद बातें उस पर पोस्ट होती हैं, कई जैसे संगीत के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ ऐसी पोस्ट लिखी जाती है जहां आपकी सहमति है ही नहीं, लेकिन आप लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि ये बात तो आपको मुसीबत में डाल गई है,
1: मुसीबत में डाल देते हैं। और कई बार बड़े अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उन्हें क्या लगता है, इस तरह का हम लिख करके हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का जाएगा, हम पर ज्यादा आकर्षित होंगे लोग, और इस तरीके से हम कुछ अलग सा लिख दें, अलग सा लिखने में वो समझ ही नहीं पाते कि भाषा हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो बात किसी ने कही नहीं उसे अपने नाम पर पोस्ट करते हैं,
1: हाँ ये बात
0: कि
1: भी होती
0: है। फलाने ने हमें ऐसा कहा और इतना बुरा भला कहा, मेरी निंदा की, और हम तो हमेशा कटघरे में खड़े होते हैं, जबकि किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की है।
1: जी
0: तो ये भी एक तरीका है लाइक कमेंट पाने का, लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ सकारात्मक पहलू भी है, जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तो जैसे कुछ अगर हम पढ़ने लिखने की बात करें, साहित्य की बात करें, संगीत की बात करें, तो किताबें जो छपा करती थी, प्रकाशित होती थी, तो अखबार पत्रिकाएं उसका माध्यम थी जानने के लिए,
1: जी
0: और
1: जी
0: उसके माध्यम से लोग जानते थे और चर्चा होती थी उन किताबों की। लेकिन अब ये आसान हो गया है कि अगर मान लीजिए किसी की चर्चित किताब है और अच्छी उत्कृष्ट किताब है तो आप जल्दी से सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइक कमेंट्स के माध्यम से
1: जान लेते हैं
0: कि हाँ ये
1: जी
0: किताब चर्चित है, तो चलो हम भी खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। तो अगर कहीं पे बुराई है तो अच्छाई भी है, तो हमारे लिए तो ये बहुत जरूरी है कि हम अच्छी बातों को अपना करके उसमें आगे बढ़ें, और जो नकारात्मक पक्ष है उस तक ना पहुंचे, ना ही लोगों को उसके लिए, उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। एक और संदेश आया, वो हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे कि ये कहते हैं, वायरल होने का जुनून जो कि एक वायरस का ही प्रकार है, जैसे वायरल बीमारियां फैलती हैं, उसी तरह सोशल मीडिया रूपी शक्तिशाली ये जो वायरस है उसके कई लोग शिकार हो रहे हैं। अपनी खास पहचान बनाने के चक्कर में, उस चक्कर में जब बाहर नहीं निकल सकते, तब खुद की गरिमा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं लोग, इस तरह का इनका एक कहना है।
0: जी बिल्कुल। तो वायरल होने के कुछ नुकसान ज्यादा हैं और फायदे कम हैं, तो जो फायदे वाला हिस्सा है उसे ग्रहण कर लें, नुकसान वाला, जब वायरल होना आपका जुनून बन जाता है, पैशन बन जाता है, वो नुकसानदेह होता है, और क्योंकि वो जुनून एक बीमारी का रूप ले रही है, और ये हर वर्ग के लोगों में, ऐसा नहीं कि युवा वर्ग को हम कहते रहते हैं कि अगली पीढ़ी एडिक्शन की शिकार है, लेकिन हमने देखा है कि बड़े बुजुर्ग भी उसमें शामिल हैं। अभी जो हमारे घरों में दादी नानी और चाची जिन्हें बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता था, वो अपने बच्चों से अपने नाती पोतों से सीख कर बाकायदा अपनी रील पोस्ट करते हैं
1: जी,
0: और कुछ लोग
1: और
0: अपना
1: कई
0: डांस
1: तो
0: का
1: लोकप्रिय भी हो रहे हैं
0: डांस का वीडियो ये दिखाते हैं कि हमें देखो हम इतनी उम्र में डांस करने में सक्षम है, और कोई गाना गा के पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी कविताएं पढ़ रहा है, कोई कहानी का टुकड़ा कहानी का हिस्सा पढ़ के पोस्ट कर रहा है, मतलब कोई नहीं तो रेसिपी बता रहा है
1: जी,
0: और किचन के टिप्स बता रहा है, योगा के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में,
1: बहुत सारे विषयों
0: मतलब
1: पर वो
0: मुझे
1: लोग
0: तो लगता है कि दुनिया का कोई हिस्सा बाकी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बाकी, कोई ऐसा विषय नहीं है जो वायरल नहीं है सोशल मीडिया
1: सोशल
0: पर।
1: मीडिया पर नहीं आया है। और जिसको जिसमें हुनर हासिल है ना, वो उसी कला को चाहता है कि अब दुनिया तक पहुंचा, और उनके लिए सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया का
0: और
1: इस्तेमाल
0: इसमें
1: करना।
0: नुकसान क्या है कि कई बार जो नुस्खे बताए जाते हैं कि सुबह सुबह उठ के ये बीज खा लो, ये पानी पी लो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर कई लोग ये बताते हैं कि फला एक्सरसाइज उंगली पांचों उंगलियों को उस पर प्रेशर डालो तो आपके सिर दर्द ठीक हो जाता है, ये करो तो पेट दर्द ठीक हो जाता है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि कई बार इस गफलत में आपकी बीमारी बहुत बड़ी बड़ा रूप ले लेती है। तो अब हमारी बातें कहीं बहुत बड़ी बहुत दूर तक न जाएं, इससे पहले हम यहाँ पर विराम देते हैं अपनी बात को और सुनाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को ये गाना, बारिश वाला गाना, जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है उनके लिए सुकून देगा ये गाना, इसलिए भी ये गाना।

0: पैसा भी नहीं
1: कम किया
0: कम
1: जाता
0: किया
1: है
0: जाता है
1: जी।
0: कि 99 रुपए है तो वो 1 रुपए भी आपको अदा करना पड़ता है।
1: जी
0: लेकिन वहां भी लोग मोल भाव करते हैं, अरे 1 रुपए भी नहीं कम हो सकता है क्या, अरे 20 रुपए तो कम कर दो। तो ये कुछ लोगों की आदत सी बन जाती है, जहां
1: जी
0: पर
1: जी
0: ये

0: दुपट्टे का फैशन था, बहुत सारा तरह
1: जी
0: तरह के
1: जी जी
0: डिजाइनदार दुपट्टे हुआ करते थे। तो मैंने भी कई बार लड़कियों को देखा है कि दुपट्टे खरीद रही हैं और दुकानदार से कह रही हैं कि ठीक है इतने में दो, नहीं तो जा रहे हैं, और जा रही पूरी की पूरी झुंड में है लड़कियां और मुड़ मुड़ के देख रही हैं। फिर वो बुला रहा है, आइए भाभी जी आइए ले लीजिए लड़कियां औरतें, फिर वापस लौट के आ रही, फिर 10 रुपए दे दिया एक्स्ट्रा। तो
1: बिल्कुल
0: ऐसे
1: ऐसे शहर, कई शहरों में

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने और ये है इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में ऐसे कलाकार पधारे हैं जो आपके घर में भी आपसे मिल चुके हैं, आप सिनेमा हॉल में जाएं तो वहां भी आपसे मिल चुके हैं, और आपने अपने लैपटॉप के पर्दे पर या टीवी के पर्दे पर जब कभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप गए होंगे तो वहां भी आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी। जी हाँ, एक ऐसा अभिनेता जो सेल्यूलॉइड का कोई भी जरिया हो, कोई भी मीडियम हो, वहां अपना नाम रखते हैं और अपनी जगह उन्होंने बनाई है। आइए स्वागत करते हैं विपुल देशपांडे का। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार सभी श्रोताओं को भी।
1: विपुल जी, कहाँ से शुरू करें? शुरू से बात करते हैं, कैसे शुरुआत हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पैदाइश कहाँ की है और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: वैसे मेरे पेरेंट्स मुंबई में ही रहते थे, तो मेरी पैदाइश आप कह सकते हैं कि मुंबई में ही हुई।
1: अच्छा।
2: लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई के बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई से नागपुर।
1: अच्छा।
2: तो नागपुर ये मेरा वैसे विदर्भ में हम लोग का घर है
1: जी।
2: वहीं पे सब रिलेटिव्स हैं और एंसेस्ट्रल अगर बोला जाए तो अमरावती के पास अकोलखेड़ नाम की एक जगह है जहां से हम बिलोंग करते हैं।
1: जी जी।
2: बट अभी हाल ही में सभी लोग जॉब के सिलसिले में सब बाहर आए और पिताजी बैंक में थे और मेरी माँ जो है वो लेक्चरर थी, तो उन लोगों ने फिर नागपुर में अपना जो है परमानेंट एड्रेस बनाया और मेरा स्कूलिंग नागपुर में ही हुआ।
1: अच्छा।
2: मैं पिताजी का पहले से हॉबी था कि वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग ये सभी जरिए में अपना एक पैशन कायम रखा
1: जी।
2: और मुंबई में ये सब करने के लिए बैंक में जॉब करते हुए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने नागपुर चुना।
1: अच्छा।
2: हालांकि एग्जैक्टली उल्टा मैंने किया कि मुझे मुंबई चुनना पड़ा वापस तो मैं वहां से वापस आया, बट वहां से आते आते बहुत समय लग गया। तो हालांकि मैं चाहता जरूर था कि मैं पढ़ाई करूं एनएसडी में या फिर ड्रामेटिक्स पढ़ूं या एफटीआई में जाऊं, बट एक्सपोजर कम होता है मुंबई के मुकाबले इस क्षेत्र के लिए स्पेशली। इसे हम लोग करियर नहीं मानते, मतलब एक्टिंग ये हॉबी करके देखी जाती है। मैं जिस शहर से आता हूं वहां पे, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा क्रांतिकारी रवैया अपनाया था कि नहीं मुझे ये करना है। लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा है, पहले पढ़ाई भी कर लो ताकि बड़ी अनसर्टन फील्ड है, आप नॉलेजेबल रहोगे तो आप कुछ कर पाओगे बाद में अगर ऐसा कुछ समय आया तो। बहुत अच्छी बात थी कि आना ही एक रास्ता था, तो मैं एक बार आके गया।
1: अच्छा।
2: मैं 2000 में मुंबई आया था, तो आज से 26 साल पहले की बात है
1: जी।
2: तब मैं 20 साल का था, लेकिन तब कुछ मुझे समझ नहीं आया क्योंकि कोई चीज का एक्सपोजर नहीं था, कुछ चीज के बारे में मालूमात नहीं थी, तो मुझे एक महीने बाद वापस जाना पड़ा। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे बिना किसी नॉलेज के कुछ करना पॉसिबल नहीं है। देन आई वेंट बैक, आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, आई कंप्लीटेड माय एमबीए।
1: अच्छा।
2: उसी के साथ कैंपस प्लेसमेंट हुआ, मैंने गोवा में एक साल जॉब किया, फिर मैं कैसे तो भी करके मतलब मिन्नतें करके मैंने कंपनी से बात की मुझे मुंबई जाना है, मालूम था कि मुंबई में ही करना पड़ेगा जो करना है, तो वो हुआ नहीं, वीडियोकॉन से तो ट्रांसफर नहीं मिली, सो आई टुक अ स्विच। मैं यहाँ पे हाइपरसिटी में जॉब करने आया।
1: अच्छा।
2: सो दो ढाई साल लग गए, उसके बाद में फिर कहीं जाके एक जगह मैंने ऑडिशन
1: दिया। पहली बार आए तो एक नौकरी के लिए आए?
2: नौकरी के लिए।
1: अच्छा।
2: मुंबई में मैंने 2007 से लेकर 2009 तक नौकरी की।

0: लिमिटेड वहां पे स्कोप था,
1: जी
0: क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे या तो यहां पे आके वापस जा चुके थे कि उनका यहां पे शायद ना हो पाया हो, या फिर वहां से आए ही नहीं है और वहीं पे एक अपनी दुनिया बसा ली है,
1: हाँ
0: एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करने की बात जहां पे होती है।
1: हाँ
0: तो नाटक नो डाउट बहुत अच्छे
1: एक
0: थे।
1: उम्र होती है जब हमें एहसास होता है कि भाई हाँ, हम अभिनय की दुनिया

0: मन में कुलबुलाती रहती है।
1: बहुत ज्यादा।
0: ये कितने
1: मैं
0: तने दिनों तक चला?
1: ये सर बहुत चला, ये बेसिकली अगर बात करें तो 2006 में मेरा एमबीए जब मेरा पास आउट हो गया,
0: जी
1: मैं
0: जी
1: पहली बार जॉब करने गया तो मैंने मेरे बॉस को कहा कि मुझे सर मुंबई में आप प्लेसमेंट दे दो। तो
0: अच्छा
1: मैं चाहता था कि जॉब करते हुए मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे,
0: हाँ
1: लेकिन उस दौरान मुंबई में था नहीं, तो वो मेरा 1.5 साल जो है औरंगाबाद 6 महीने और फिर 9 से 10 महीने गोवा में, ऐसा मेरा बीता। और रोज रात को इसलिए क्योंकि दिन भर काम आपका समय कट जाता है, फिर जो आपको समय मिलता है शाम को 7-8 बजे, देन यू फील कि मैंने आज जो दिन भर किया क्या वो मुझे जो पसंद था वो किया,
0: अच्छा
1: या फिर बस करना है इसलिए किया, सरवाइव करने के लिए किया। तो वही एक बड़ी मशक्कत और बड़ा ही एक द्वंद होता था
0: जी
1: कि यार ये नहीं करना चाहता हूं, ये खुशी नहीं मिल रही है,
0: जी
1: लेकिन करना पड़ रहा है।

0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, और ये जिंदगी जो अभिनय यात्रा के रूप में आपकी मुंबई में शुरू हुई, तो वो कैसी शुरुआत थी?
1: सर, मैं जब नागपुर में था 2 साल के
0: हाँ
1: लिए,
0: हाँ
1: मैंने जॉब छोड़ के, मैं नागपुर में 2 साल के लिए मैंने एक पॉज लिया था कि एक नौकरी की आदत होती है, 1 तारीख को सैलरी आती है,
0: हाँ
1: वो तो वो तोड़नी थी मुझे आदत,
0: हाँ
1: क्योंकि यहाँ पे आके कोई गारंटी नहीं थी कि रोज काम मिले। तो मैंने वहाँ पे एक बिजनेस हमारा था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो मेरी माँ के अंडर बड़ा हुआ था पूरे अच्छे
0: जी
1: से।
0: जी
1: तो क्योंकि मम्मी लेक्चरर थी, और रिटायरमेंट के बाद में शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ दिस। तो फिर वो हमने थोड़ा सा एक्सपांड किया, 25 सेंटर्स हमने उसके बनाए नागपुर में, और फिर मैं यहाँ पे आने की मेरी जो एक बात हुई, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। मैंने सोचा कि जाते काम कैसे मिलेगा,
0: अच्छा
1: तो आई नेवर हैड अ मुस्टैश इन माई लाइफ। यहाँ पे मैंने देखा कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फाइल्स, ऐसे कुछ क्राइम शोज आ रहे थे उस दौरान, जो कि बहुत हिट होते थे, और हमेशा नए एक्टर्स उसमें दिखाई पड़ते थे, और रिपीट भी होते थे कुछ।
0: जी
1: तो मैंने सोचा कि यार ये एक सही है, इन लोगों को नए नए बंदे लगते होंगे, तो यहाँ पे जाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मेरी हाइट है 6 फिट 2 इंच, भगवान ने दी हुई, तो उसका फायदा कॉप के रोल में किया जा सकता है, तो एटलीस्ट कॉप रिपीट भी ज्यादा होते हैं।
0: हाँ
1: सेम थिंग हैपेंड, बट इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 months टू
0: अच्छा
1: लैंड इन अ पर्टिकुलर रोल। वो रोल ऐसे आसानी से नहीं मिल पाया, उसके लिए लाइन में लग के इंट्रोडक्शन देना पड़ा बहुत बार,
0: जी
1: कभी
0: जी
1: लाइन में लगने के बाद नंबर भी नहीं आता था,
0: हाँ
1: तो वो सब करते करते। बट मैंने मूंछ बढ़ाई, और मैं
0: अच्छा
1: थोड़ा फिजिक उस हिसाब से किया कि मैं एक ऑथोरिटेटिव कैरेक्टर में जा सकूं,
0: जी जी
1: और वही हुआ कि फिर उसके बाद क्राइम पेट्रोल, साउथर्न इंडिया, इसमें मैं रेगुलर तौर पे पुलिस ऑफिसर के दौर में दिखने लगा।
0: अच्छा
1: तो एटलीस्ट मुझे पहले से कोई सीखने वाला, मैं ना कहीं जा पाया सीखने के लिए और कुछ कर पाया, बट कैमरा मुझे सीखने को वहां से मिला।
0: अच्छा
1: मैंने बहुत करीब से इन सब चीजों को ऑब्जर्व किया,
0: जी
1: और बहुत अच्छे एपिसोड्स हुआ करते थे क्राइम पेट्रोल के पहले। सुब्बू सर उनको ऑप्टिमिस्टिक के थ्रू डायरेक्ट करते थे या देखते थे,
0: जी
1: तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो वो मुझे समझने काफी मिला। आजकल सटल एक्टिंग ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं,
0: जी जी
1: जिसको एक नैसर्गिक तरीके से हम लोग, जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं,
0: सहज और स्वाभाविक
1: सहज और स्वाभाविक
0: अभिनय जिसे
1: अभिनय
0: कहा
1: जिसको
0: जाता है।
1: कहते हैं,
0: जी जी
1: तो वो मुझे वहां से ज्यादा अच्छे से सीखने को मिला। ऐसा लगता नहीं था कि अभिनय किया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभिनय ना करो, आपको करना पड़ता है कि वैसे लगे ना कि वो अभिनय हो रहा है, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट
0: जी
1: थिंग। तो
0: जी
1: ये मुझे वहां से सीखने को मिला, और ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, वो कंटिन्यू रही। तो दैट वॉज माई स्टार्ट इन द मुंबई।
0: क्या बात है। और उन शुरुआती दिनों में आप मराठी में भी कुछ देख रहे थे कि कुछ करने को मिले ऐसा?
1: मैं सभी चीजों के लिए ओपन था, चाहे वो हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो। इंग्लिश तो खैर अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, मराठी मेरी मदर टंग है,
0: जी।
1: मी मराठी है। बट यही था कि जब आया तो मुझे सामने यही चीजें मिली हिंदी लैंग्वेज की, तो मैं हिंदी में फिर काम करता रहा। मराठी में मैंने एक दो बार ट्राई किया, जहां जहां मुझे लगा, जैसे मैंने आने के बाद में वो 4 इडियट्स जो फिल्म की थी उसके बेसिस पे, जस्ट गम्मत नाम की एक फिल्म की, लेकिन एक बड़ा ही छोटा सा किरदार मैंने निभाया, जो कि शायद ही किसी को ध्यान में रहा हो,
0: जी
1: और बाकी जगह शायद ये लॉबी, लॉबी तो हर जगह है, ऐसा नहीं कि कोई गलत बात है, लॉबी मतलब एक ग्रुप जो साथ में मिलकर काम करता है,
0: हाँ
1: अब वो एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए वो साथ में काम करता है।
0: जी
1: तो ये थोड़ी स्ट्रांग लगी मुझे रीजनल के दायरे में, तो
0: जी
1: वहां पे मेरी एंट्री ज्यादा नहीं हो पाई। आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मराठी अभिनेता हूं, मैं मराठी कर सकता हूं,
0: जी
1: बट आई वुड लव टू एक्सपांड माई थिंग। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कुछ अच्छे किरदार मिले
0: जी
1: जो मराठी में भी नहीं हो पाऊं, बट
0: हाँ
1: हिंदी में हमेशा मुझे साथ सबका मिला।

0: और हिंदी में मैं अब तक काम करते आ रहा हूँ रेगुलर, सो
1: अच्छा
0: दैट इज थिंग।
1: चलिए, यहाँ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का, कौन सा गाना होगा?
0: एक मैं कंपेनियनशिप, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर पे बहुत बिलीव करता हूँ।
1: जी
0: वो कितना पॉसिबल होता है सबकी लाइफ में, ये अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए, ये एक मेरा बहुत फेवरेट
1: ओहो,
0: गाना है।
1: बहुत खूबसूरत गीत है, आइए सुनते हैं।
0: जब

0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। ये मुश्किल पड़ने वाली बात संघर्ष के दिनों में तो कदम कदम पे जो है इसका सामना होता
1: जी
0: है ना।
1: जी जी
0: कैसे मुश्किलों का सामना होता था उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ आप काम तो कर रहे थे, मगर एक ही तरह की वो टेलीविजन सीरीज थी जिसमें पुलिस की ही भूमिकाएं ज्यादा होती थी,
1: हाँ
0: और उसमें टाइपकास्ट होने का बड़ा डर था।
1: जी,
0: कैसा था वो संघर्ष?
1: ये फील्ड ही ऐसी।
0: किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे तब कि कोई फिल्म मिल जाए कुछ। हाँ, तो
1: हाँ
0: वो वही वाकया जो है कि पहली
1: जी,
0: फिल्म कैसे मिली?
1: ये बेसिकली संघर्ष जो है, जैसे मैंने कहा था कि अब बोलने वाला जा रहा था कि बच्चन साहब के जमाने में सुना हुआ था कि संघर्ष तो जिंदगी भर रहेगा, अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो डाय, कोई संघर्ष नहीं रहेगा। तो
0: बराबर
1: जब तक हम इस जिंदगी में हैं, इस दुनिया में, तब तक संघर्ष रहेगा। उसको हम
0: जी।
1: कितनी खूबसूरती से अपने मार्ग को क्रमण करते हैं उस पर
0: हाँ,
1: डिपेंड है।
0: यस,
1: तो संघर्ष हमेशा रहा और शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि 3 3 महीने मेरे पास काम नहीं था।
0: हो
1: तो एक एक्टर के लिए जब 3 महीने काम नहीं है तो आप 3 महीने कुछ नहीं कमा रहे हो, वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी। लेकिन ऊपर वाले की दया है कि बीच बीच में फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम आता गया और सस्टेन करता रहा, हैंड टू माउथ
0: अच्छा,
1: वो चीजें चलती रही। और टाइपकास्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिर उस दौरान लोगों को ऐसा होता है कि वो आपके डेटाबेस में ही फीड करके रखते हैं कि इंस्पेक्टर में ये 10 लोग हैं, पहला फोन जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर के लिए आएगा, अगर
0: हाँ
1: डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ये 20 लोग हैं।
0: जी,
1: तो ये चलता रहा काफी दिन, फिर हमें नहीं बोलना पड़ा। बहुत बार मुझे नहीं बोलना पड़ा कि मैं नहीं करूंगा, और वो बहुत बड़ी बात होती थी कि आपको मालूम है आपको काम मिल रहा है, उसी से आपका घर चलने वाला है,
0: लेकिन मना करना
1: लेकिन
0: पड़ता
1: मना
0: था।
1: करना पड़ रहा है क्योंकि यार उसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे हैं। एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं
0: जी
1: वेरिएशन ना दे पाऊं
0: जी जी
1: तो कुछ खास मजा नहीं आता है जिंदगी में। तो वो नहीं करते करते कभी हाँ कभी नहीं, जब जरूरत है उस हिसाब
0: हाँ
1: से हमने काम किया। फिर कहीं ना कहीं लैंड हुए, हमने ये भी सोचा था कि कोई फिल्म जो है वो एटलीस्ट अच्छे इसमें मिल जाए,
0: जी,
1: तो इट हैपेंड। और ये जैसे मैं वर्क ग्रेनरी पे मतलब बिलीव करता हूँ,
0: अच्छा
1: वर्क ग्रेनरी मतलब जैसे धान्य का कोठार होता है,
0: जी, अनाज का
1: अनाज का
0: कोठार।
1: कोठार होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब जो जो 20 20 25 25 फीट के कोठार होते हैं, जो
0: जी
1: पहले किले पे भी हुआ करते थे,
0: हाँ,
1: जहां पे लोग आके उसमें धान्य डालते थे कि मेरे एक

0: होते हैं जो
1: जी
0: पहले किले पे भी हुआ करते थे,
1: हाँ
0: जहां पे लोग आके उस पर धान्य डालते थे। कि मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे
1: हाँ
0: बताया कि ये काम आप करते हो, आप उसमें डालो, वैसे ही एक धान्य का जैसा वर ग्रेनरी है, तो उसमें आप डालोगे, एक बार, दो बार, 10 बार, 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो अनाज है वो उसका लेवल तक भर जाएगा।
1: जी
0: फिर आप जो भी डालोगे, एक भी छोटा गड़वा आप उसमें डालोगे
1: जी
0: अनाज, तो वो बाहर आएगा। सो वर्क ग्रीनरी, आप पहले कितने काम करो शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो अनाज का जो कोठार है वो भर जाएगा, तो आप छोटा भी कुछ करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इट इज लाइक दैट। तो शायद वो मेरे और सभी केस में काम करता है। तो पहली फिल्म मुझे जो मिली वो ऐसे ही बहुत जगह ऑडिशन, इंट्रोडक्शन, ऑडिशन,
1: अच्छा
0: इंट्रोडक्शन दे दे के एक जगह से कॉल आया। और एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने, अर्जुन रेड्डी नाम, द डीन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर कबीर सिंह जहाँ काम करता है, और फिर वो फिल्म में मुझे एक किरदार मिला जो कि बहुत अच्छा किरदार था। सीन्स शायद कम थे लेकिन एक नोटिस करने लायक किरदार था,
1: जी जी
0: और वो फिल्म इतनी बड़ी हुई तो एक छोटे से छोटे किरदार को भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है।
1: बिल्कुल
0: तो दैट वॉज माई फर्स्ट फिल्म एंड हैपन इन माई लाइफ। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कबीर सिंह के नाम से मुझसे जानते
1: हाँ,
0: होंगे।
1: बड़े सेलिब्रेट पर्दे का ये जो पहला अनुभव था, इसमें सारे बड़े नाम,
0: बहुत
1: तो कहीं किसी तरह का प्रेशर महसूस किया आपने या इन सब के साथ काम करते हुए क्या अनुभव क्या था?
0: मैं मेरे आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ सर, तो मुझे बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होता जब मैं परफॉर्म कर रहा होता
1: क्या बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है,
0: हूँ।
1: और मतलब जो भी इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सही बात है कि समझे इस बात को कि आप अपनी कला से कितना प्रेम करना चाहिए।
0: बस

0: हाँ
1: अरे क्या हो गया?
0: अच्छा
1: सर वो बचपन से आपको देखते देखते बड़े हुए,
0: हाँ
1: तो अभी जब भी एक्टिंग करते हैं तो मेरा कोई ना कोई दोस्त या कोई डायरेक्टर ऐसा बोलता है कि यार खुद से थोड़ा बच्चन कम कर ले। लाफ द सेम वे द वे यू लाफ,
0: अच्छा।
1: बोला मुझसे होता नहीं
0: हाँ।
1: है।
0: यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि गाना चुनो तो आप बच्चन साहब की फिल्म का गाना चुनेंगे?
1: बिल्कुल, मुझे उनका एक बहुत खूबसूरत गाना आता है और जो मैं गाता भी हूँ बहुत सारे गेट टुगेदर्स में,
0: हाँ
1: शराबी फिल्म का दे दे प्यार दे,
0: ओहो
1: आई लव दैट सॉन्ग। इट स्टार्ट्स विथ हम बंदे हैं प्यार के, तो एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं
0: क्या
1: हमेशा
0: बात, चलिए सुनते हैं।

0: शराबी फिल्म का गीत हम सुन रहे थे, दे दे प्यार दे। और ये प्यार जो आपने मांगा इंडस्ट्री से, वो आपको मिलता गया, बढ़ता गया ये प्यार। और इस प्यार की अब इंतहा होना बाकी है, मगर इस प्यार के बढ़त में जो अगला स्टेप है वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा प्रोजेक्ट था?
1: इस दौरान काफी फिल्में हुई, एके वर्सेस एके नाम की अनिल कपूर और अनुराग कश्यप जी के साथ एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी
0: हाँ,
1: वो, मैंने एक फिल्म की, बहुत अच्छी फिल्म थी। अनिल जी और अनुराग जी के साथ काम करने का मौका मिला, दोनों इतने महान एक्टर्स भी
0: जी
1: हैं, तो बहुत सीखने को मिलता है इन सब लोगों के थ्रू। तो एके वर्सेस एके मेरी दूसरी फिल्म थी।
0: जी
1: फिर मैंने बागी 3 भी की, जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ में थी,
0: हाँ
1: रितेश देशमुख
0: हाँ
1: साहब थे वो थी। फिर उसके बाद में मेरी दो प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे, मडगांव एक्सप्रेस एक फिल्म आई थी अभी, कुणाल खेमू उन्होंने वो डायरेक्ट की थी, लिखी थी,
0: जी
1: सो लाइट कॉमेडी फिल्म, सो बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी। जैसे मैं हेरा फेरी, अंदाज अपना अपना, ये फिल्में कभी भी लगाओ कितनी भी बार देखो, वैसा ही मडगांव एक्सप्रेस भी आप कभी भी देखो, एक बड़ा ही लाइट कॉमेडी फैमिली के साथ देखने लायक वो
0: हाँ
1: एक फिल्म थी। और एक ताजा खबर नाम के वेब
0: वेब
1: सीरीज
0: सीरीज
1: जी, जो कि भुवन बाम अपने आप में एक बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार है आज के दुनिया में,
0: जी
1: तो उसके साथ की थी, वो दोनों सीजन मैंने उसमें किए, तो उसमें भी मेरा प्राइमरी कैरेक्टर रहा। नेगेटिव शेड है, ग्रे शेड है।

0: पहले सीजन में विलन थे जेडी चक्रवर्ती साहब,
1: जी
0: जो कि साउथ से सत्या मूवी आई थी, उन्होंने सत्या का करेक्टर
1: हाँ
0: खेला।
1: हाँ हाँ
0: और दूसरे में थे जावेद जाफरी साहब,
1: जी
0: तो ये दोनों के साथ मैंने वो कैरेक्टर किया था जो कि ग्रे शेड था, लेकिन काम करते हुए बहुत मजा आया। फिर बीच में गांधी गोड से एक युद्ध,
1: हाँ
0: जो राजकुमार संतोषी साहब की फिल्म थी, उसका किस्सा बड़ा खूबसूरत है। हुआ ये कि मैं रंजीत कपूर सर के साथ नाटक किया करता था।
1: अच्छा
0: रंजीत कपूर सर जो अन्नू कपूर साहब के बड़े भाई हैं, 9 साल बड़े,
1: हाँ हाँ
0: वो थिएटर की वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सनैलिटी होंगी आज इंडिया में।
1: जी जी
0: तो उनके साथ में नाटक करता था, चेखों की दुनिया, शेर अफगन भी हम करने वाले थे। तो सर को मैं बहुत मानता हूँ। लॉकडाउन खत्म होते ही मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाता हूँ, फैमिली मेरी नागपुर में ही थी,
1: हाँ
0: लेकिन मैं आ गया, एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम चालू हुआ था।
1: जी
0: मैं रंजीत सर को मिलने गया, रंजीत सर ने कहा कि विपुल कल आ जाओ। उस दौरान जो है वो सोसाइटीज लॉक हुआ करती थी, सबको एंट्री नहीं होती थी। बोले तुम्हारे पास गाड़ी है तो मुझे तुम छोड़ देना, मुझे जाना है जुहू,
1: अच्छा
0: तब हमारे रास्ते में बात भी हो जाएगी। मैंने बोला सर ठीक है। मैं गया सर को पिकअप किया मैंने, हम जाते जाते बातें कर रहे थे, जो कुछ बातें थी मैंने भी एक फिल्म लिखी थी मैंने सर को बताई,
1: अच्छा
0: बातें हुई। मुझे पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा जुहू चलो,
1: अच्छा
0: बच्चन साहब के घर के सामने से जाएंगे। तो मैं वहां ले गया गाड़ी। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरी मंजिल आ गई, मैं उतरता हूँ,
1: हाँ
0: मिलते हैं बाद में। मैं बोला ठीक है सर। तो उन्होंने उतरते वक्त पूछा तुम राज जी से मिले हो? मैंने बोला कौन राज जी सर?
1: हाँ
0: अरे राजकुमार संतोषी।
1: अच्छा
0: अरे मैंने बोला सर मैंने तो नाम ही सुना है, आप राज जी से मिले हो, कैसे मैं मिलूंगा? अच्छा तो आ जाओ चलो। फॉर मी इट वॉज लाइक गूस बम्प,
1: ओहो
0: इतने बड़े इंसान से आ जाओ चलो मिलने। मैंने तुरंत मैंने ठीक है आता हूँ, मैंने गाड़ी लगाई उनके साथ ऊपर गया।
1: हाँ
0: ऊपर गया तो राज जी नहीं थे, बाहर गए हुए थे कहीं।
1: अच्छा
0: उन्होंने कहा कि थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, और वो चले गए अंदर किसी वर्कशॉप टाइप डिस्कशन के लिए।
1: अच्छा
0: अब वो बहुत बड़ा सा फ्लैट टॉप फ्लोर पे मैं था, मैं वहां पे जाके, टेरेस ओपन था, वहां पे जाके बैठ गया। और एक इंसान बड़ा खूबसूरत ख्यालों में खो जाता है। मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ, मेरे लंबे बाल हुआ, लॉकडाउन में मैंने कंधे तक बाल बढ़ा लिए थे।
1: अच्छा
0: मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, राज जी की एंट्री होती है, राज जी बोलते हैं अरे यार ये कौन है, इसको ले लेते हैं। ऐसे मैं कुछ सोच रहा था। हालांकि राज जी आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने मुझे देखा नहीं, बाद में मुझे मिलाया गया उनसे।
1: हाँ
0: और एक कैरेक्टर उनके दिमाग में था जो उनके एसोसिएट ने आके मुझे बताया,
1: हाँ
0: कि डीएसपी राणा नाम के उस दौरान के अच्छा कैरेक्टर था।
1: जी
0: तो उनको बताया कि ये है विपुल देशपांडे, रंजीत सर ने बताया ये मेरा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, थैंक्स टू रंजीत सर फॉर दैट। और उन्होंने कहा कि आप इससे जो भी आपके पास काम हो आप कराइए, बहुत बढ़िया कलाकार है। तो उन्होंने कहा यार डीएसपी का कैरेक्टर है लेकिन इतने खूबसूरत बाल बढ़ा रखे हैं,
1: हाँ
0: काटने पड़ेंगे। मैंने बोला सर मैं काट लूंगा, बालों का टेंशन नहीं है, अब काम करना जरूरी है।
1: बराबर
0: देन ही गिव मी दैट कैरेक्टर एंड आई
1: अच्छा
0: वर्क विद हिम, इट वॉज अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विथ हिम ऑल्सो।
1: ओटीटी की वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए आपने काम किया, टेलीविजन के लिए सीरीज की है और बड़े पर्दे पर भी काम किया है। ये तीनों अलग अलग मीडियम है मगर इसके शूटिंग की जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है।
0: जी
1: कुछ फर्क आपने एक एक्टर के रूप में महसूस किया है इसमें?
0: फिल्म और ओटीटी ऑलमोस्ट सेम है,
1: हाँ
0: क्योंकि

0: ही बड़ा काम जो मैंने किया है आज तक वो था वागले की दुनिया।
1: हाँ जी
0: मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जेडी सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जेडी मजेठिया सर, आतिश कपाड़िया सर, ये
1: जी
0: दोनों प्रोड्यूसर्स हैं। मुझे मौका मिला सुमित राघवन जैसे इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ भाई के करेक्टर में काम करने का। तो सुमित दा मेरे मेंटर जैसे हैं।
1: क्या बात
0: दो और हमारे आइकॉन थे भारती मौशी, भारती आचरेकर,
1: जी
0: और अंजन सर, अंजन श्रीवास्तव, जो कि सीनियर कपल थे
1: जी जी
0: वागले। ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट्स हैं,
1: बिल्कुल
0: इनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो ये तीनों के साथ काम करने में बड़ा मजा आया, मुझे बहुत सराहना भी मिली इन लोगों के साथ काम करते हुए, बहुत सीखने मिला। ये मेरा पहला डेली शो था,
1: अच्छा
0: तब तक मैं फिल्म और ओटीटी ही करना चाहता था, तो मैं उसी पे फोकस ज्यादा कर रहा था। बट ये कैरेक्टर बड़ा ही अपने आप में मुझे
1: ये मुझे
0: पसंद है।
1: लगता है 2022 की बात है।
0: जी, 2022 की बात है, आज से 4 साल पहले।
1: हाँ
0: तो ये मुझे फोन आया, जैसे मैंने कहा वर्क ग्रीनरी,
1: हाँ
0: उसी कॉन्सेप्ट में मुझे कॉल आया। ये होता है कि आप जैसे कोई न्यू कॉमर भी आता है, वो सोचता है यार मैं अभी ये ऑडिशन क्यों दूं, वो क्यों दूं। मुझे लगता है हर एक ऑडिशन जो आपके पास आता है वो कुछ ना कुछ मीनिंग लेके आता है, वो
1: हाँ
0: शायद कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल में जाएगा जहां से आपको बाद में फ्यूचर में काम मिलेगा,
1: अच्छा
0: क्योंकि सबको चाहिए अच्छे काम करने
1: बिल्कुल
0: वाले।
1: बिल्कुल
0: तो कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, दे नीड गुड पीपल। तो आपके पास जो भी मौका, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको छोड़ो मत। आपके पास में भले ही आपको लग रहा है कि ये इतना मजा नहीं आ रहा है, बट आप उसको शूट करके भेज दो।
1: जी
0: आजकल तो बहुत आसान हो गया है। पहले मैं जब आया था 2013 में, ये ऑनलाइन वीडियो बना के भेजने वाली बात नहीं थी।
1: बिल्कुल
0: आज ऐसा हो गया है कि आपको स्क्रिप्ट आती है, आपका मोबाइल में अच्छा कैमरा है, आप उसको स्टैंड पे लगाओ और खुद ही घर पे बैठ के शूट कर लो और
1: अपना
0: ऑडिशन भेज दो। सही लगा तो वो बुलाएंगे। ये पहले नहीं हुआ करता था। पहले एक भी ऑडिशन क्यों ना हो, जाना पड़ता था, जहां जहां बुलाया जा रहा
1: जी
0: है
1: जी
0: वहां पे लाइन में खड़ा होना
1: वो
0: पड़ता था।
1: दर दर भटकने वाली बात है ना।
0: बिल्कुल, हमने दर दर की ठोकरें खाई है। और बहुत जगह से बाहर से ही निकाला जाता था कि यहां कुछ काम नहीं है। कुछ जगह पूछा जाता था कि आपकी अपॉइंटमेंट है, तो नहीं सर पता करने आए, कुछ काम है क्या? नहीं नहीं कोई को, कोई काम नहीं है।
1: ओह
0: तो ये भी बहुत बार, बहुत साल हुआ है मेरे साथ। तो लेकिन उसका अपना एक मजा था, वो
1: हाँ
0: सफर है।
1: अच्छा
0: मंजिल पे पहुंचने का मजा तभी आता है जब सफर अच्छा हो।
1: हाँ
0: अगर सफर आप डायरेक्ट चले गए तो क्या मतलब।
1: बराबर
0: तो एक अलग मजा रहा है, अभी भी मैं एंजॉय करता हूँ। स्ट्रगल अभी भी खत्म नहीं हुआ,
1: हाँ
0: अभी भी ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वहां तक पहुंचने के लिए अभी समय होगा। बट जब भी मिलेगा ये सफर आनंददायी ही रहेगा।
1: क्या बात। कोई ऐसा गाना जो आपके इस संघर्ष के दिनों में बार बार आपके जहन में गूंजता हो।
0: देवानंद साहब का जो एक गाना मैंने उन पे फिल्माया, वो गाना देखा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला
1: हाय हाय हाय क्या
0: गया
1: बात है।
0: और फिक्र को धोए में उड़ाता
1: हम दोनों
0: चला।
1: फिल्म का गाना है,
0: हाँ जी,
1: बेहद लोकप्रिय गीत
0: बेहद
1: है।
0: लोकप्रिय
1: आइए सुनते हैं।
0: जी।

0: विपुल जी, जिंदगी का साथ निभाते निभाते आप वागले की दुनिया तक पहुंचे,
1: जी
0: हम उसकी बातें और थोड़ा विस्तार से करना चाहेंगे।
1: जी
0: अंजन जी जैसे वरिष्ठ और श्रेष्ठतम कलाकार के साथ काम करना, भारती जी आचरेकर और सुमित दादा के बारे में आप बता रहे थे,
1: तो
0: सुमित राघवन जी, कैसा इंटरेक्शन होता था ऑफ द कैमरा, कैसे सब माहौल होता था?
1: एक बहुत ही खूबसूरत बात सुमित दादा के साथ ये होता था कि
0: जी
1: मैं जब तक सेट पे जाऊं और हम लोग रिहर्सल करें
0: जी
1: तब तक मैं उसको बोलता था कि सुमित दा ये करते हैं, सुमित दा ये करेंगे, हाँ ये
0: हाँ
1: करेंगे। जैसे ही एक्शन होता है वो दादा मुझे बोलता
0: जी,
1: था क्योंकि
0: आपने
1: मैंने
0: बड़े भाई का रोल
1: मैंने
0: किया,
1: उनके बड़े भाई का रोल किया था।
0: मनोज नाम था
1: मनोज
0: उनका,
1: वागले मेरा,
0: सर।
1: मनोज वागले मेरा नाम था।
0: जी।
1: तो बड़ा एक अजीब सा वो लगता था, मुझे
0: हाँ
1: बड़ा मजा आता था उसमें सुनते हुए कि जब तक एक्शन नहीं हो रहा है तब तक मैं उनको दादा बोल रहा हूँ।
0: हाँ
1: सभी हम लोग सभी से
0: जी
1: सीनियर है। और फिर उसके बाद में जैसे ही एक्शन हो गया तो सुमित दादा

0: इट वॉज मतलब
1: हाँ
0: पहला शॉट सुमित्रा के साथ भी, अंजन जी के साथ भी। तो हालांकि सुमित्रा के साथ तो मेरा मॉक शूट भी हुआ था,
1: अच्छा
0: क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको प्रोडक्शन बुलाता है, चैनल बुलाता है, एक ऑडिशन होता है, उसके बाद में देखा जाता है कि इनके साथ में केमिस्ट्री होगी कि नहीं होगी।
1: हाँ
0: तो मुझे बुलाया था मेरे ऑडिशन के बाद में, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में प्रोडक्शन ने मॉक शूट के लिए।
1: अच्छा
0: तब सीन ये था कि माँ मतलब भारती मौसी एडमिट है,
1: अच्छा
0: और ये जो कैरेक्टर है मनोज बागले का, ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है
1: ओके
0: मेरा, जो कैरेक्टर मैंने जो प्ले किया था, और उतना ही कूल और उतना ही शांत सुलझा हुआ है राजेश वागले, जो कि सुमित दादा प्ले करते थे।
1: हाँ
0: तो इतना उसमें डिफरेंस दिखाना था कि माँ के हॉस्पिटल में वो उधर बजर बजा रही, कोई आ नहीं रहा है, और ये भड़का हुआ है, और फिर नर्स को बुलाता है, नर्स को झाड़ता है, और वो डर के चली जाती है। इस टाइप का एक वो सीन था। मैं सीन प्रिपेयर करके आया, सुविधा को भी मैं पहली बार मिला था। तो बड़ी प्लीजेंट पर्सनालिटी है। जितने बड़े आर्टिस्ट होते हैं उतने ही डाउन टू अर्थ होते हैं, उतने ही दिल के खूबसूरत होते हैं, मैंने देखा हुआ है। ये तभी तो एक अच्छी एक्टिंग कर सकते
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: बिल्कुल,
0: इंसान अगर दिल से अच्छा नहीं
1: ये
0: है तो हो
1: बहुत
0: जाएंगे।
1: बड़े कलाकार इसलिए क्योंकि ये बहुत अच्छे और बड़े इंसान हैं
0: जी,
1: और बहुत विनम्र होते हैं।
0: बहुत विनम्र होते हैं, इनको कभी भी आप देखेंगे नहीं कि अननेसेसरी शॉर्ट टेम्पर हो, किस पे चला रहे हैं, कुछ भी।
1: जी जी जी
0: तो ये बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो सुमित्रा के साथ वो भी मैंने जो एक मॉक शूट किया, एक्शन होने के पहले तक मैं बिल्कुल उस जोन में नहीं जाता,
1: जी
0: लेकिन एक्शन के बाद मैं चाहता हूं कि इंसान वही रहे जो कैरेक्टर है, वही मैं फील करूं अंदर से। और ये मुझे वहां सीखने को मिला। हमारे डायरेक्टर थे समीर कुलकर्णी सर, अमित कानेरे सर,
1: जी
0: दीपेश शाह, ये तीन डायरेक्टर्स थे वहां पे। इन तीनों ने भी जब तक सीन ओके नहीं होता तब तक वो आगे नहीं भेजते थे।
1: अच्छा
0: मेरे ख्याल से ऊपर से आया हुआ है, जेडी सर के थ्रू आया है कि यार ये चीज करनी है तो अच्छी करनी है, छापना नहीं है कि हाँ चलो हो गया आगे बढ़ो। हालांकि वहां पे जाके कोई रोक ही देगा आपको, या ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ये सीन नहीं है, आप भी रोजमर्रा के आर्टिस्ट, आप रोज कर रहे हो चीजें, तो हो
1: जी
0: जाती है। लेकिन जो मूड आया है वो हम करते थे। जैसे अंजन सर मुझे मोस्ट ऑफ टाइम, अगर मेरा और उनका सीन है, वो मुझे उनके रूम में बुला लेते थे
1: अच्छा
0: कि यार विपुल आ जाओ अपना सीन है, रूम में बैठ के रिहर्सल करते हैं। वो भी थिएटर आर्टिस्ट है, मैंने भी थिएटर किया है, मुझे बड़ा पसंद है। तो वो बुला देते हैं और मैं और अंजन सर फिर हम लोग रूम में ही, उनके वैनिटी में ही पहले रिहर्स करते थे क्या मूड रहेगा। सिर्फ लाइन्स ही नहीं होती है एक आर्टिस्ट के लिए, न्यूएंसेस जो छोटे छोटे उसमें की हरकतें होती है
1: जी
0: वो ज्यादा मैटर करती है,
1: बिल्कुल
0: पॉजेस मैटर करते हैं। टीवी जो है आपके छोटे से छोटे एक्सप्रेशन को पकड़ लेता है, आई मूवमेंट हो, चाहे आपने कहीं बीच में हल्का सा कान मूव किया है, या मराठी में आवंडा गेड़ा सुनते अपन
1: हाँ, एक घूंट लेने की जो
0: घूट,
1: एक
0: वो
1: प्रक्रिया
0: है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है कैमरा नोटिस करता है आपकी, तो ये चीज सीखने को मिलती थी। भारती मौसी के साथ इमोशनल सीन करने में बहुत कष्ट लगा, ऐसा
1: प्रयास करना पड़ता
0: प्रयास
1: था।
0: करना पड़ता था कि उस लेवल तक कैसे उसके आजू बाजू पहुंचा जाए।
1: हाँ
0: लेवल तक पहुंचने की बात ही नहीं करता, शी इज सो सीनियर। तो भारती मौसी के साथ जब इमोशनल सीन एक माँ बेटे वाला होता था, और बहुत ज्यादा उनके साथ ही रहे इनिशियली,
1: जी
0: बाद में फिर अंजन जी के साथ भी रहे, लेकिन पहले माँ के साथ वो बेटे का बॉन्डिंग दिखाना था, तो एक अलग जोन में चले जाता था फिर मैं उतना जरूर समझता कि ये चीज उस राइटर ने इतने प्यार से लिखी है,
1: हाँ
0: इतने इमोशन सोच के लिखी है, मैं करने वाला हूं एक बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट के साथ,
1: जी
0: तो वो उस लेवल पे जाना ही चाहिए, तो ही मजा आएगा। तो
1: हाँ
0: आई यूज टू हैव इट फॉर एन आवर टू आवर, मैं लिखता था खुद, मैं लिखता हूं जितने भी लाइंस आती है, वैसे तो स्क्रिप्ट मिलती है, बट आई यूज टू राइट इन माई वर्ड्स एंड देन रिपीट इट ऑन रेगुलर बेसिस। ये मैंने सीखा है शायद नाना
1: जी
0: पाटेकर
1: जी
0: साहब से भी सुना था, आमिर खान साहब से भी सुना था, कि वो खुद लिखते हैं एंड देन वो रिहर्स करते हैं 20 बार 25 बार।
1: जी जी
0: उसी से फायदा होता है, आपके पास जो भी है वो स्क्रिप्ट है,
1: जी
0: वो स्क्रिप्ट में ही चीजें मिलेंगी आपको जो डिलीवर करनी है।
1: जी
0: तो ये इन तीनों के साथ मैंने सीखा है और बहुत मजा आया। बाकी भी मेरे जितने भी को एक्ट्रेस थे, मेरी वाइफ थी विद्या वागले, सुकन्या ने वो किरदार किया था, फिर हमारे पड़ोसी थे अमित और दीपक, दीपक
1: जी
0: पारिक, और
1: जी
0: उनके साथ भी करने में बड़ा मजा आता था। एक अलग ही जोन में वागले जो है चलता रहा।
1: जी
0: वागले ने मुझे बहुत कुछ दिया,
1: जी
0: घर घर में पहचान मेरी मनोज वागले के नाम से।
1: हाँ, मैं भी उसी सवाल पे आने वाला हूं
0: जी
1: कि घर घर में आप पहुंचे, मगर ये वागले का शूटिंग करने के बाद जब आप अपने घर नागपुर पहुंचे तो कैसा रिएक्शन था?
0: मेरे बहुत सारे दोस्तों को पता तो था ही कि मैं ऑलमोस्ट 7-8 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं।
1: हाँ
0: कुछ लोगों ने मेरे काम देखे थे, क्राइम पेट्रोल साउथ इंडिया, लेकिन वो छोटे मोटे काम थे जो ज्यादा दिखते नहीं थे।
1: अच्छा
0: तो वागले करने के बाद जब घर घर में शील पहुंची, तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने भी बताना चालू किया ये हमारा दोस्त है, तो लोग यकीन नहीं करते थे
1: हाँ
0: कि ये तरबूज कहाँ से आएगा?
1: हाँ
0: जो नागपुर का तो नागपुर में होगा, या ऐसा थोड़ी होता है।
1: हाँ
0: बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते थे। एक बहुत ही मजाक किया सीन हुआ मेरे साथ।
1: अच्छा
0: मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, 2023 की बात है, हॉस्पिटल में हम लोग थे। एक बार मैं नीचे से, मैं और मेरी शायद माँ थी मेरे साथ,
1: हाँ
0: हम लोग नीचे से लिफ्ट में ऊपर के फ्लोर पे जा रहे थे। वहाँ पे एक इंसान आए, उन्होंने मुझे थोड़ी देर घूर के देखा, फिर अपने आप में कुछ सोचा
1: अच्छा
0: और थोड़ी देर में बोलते हैं, आप ही के जैसा एक आर्टिस्ट है,
1: अच्छा
0: दिखता बिल्कुल आपकी तरह। मैंने अच्छा,
1: अच्छा
0: मैं बोला किसमें? वो बहुत बड़ा एक शो है, वागले की दुनिया, उसमें मनोज वागले का कैरेक्टर करता है,
1: हाँ
0: बिल्कुल हूबहू आपकी तरह दिखता है। मैंने बोला अच्छा।
1: अच्छा जी जी
0: मैंने
1: जी
0: बोला सर काम अच्छा करता है क्या?
1: हाँ
0: अरे बहुत अच्छा, बहुत उमदा।
1: अच्छा
0: बोला चलो नाम तो नहीं खराब कर रहा है। आई
1: क्या
0: लाइक
1: बात
0: दैट, आई लाइक दैट थिंग। फिर किसी ने बताया, शायद कोई और भी थे लिफ्ट में,
1: हाँ
0: उनको बताया कि ये वही है। ब्रो ने बिलीव नहीं किया। कि आप क्या
1: जी जी जी
0: करोगे
1: ये बिल्कुल रोवेन एटकिंसन जैसा हो गया। वो कई बार अपने इंटरव्यूज में बता चुके हैं कि
0: जी?
1: कई लोग उनसे मिले हैं और वो उनसे पहली बार यही कहते हैं कि क्या आपको पता है आप मिस्टर बीन जैसे दिखते
0: मीन
1: हैं।
0: जैसे ट्रू ट्रू।
1: जी जी जी तो ऐसा ही वाक्य आपके साथ हुआ
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: क्या?
0: ऐसा ही हुआ।
1: हाँ
0: और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि उसने बोला कि यार काम अच्छा करता है।
1: हाँ
0: एक कलाकार के लिए सबसे जरूरी वही बात है,
1: और क्या चाहिए,
0: और क्या चाहिए।
1: क्या बात है।
0: तो ये घर घर में नाम उसी वजह से पहुंचा, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनको भी अच्छा लगा,
1: हाँ
0: दोस्त हैं उनको अच्छा लगा। और मैं जहां भी जाता था वो बड़े ही प्राउडली मुझे इंट्रोड्यूस भी कराते थे, बुलाते भी थे। तो ये एक प्यार है, अपनों का प्यार
1: क्या
0: है।
1: बात
0: मैंने
1: है।
0: एक फिल्म देखी थी, टॉपिक निकला नागपुर का इसलिए
1: हाँ
0: कि आर माधवन साहब की एक फिल्म थी, राम जी लंदन वाले, ये
1: अच्छा हाँ
0: बहुत खूबसूरत फिल्म है। उसमें ये कुक होते हैं इंडिया में, उन्हें US में लिख के जाया जाता है किसी फैमिली के थ्रू काम में।
1: अच्छा
0: अब वहां पे उनके साथ जो स्टोरी होती है वो तो अलग, लेकिन वहां के शेफ कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं
1: अच्छा
0: और वर्ल्ड शेफ टाइटल जीत लेते हैं।
1: ओहो
0: उन्हें वहां पर रेस्टोरेंट दिया जाता है खरीद के, उनको वहां पर सब दिया जाता है।
1: हाँ
0: पर वो बोलते हैं कि यार ये सब मुझे अब मत दो, मैं तो वापस जाऊंगा ना। तो बोलते हैं अरे सर आपको इतना बड़ा रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में, ये वो सब दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा
1: हाँ
0: है, गाड़ी रहेंगी आपके पास में। बोले क्या मतलब वो गाड़ी का, अगर मैं अपने दोस्तों को ना घुमा पाऊं, मैं
1: हाँ
0: अगर मेरे फैमिली के साथ चक्कर ना मार पाऊं, मैं उस सब सब चीजों को शेयर ना कर पाऊं अपने लोगों के साथ, तो
1: हाँ
0: मजा तो वही है।
1: बिल्कुल
0: तो मुझे वही अच्छा लगता है कि जाओ तो एक अपने लोग मिले, उन्हें अच्छा

अभिनेता विपुल देशपांडे से, जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग।

श्रोताओं, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों की मुश्किलों से घबराते नहीं। आप सभी ने एक कविता तो सुनी होगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, और उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो लोग जो मुश्किलों से घबराते नहीं हैं, और हर मुसीबत का, हर परेशानी का निडरता से सामना करते हैं, उन्हीं को मिलती है सफलता। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अपने भीतर होती है। अपने डर, अपनी शंकाओं और अपनी कमजोरियों से जीतना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। कहते हैं जीतने वाले अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। आंधियां चाहे जितनी भी तेज चले, दीप अपना उजाला नहीं छोड़ता। मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, हिम्मत वाला कभी रास्ता नहीं छोड़ता।

हिम्मत की लौ कभी बुझने मत देना, सपनों को आंखों से गिरने मत देना, राह कठिन हो तो मुस्कुराकर चलना, अपने विश्वास को कभी मरने मत देना। श्रोताओं, बहादुरी का अर्थ ये नहीं कि हमें कभी डर नहीं लगता, बहादुरी का अर्थ है कि डर के बावजूद सही कदम उठाना। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने जीवन में बहादुरी के साथ और अच्छे सोच विचार के साथ सदैव सही कदम उठाएंगे। और आज की शाम से विदा लेने से पहले बस इतना कहूंगा, हौसला अगर बुलंद हो तो हर मंजिल आसान लगने लगती है। इसी के साथ मैं रोहित कुमार कुकरेती आपसे अनुमति लेता हूं आपके इस कार्यक्रम आज शाम से। मुस्कुराते रहिए, हिम्मत बनाए रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी रामपुर से हमारे कार्यक्रम। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 5:15 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। स्वागत है आपका अपने प्रोग्राम युववाणी में। आज मैं हूं आपकी रेडियो पार्टनर मेघा सक्सेना
1: और साथ हूं आपके रेडियो साथी नतांश अग्रवाल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे आज के सवाल का। और आज का हमारा सवाल है, भारत का कौन सा किला विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, सवाल एक बार फिर सुन लीजिए।
0: भारत का कौन सा किला विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार के लिए विश्व प्रसिद्ध है?
1: इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको सर्च करना होगा आकाशवाणी रामपुर का फेसबुक पेज और आज की अपडेटेड पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिख भेजने होंगे अपने अपने जवाब। सही जवाब देने वाले सभी साथियों के नाम अनाउंस करेंगे प्रोग्राम के एंड में।
0: नतांश, क्या तुम्हें पता है क्रिकेट का वो सितारा जिसने अपने शांत स्वभाव, बेहतरीन नेतृत्व और असाधारण फैसलों से करोड़ों दिलों में जगह बनाई?
1: हाँ मेघा, वो है महेंद्र सिंह धोनी, जिनका जन्म 7 जुलाई सन 1981 को रांची, जो उस समय बिहार और अब झारखंड की राजधानी है, में हुआ था। उनके पिता पान सिंह और माता देवकी देवी हैं। बचपन में महेंद्र सिंह धोनी की रुचि क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल में थी और वे स्कूल की टीम में गोलकीपर भी थे।
0: बिल्कुल, दिलचस्प बात यह है कि उनके स्कूल के खेल शिक्षक ने उनकी गोलकीपिंग देखकर उन्हें क्रिकेट में विकेट कीपिंग करने की सलाह दी। यही एक छोटा सा सुझाव उनके जीवन की दिशा बदल गया। धीरे धीरे उन्होंने क्रिकेट को अपना जुनून बना लिया।
1: लेकिन आपको बता दें, यह सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। सीमित संसाधन, छोटे शहर की चुनौतियाँ और राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचने का सपना, इन सब के बीच धोनी ने कभी हार नहीं मानी। सन 2001 से 2003 तक उन्होंने भारतीय रेलवे में टिकट कलेक्टर यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर TTE के रूप में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर नौकरी भी की।
0: अब जरा सोचिए, दिन में नौकरी और बाकी समय क्रिकेट का अभ्यास। यह बताता है कि अगर सपना बड़ा हो तो मेहनत का रास्ता भी बड़ा ही होता है। नौकरी के साथ लगातार अभ्यास ने ही उन्हें उस मुकाम तक पहुँचाया जहाँ आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है।
1: साल 2004 में उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम में खेलने का मौका मिला। शुरुआत भले ही शानदार नहीं रही, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपने विस्फोटक बल्लेबाजी और शानदार विकेट कीपिंग से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया।
0: इसके बाद साल 2007 में उन्हें भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई। बहुत से लोगों का यह फैसला चौंकाने वाला लगा, लेकिन धोनी ने अपनी शान, सोच और रणनीति से साबित कर दिया कि नेतृत्व अनुभव से नहीं, सोच और आत्मविश्वास से आता है।
1: और आपको बता दें, MS धोनी दुनिया के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने भारत को साल 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप और सन 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। ये उपलब्धि आज भी उनके नाम दर्ज है।
0: और 2011 विश्व कप का वह ऐतिहासिक विजयी छक्का, शायद ही कोई भारतीय क्रिकेट प्रेमी उसे भूल पाया। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जीत के बाद भी धोनी हमेशा विनम्र रहे। उन्होंने कभी व्यक्तिगत उपलब्धियों को टीम से बड़ा नहीं माना।
1: धोनी की सबसे बड़ी पहचान है कैप्टन कूल। चाहे मैच कितना भी रोमांचक क्यों ना हो, उनके चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि आत्मविश्वास दिखाई देता था। यही गुण उन्हें एक महान कप्तान बनाता है।
0: वे हमेशा युवा खिलाड़ियों पर भरोसा करते थे। विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा जैसे कई खिलाड़ियों को उन्होंने आगे बढ़ने का अवसर दिया। एक अच्छा लीडर वही होता है जो खुद के साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाए।
1: धोनी का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन, धैर्य और निरंतर सीखने की इच्छा भी होती है।
0: अगर हमें महेंद्र सिंह धोनी से 3 बातें सीखनी हो तो वे हैं धैर्य, अनुशासन और टीम भावना। जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आए, शांत रहकर सही निर्णय लेना ही असली नेतृत्व है।
1: आज 7 जुलाई को उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संकल्प भी लेते हैं।
0: साथियों, अब समय एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के उस पार है बहुत कुछ खास।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम युववाणी में। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट सेगमेंट कुछ खास है आज की और जानते हैं क्या है आज खास।
2: कुछ ख्वाबों की बात,
3: कुछ अपनों का साथ,
2: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
3: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
2: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
3: वाकई कुछ खास है आज,
2: कुछ खास है आज।
4: दोस्तों कुछ खास है आज सेगमेंट में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के उस अनमोल सितारे से जिन्होंने कम लिखा लेकिन ऐसा लिखा कि उनकी रचनाएं हमेशा के लिए अमर हो गईं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की।
5: दोस्तों आपको बता दें, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म आज ही के दिन यानी 7 जुलाई को 1883 को जयपुर में हुआ था। उनके पूर्वज मूल रूप से हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गुलेर गाँव के निवासी थे और इसी कारण उनके नाम के साथ गुलेरी जुड़ गया। बचपन से ही उन्हें संस्कृत, वेद, पुराण और भारतीय संस्कृति का गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ और चलकर उन्होंने हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत सहित कई भाषाओं में अद्भुत विद्वता हासिल।
4: साथियों, गुलेरी जी केवल लेखक ही नहीं थे बल्कि एक उत्कृष्ट शिक्षक, इतिहासकार, भाषाविद और शोधकर्ता भी थे। उन्होंने शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया तथा बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी महत्वपूर्ण दायित्व निभाए।
5: उनकी रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध है उसने कहा था, ये कहानी हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती है। प्रेम, वचन, त्याग और कर्तव्य की भावना से भरपूर कहानी आज भी हर पाठक के दिल को छू लेती है। इसकी संवेदनशीलता और सशक्त कथा ने इस कहानी को हिंदी साहित्य का मील का पत्थर बना दिया है।
4: गुलेरी जी का लेखन सरल, प्रभावशाली और भावनाओं से भरपूर था। वे कम शब्दों में गहरी बात कहने की अद्भुत कला जानते थे। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, मानवीय संवेदनाएं और जीवन के यथार्थ सुंदर समन्वय दिखाई देता है।
5: सिर्फ 39 वर्ष की अल्पायु में 12 सितंबर सन 1922 को उनका निधन हो गया, लेकिन इतने कम समय में भी उन्होंने हिंदी साहित्य को ऐसी अमूल्य धरोहर दी जो आज भी नई पीढ़ी को प्रेरित करती है।
4: तो दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हमें यह सिखाते हैं कि महानता शब्दों की संख्या में नहीं बल्कि उनके प्रभाव में होती है। यदि आपकी लेखनी में सच्चाई, संवेदना और विचारों की गहराई है तो आपकी रचना समय की सीमाओं को पार कर अमर बन सकती है।
5: दोस्तों सेगमेंट कुछ खास है आज में, आज हम बात करेंगे उस वीर सपूत की जिसकी बहादुरी की गूंज आज भी हर भारतीय के दिल में सुनाई देती है। वो नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें पूरा देश प्यार से शेरशाह के नाम से जानता है।
4: साथियों, कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। बचपन से ही उनमें देशभक्ति और नेतृत्व की अद्भुत भावना थी। उन्होंने भारतीय सेना में शामिल होकर अपने सपनों को देश सेवा का रूप दिया।
5: अब जरा सोचिए, साल था 1999 का और कारगिल की बर्फीली चोटियों पर दुश्मन ने कब्जा जमा लिया था। ऐसे कठिन समय में युवा अधिकारी विक्रम बत्रा ने अपनी टुकड़ी के साथ मोर्चा संभाला। उन्होंने दुश्मन से भीषण लड़ाई लड़ी और कई महत्वपूर्ण चोटियों को वापस हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभाई।
4: दोस्तों, जब उन्होंने एक महत्वपूर्ण चोटी पर विजय प्राप्त की तो रेडियो संदेश पर उनके शब्द थे, ये दिल मांगे मोर, और बस यही वाक्य पूरे देश में जोश और गर्व का प्रतीक बन गया।
5: लेकिन असली वीरता तब दिखी जब अपने साथियों को बचाने के लिए वे गोलियों की बौछार के बीच आगे बढ़ गए। देश की रक्षा करते हुए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया और उनकी अदम्य वीरता भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र, जो कि देश का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, वो प्रदान किया।
4: तो दोस्तों याद रखिए, कैप्टन विक्रम बत्रा सिर्फ एक सैनिक नहीं थे, वे साहस, कर्तव्य और देश प्रेम की जीवित मिसाल थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चे हीरो वही होता है जो अपने से पहले देश को रखता है।
5: और जब भी तिरंगा हवा में लहराता है उसमें कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे वीरों की कुर्बानी की चमक भी शामिल होती है। आइए उनके साहस को सलाम करें और अपने दिल में हमेशा ये भावना रखें, देश सबसे पहले।

0: हेलो,
1: टीवी देखा क्या?
0: तू तो बड़ा हीरो निकला बत्रा, मान गई
1: प्रमोशन हो गया। कैप्टन बन गया हूं।

0: कुछ ख्वाबों की बात,
1: कुछ अपनों का साथ,
0: नरम धागे से बंधे कुछ पन्ने
1: और उन पर नीली स्याही से लिखे हुए कुछ नगमे
0: कह रहे हैं बहुत कुछ आज।
1: वाकई कुछ खास है आज,
0: कुछ खास है आज।
2: साथियों बढ़ते हमारे नेक्स्ट सेगमेंट भारत के गलियारे की सब सेगमेंट इमारतें बोलती हैं की ओर।
3: दोस्तों आज आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जहां इतिहास, आस्था और अद्भुत वास्तुकला मिलकर रचते हैं एक अनोखा संसार। आज हम आपको लेकर चलते हैं आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी गांव में स्थित वीरभद्र मंदिर की ओर, जो अपनी भव्यता और रहस्यमय स्थापत्य कला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
2: साथियों यह मंदिर भगवान शिव के रुद्र स्वरूप वीरभद्र को समर्पित है। 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य के समय निर्मित यह मंदिर अपनी शानदार नक्काशी, रंग बिरंगी भित्ति चित्रों और अद्भुत वास्तुकला के कारण भारतीय विरासत का अनमोल रत्न माना जाता है।
3: अब जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जहां का हैंगिंग पिलर यानी लटकता हुआ स्तंभ आज भी इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्तंभ का निचला हिस्सा पूरी तरह जमीन को नहीं छूता, फिर भी सदियों से मजबूती से खड़ा है। ये प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला की अद्भुत मिसाल है।
2: और कहानी यही खत्म नहीं होती, मंदिर परिसर में विशाल एकाश्म नंदी की प्रतिमा भी है, जिसे एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी एकाश्म नंदी प्रतिमाओं में से एक मानी जाती है और श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है।
3: आपको बता दें, इस मंदिर से जुड़ी एक लोकप्रिय मान्यता रामायण से भी जुड़ी है। माना जाता है कि जब रावण माता सीता का हरण कर रहा था, तब जटायु ने उनका बचाव किया और घायल होकर इसी स्थान के निकट गिर पड़े। भगवान श्री राम ने उन्हें देखकर कहा, ले पक्षी, अर्थात उठो पक्षी। माना जाता है कि इसी से इस स्थान का नाम लेपाक्षी पड़ा।
2: तो दोस्तों, अगर आप इतिहास, संस्कृति, कला और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम देखना चाहते हैं, तो आंध्र प्रदेश का वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी आपकी यात्रा सूची में अवश्य होना चाहिए।
3: दोस्तों ये था हमारा पहला सब सेगमेंट इमारतें बोलती हैं। अब बढ़ते प्रोग्राम में आगे, लेकिन उससे पहले एंजॉय कीजिए प्यारी सी गजल।

0: साथियों बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और सुनते हैं हमारा नेक्स्ट सब सेगमेंट घुमक कड़ी। साथियों आज आपको लेकर चलते हैं भारत की उस अद्भुत धरोहर की ओर, जहां हर सीढ़ी इतिहास की कहानी सुनाती है और हर पत्थर कला का बेमिसाल नमूना माना जाता है। स्वागत है आपका रानी की बाव में।
1: दोस्तों गुजरात के पाटन शहर में स्थित रानी की बाव सिर्फ एक बावड़ी नहीं बल्कि भारतीय स्थापत्य कला का ऐसा अनमोल खजाना है जिसने पूरी दुनिया को अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध कर दिया है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में कराया था।
0: इस भव्य बावड़ी की खासियत है कि इसकी 7 मंजिलें, जिन पर बनी सैकड़ों सुंदर मूर्तियां, भगवान विष्णु के विभिन्न अवतार, देवी देवताओं की प्रतिमाएं, अप्सराएं और बारीक नक्काशी यहां आने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देती है। ऐसा लगता है कि मानो पत्थरों में भी जीवन बस गया हो।
1: और आश्चर्य की बात तो ये है कि ये बावड़ी कई सदियों तक सरस्वती नदी की बाढ़ से मिट्टी में दब गई थी। बाद में पुरातत्वविदों ने इसे खोज कर फिर से दुनिया के सामने लाया और आज इसकी सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त है।
0: दोस्तों रानी की बाव हमें यह भी सिखाती है कि भारत में जल संरक्षण केवल आवश्यकता नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा रहा है। उस समय बनाई गई ऐसी बावड़ियां पानी का संग्रह करने के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र होती थी।
1: तो दोस्तों अगर आपको इतिहास, कला, भारतीय विरासत को करीब से देखने का अवसर मिले तो रानी की बाव की यात्रा जरूर कीजिए, क्योंकि यह हर सीढ़ी को अतीत की ओर ले जाएगी और हर नक्काशी भारतीय शिल्पकला की महानता का एहसास कराएगी। दोस्तों ये था हमारा आज का सब सेगमेंट घुमक कड़ी और सेगमेंट भारत के गलियारे से मैं आज के लिए बस इतना ही। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे इस प्यारी सी गजल के साथ।

0: दोस्तों, अब बढ़ते प्रोग्राम में आगे। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है,
1: कुछ अनकही बातें और कुछ अधूरी निशानी होती है।
0: जरा ठहरिए, आज उसी मुस्कान का राज खोलती है ये प्यारी सी गजल।

0: साथियों, अब समय है प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव का और पूछे गए सवाल के सही जवाब को जानने का। हमारा आज का सवाल था, भारत का कौन सा किला विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है कुंभलगढ़ का किला। आइए जानते हैं उन सभी श्रोता साथियों के नाम जिन्होंने दिए हैं हमें सही जवाब।
1: आकाश रस्तोगी, राजवीर सिंह यादव, शारनूर अंसारी, सुदर्शन शाह, बोधराज खोरवाल, मोहम्मद रफीक पवार, अजीत कसाना, भागवत चौबे लाडला जी, नानक खन्ना, जॉन डी कैस्ट्रो, पुंजाजी नवाकर, प्रवीण सोनी, दीपेश वर्मा, हेमंत कुमार, भरशंकर, दिनेश वर्मा, भाई रफत साहब, चौधरी राजवीर सिंह, जगदीश धाकड़, रवि राहुल, रवि कुमार राहुल, हाजी गफ्फार खान, धर्मेंद्र छेपा, बबलेश पनवर, विनोद मोणत, मोहम्मद आमिर अंसारी, मसरूर हसन, गंगा सिंह रावत, राजपाल गजभिये, शेख मूसा, राजकुमार दूधी, अरविंद कुमार, रवि रस्तोगी, कमल बालूजा, सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, सत्येन चंसौलिया पजौनिया। मोहम्मद यासीन अंजन, राधेश्याम पांडे, मास्टर विट्ठल सुरोशे, राम कुमार रेवाड़, बलवंत कुमार वर्मा, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, सुरेश राठौर, नवी हसन अब्बासी, अशोक सिंह, शाहजी बोट के, वलीउल्ला अंसारी, निसार सलमानी, आसिफ चौधरी, जाकिर मंसूरी, सोहन जोशी, रामशरण विश्वकर्मा, फागुराम यादव, धीरज भाई राबरी, सुरेश गगनेजा, प्रवीण चौहान, गजन येले, जीशान वारसी, संजय ढिंगिया, सुनाश संतोष खड़ से, आफ्ताब अंसारी, बिरुलाल वाक्तरिया धाकड़, शकील अहमद इदरीसी, हीरामणि वर्मा, नवाबुद्दीन, उदय सिंह ठाकुर, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, मोहम्मद सईद अब्बासी, मोहम्मद जाहिद अली, हल्के जयपाल यादव, भुवन प्रकाश, विमल सक्सेना भारती, लाल मोहम्मद अंसारी, गुरमीत सिंह मीता, मुकेश कश्यप, विजय सुरलकर, मिसबा शमची, उमेश कुमार गौर और दुर्गाराम साहू। आप सभी को सही जवाब देने की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आप बढ़ते प्रोग्राम में आगे। कहते हैं कुछ शामें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में नहीं सिर्फ एहसासों में जिया जाता है।
0: जब कोई अपना साथ हो तो दिल बस यही कहता है कि थोड़ी देर और ठहर जाइए।
1: इसी अनकही चाहत और मोहब्बत के एहसास को समेटे पेश है ये सदाबहार गजल।

0: दोस्तों आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा बताना ना भूलें। हमारे इस पते पर हमारा पता है, कार्यक्रम चिट्ठी आई है युववाणी अनुभाग द्वारा के निदेशक आकाशवाणी रामपुर और पिन संख्या है 244901। साथ ही साथ आप हमें ईमेल के माध्यम से भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है patramela@rampur.gmail.com। इसी के साथ आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9410087876।
1: इसी के साथ प्रोग्राम को समाप्त करने की दीजिए इजाजत आपके रेडियो पार्टनर मेघा सक्सेना
0: और रेडियो साथी नतांश अग्रवाल को।
1: नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आपके साथ थे आपके रेडियो मित्र मेघा सक्सेना और नतांश अग्रवाल। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा

0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि यह परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जीएमआर समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मेपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर 2 विस्फोट हुए। इनमें 4 पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा की राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुछ जरूरी संदेश।
2: जल के बिना तो जल जाओगे, पानी की एक बूंद बिना तुम कैसे प्यास बुझाओगे।
3: कीमत समझो पानी की अब, वरना फिर पछताओगे।
4: रिश्ते नाते पीछे होंगे जब जल की होगी मारा मारी। रुपयों से भी जल न मिलेगा, जल की होगी पहरेदारी।
3: जल है तो कल है,
4: यही चिंतन पल पल है।
5: पानी को बचा कर रखिए, इसका सदुपयोग कीजिए।

0: आज की सबसे पहली जरूरत ERSS
1: यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम,
0: और ये उपलब्ध है हेल्पलाइन नंबर 112 पर।
1: आपातकाल में साथ निभाए,
0: तुरंत सहायता उपलब्ध कराए
1: 112।
0: सवाल चाहे महिला सुरक्षा का हो
1: या सार्वजनिक स्थानों पर आत्मरक्षा का,
0: यदि चाहिए पुलिस सहायता
1: या फिर अग्निशमन सेवा की हो आवश्यकता,
0: बुलाना हो एम्बुलेंस को,
1: मिटाकर हर सस्पेंस को
0: डायल 112।
1: कोई भी राज्य हो कोई भी इलाका
0: 112 सच्चा हम सब।

0: ट्रांसफर है आपका।
1: कॉल 112, SMS करें या पैनिक बटन दबाएं,
0: या फिर भेजें ईमेल ऑलवेज यूज 112 इंडिया मोबाइल ऐप।
1: जब घेरे कोई भी आपदा,
0: तुरंत मिले सहायता,
1: डायल 112।
0: चिंता से पाएं छुटकारा,
1: पुष्पा झुकेगी नहीं,
2: 112 की सेवा रुकेगी नहीं।
3: प्लास्टिक चलन में आई लकड़ी और कागज के बेहतर, सस्ते और टिकाऊ विकल्प के रूप में,
4: और खतरनाक साबित हुई पर्यावरण और जीवन के लिए।
3: हाँ, लेकिन मैंने बनाई तुम्हारी जिंदगी आसान, खर्चा भी कम, हमेशा रहते मेरे निशान।
4: तुम बनी हो जहरीले रसायनों से, न क्षय होता है तुम्हारा और न अपघटन, तभी तो तुम्हारे निस्तारण को लेकर परेशान है भारत का जन जन।
5: जलाओ तो निकले जहरीली गैस, जमीन में गाढ़ो तो प्रदूषित हो माटी के अवशेष। हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं, प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएं।
6: करें उचित प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, रखें सुरक्षित पर्यावरण और जीवन।
7: Say no to plastic।

0: सूरज सभी को अपनी रोशनी देता है, मेघ जाति या धर्म देखकर नहीं बरसते, वायु बिना भेदभाव सबको जीवन देती है, यहाँ तक कि सबके लहू का रंग भी एक ही है, तो क्यों धर्म जाति के नाम पर खून बहे। आइए मानवता के सागर में हर भेदभाव को मिटाकर एकाकार हो जाएं।
1: ऐ काश मेरे मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर गिरे तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो।
2: आइए हम सब मिलकर राष्ट्रीयता के पथ पर सांप्रदायिक सद्भाव, शांति और समरसता के फूल खिलाएं।
3: श्रोताओं के हमेशा रहा पास, हुआ ना कभी दूर, आपका अपना आकाशवाणी रामपुर। जारी है हमारे प्रसारण मीडियम वेव 336.7 मीटर और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। साथ ही आप सुनते हैं हमें न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी।
4: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 6:10 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का दैनिक कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत के स्वरों में, फिल्म द ट्रेन से।

फिल्म गदर 2 के संगीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

0: आबो आबो जसवंत भैया, राम राम।
1: राम राम अखिलेश भैया, और साथ ही साथ कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया और बहनन को हम दोनों भैयन की ओर से राम राम, राम।
0: और भैया कैसे हैं आप और आपकी खेतीबाड़ी?
1: अखिलेश भैया हम भी ठीक हैं, और जो हमारी खेतीबाड़ी है ना वो भी बहुत अच्छी से है, और इस समय आप देख रहे हैं ना कि बड़े काम है खेतीबाड़ी में।
0: हाँ भैया, और मौसम भी ऐसा ही है, गर्मी का मौसम है, तो गर्मी से अपने आप को बचाते हुए हमारे किसान साथी खेतीबाड़ी के सारे काम समय रहते निपटाएं।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने। और देखो अखिलेश भैया, हमारे जो किसान साथी हैं ना, वे जो उनके क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली जो फसलें हैं उनको तो उत्पादन करते ही हैं, जैसे धान है, गेहूं है, गन्ना है, ये सब फसलें तो वे करते ही हैं। लेकिन आज हम अपने किसान साथियों के लिए एक अलग खेती के बारे में एक जानकारी लेकर आए हैं, जिसको विषय है ड्रैगन फ्रूट।
0: हाँ भैया,
1: आपने देखी होगी कि पिछले कुछ वर्षन में हमारे जो किसान साथी हैं ना, ड्रैगन फ्रूट की खेती करके बहुत बड़ो लाभ कमा रहे हैं। और आपने देखी हुई ना भैया, जो फल देखने में जितना आकर्षक होता है ना, उतनो ही पौष्टिक और बाजार में अच्छी कीमत दिलाने वालों भी होता है। और वैज्ञानिक तरीका से अगर जाके खेती करी है ना, तो किसान कई वर्षों तक जैसा अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं।
0: हाँ भैया सही कहा आपने। सबसे पहले जानते हैं कि ड्रैगन फ्रूट क्या है। यह एक कैक्टस वर्ग का पौधा है, इसलिए इसे बहुत अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक बार पौधा लगाने के बाद लगभग 20 से 25 वर्षों तक इससे उत्पादन लिया जा सकता है।
1: और अखिलेश भैया एक बात और बता, मैं हम अपने किसान साथियों के लिए, जाकि मांग जो है ना वो अब लगातार मार्केट में बढ़ रही है, क्योंकि लोग स्वास्थ्य के प्रति बड़ा जागरूक हो रहे हैं, और जो डॉक्टर लोग होते हैं ना जाको खान की भी सलाह देते हैं।
0: हाँ भैया, अब बात करते हैं जलवायु की। ड्रैगन फ्रूट की खेती गर्म और हल्की आर्द्र जलवायु में सबसे अच्छी होती है। लगभग 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है।
1: और एक चीज और है अखिलेश भैया, अधिक पाला या लंबे समय तक पानी भराव इसकी खेती के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो देख लें, जहाँ भी इस फसल को ले रहे हैं हमारे किसान साथी, उस खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए।
0: और भैया अगर हम बात करें मिट्टी की, तो अच्छी जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त इसकी पैदावार के लिए मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान लगभग 5.5 से 7 होना चाहिए। यदि खेत में पानी रुकता है तो पौधों की जड़ें सड़ सकती हैं और उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने अखिलेश भैया, खेत की तैयारी करते समय पहले अच्छे तरीका से खेत की जुताई कर लें, और खरपतवार जो बाबा खेत में हैं उनको हटा दें। जहां पौधे लगाने हैं वहां लगभग 60x60x60 यानी कि 60 सेंटीमीटर चौड़ो, 60 सेंटीमीटर गहरो और 60 सेंटीमीटर ऊंचाई को, यानी कि चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई तीनों में जो गड्ढा तैयार करेंगे ना, प्रत्येक गड्ढा में अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें, या फिर अगर बर्मी कंपोस्ट मिल जाए तो बाको डाल दें, और थोड़ी मात्रा में नीम खली मिलाकर भी भर दें इसमें, तो जो पौधन की शुरुआती बढ़वार है ना वो बड़ी अच्छी होती है फिर उसके बाद।
0: और भैया ड्रैगन फ्रूट की खेती में सबसे महत्वपूर्ण काम है मजबूत खंभे लगाना। आमतौर पर 6 से 7 फीट ऊंचे सीमेंट के खंभे लगाए जाते हैं। भैया जी देखे होंगे आपने, गोल पहिया उनके ऊपर लगा हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और ऊपर की ओर गोल रिंग या क्रॉस लगाकर पौधों को सहारा दिया जाता है। एक खंभे के चारों ओर चार चार पौधे लगाए जाते हैं। जैसे जैसे पौधे बढ़ते हैं उन्हें रस्सी से बांधकर ऊपर चढ़ाया जाता है।
1: और जब पौधे ऊपर पहुंच जाता ना, तो उनकी शाखाएं नीचे की ओर फैलती हैं, और वहीं से जो अधिक फूल और फल आने की संभावना बढ़ती है। भैया फिर
0: पौधे तैयार करने के लिए कटिंग का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर लंबी स्वस्थ कटिंग लें, और उन्हें लगाने से पहले 1 या 2 दिन छाया में सुखा लें। इसके बाद खेत में रोपाई करें। बरसात का मौसम या फरवरी से मार्च का समय रोपाई के लिए सबसे अच्छा माना जाता है।
1: बिल्कुल भैया अखिलेश भैया, सिंचाई की बात करें तो ड्रैगन फ्रूट को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता तो ना होती है, जैसे कि हमने शुरुआत में बताई। गर्मियों में लगभग 6 से 10 दिन के अंतर पर जैसे आपको जरूरत पड़ रही है ना, उस हिसाब से, और सर्दियों में 15 से 20 दिन के अंतर पर अगर सिंचाई करें ना तो बड़ा पर्याप्त होती है। और जाके लय जो सिंचाई की व्यवस्था करी है, अगर ड्रिप सिंचाई की व्यवस्था करी है तो सबसे अच्छा विकल्प है। क्योंकि जहाँ में पानी और उर्वरक दोनों की बचत हो जाती है।
0: हाँ भैया, और उर्वरक प्रबंधन भी अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक वर्ष गोबर की खाद, बर्मी कंपोस्ट तथा संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग करें। फूल आने पर फल बनने के समय सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव करने से उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ती हैं। मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करें तो हमारे किसान साथी अच्छा मुनाफा इस फसल से लेंगे।
1: जाके अलावा अखिलेश भैया, खरपतवार नियंत्रण के लिए भी समय समय पर निराई गुड़ाई हमारे किसान साथी अगर करेंगे ना, तो जो पौधन के आसपास जो खरपतवार हो जाता है वो भी सफाई हो जाएगी और कीट और रोग भी कम लगेंगे। खेत में घास या सूखी पत्तियों की मल्चिंग करने से भी नमी बनी रहती है और खरपतवार भी कम उगते हैं।
0: और भैया, ड्रैगन फ्रूट में समानता रोग और कीट कम लगते हैं, लेकिन यदि खेत में पानी भर जाए या साफ सफाई न रखी जाए तो तना सड़न और फफूंदी जनित रोग लग सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसी स्थिति में प्रभावित भागों को काटकर कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार उचित फफूंदी नाशक का प्रयोग करें। समय समय पर खेत का निरीक्षण करना बहुत ही जरूरी है।
1: और अगर हम बात करें फूल और फल बनन की, तो रोपाई के लगभग 12 से 18 महीना के बाद, लगभग यानी कि डेढ़ साल के बाद पौधन में फूल आने लगते हैं। फूल प्रायः रात में खिलते हैं और सुबह तक मुरझा जाते हैं। फल बनन के लगभग 30 से 40 दिन तक तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब फल को रंग पूरी तरह चमकीलो या फिर गुलाबी या लाल हो जाए ना, तभी उसकी तुड़ाई करना चाहिए। लेकिन जा तो भैया लाल या गुलाबी वाले पौधा की बात कर रहे हैं, लेकिन जाकी और किस्में हैं, बामा पीलो और जो आपने देखी हुई ना सफेद कलर को भी अब ड्रैगन फ्रूट आएगा हुआ है।
0: हाँ हाँ। और भैया, एक अच्छी तरह से विकसित पौधा तीसरे वर्ष से पर्याप्त उत्पादन देने लगता है। उचित देखभाल करने पर एक खंभे से कई किलोग्राम फल प्राप्त किए जा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: समय के साथ उत्पादन लगातार बढ़ता है और कई वर्षों तक बना रहता है।
1: और अगर बात करें लागत की, तो शुरुआत में सीमेंट के खंभा, पौधा, ड्रिप सिंचाई और खेत की तैयारी, थोड़ा सा अधिक खर्च तो आता है, लेकिन जो एक दीर्घकालीन निवेश है, यानी कि एक बार आपने निवेश कर दो तो बहुत लंबे समय तक, यानी कि 20 से 25 वर्षों तक उत्पादन आराम से हमारे किसान साथी ले सकते हैं। और अगर अच्छी देखभाल और उचित विपणन से जो हमारे किसान है ना, वो हर वर्ष अच्छा लाभ कमा सकते हैं।
0: और ड्रैगन फ्रूट का बाजार भी लगातार बढ़ रहा है। इसे स्थानीय मंडियों, सुपरमार्केट, फल विक्रेताओं, होटल, जूस सेंटर और ऑनलाइन प्लेटफार्म तक बेचा जा सकता है। यदि किसान समूह बनाकर पैकिंग और ब्रांडिंग करें तो उन्हें और अधिक कीमत मिल सकती है। लाल गूदे वाले ड्रैगन फ्रूट की मांग कई क्षेत्रों में अधिक देखी जाती है।
1: और भैया, कुछ सावधानियां भी रखनी है हमारे किसान साथियों के लिए, क्योंकि हमेशा प्रमाणित नर्सरी से ही पौधे खरीदें, खेत में पानी बिल्कुल ना रुकन दें, पौधन की समय समय पर छटाई करें ताकि नई शाखाएं निकलती रहें, और उर्वरक और ड्रिप सिंचाई का प्रयोग करें तो रोग और कीट जो दिखाई दे रहे हैं ना अगर, तो उनको तुरंत उपचार कर लेंगे तो हमारे किसान साथी ड्रैगन फ्रूट की खेती से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जो तो ही कुछ बात अखिलेश भैया ड्रैगन फ्रूट के बारे में, और अब हम बता दें अपने किसान साथियों के लिए, क्योंकि किसान साथी हमारे खेती बाड़ी के साथ साथ कोई ना कोई व्यवसाय धंधा जरूर करते हैं।
0: हाँ।
1: जैसे बात करें हम मुर्गी पालन की, बकरी पालन की, सुअर पालन की, इसके अलावा हमारे कुछ किसान साथी हैं वो डेयरी पालन को भी काम करते हैं।
0: हाँ,
1: लेकिन उन्हें अगर पूरी जानकारी ना होती है ना, तो कई बार गलतियां कर देते हैं।
0: हाँ,
1: तो आज हम इसी से संबंधित एक जानकारी अपने किसान साथियों के लिए लेकर आए हैं, और विषय भी जय है डेयरी फार्म प्रबंधन। इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पंकज, और आपसे बातचीत कर जानकारी करा रहे हैं हमारे भैया अनिल किशोर। तो आओ सुनवा देते हैं अपने किसान साथियों के लिए जय भेंट वार्ता।
2: किसान भाइयों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेयरी फार्म प्रबंधन विषय को, और इस विषय की विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज। आप हैं KVK संबल, और आज हम डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई हैं डेयरी फार्म वाले, उनके लिए प्रबंधन किस किस तरह से करना चाहिए।
3: डेयरी की जो प्रमुख चीज है, जिस हिसाब से अगर किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन लेना है, तो उसके कुछ मुख्य बिंदु हैं।
2: जी,
3: मुख्य बिंदुओं में सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं की ब्रीड या प्रजातियां।
2: जी, जी,
3: जैसे अगर हम बात करें गाय की प्रजातियों के बारे में, तो मुख्यतः उसमें अच्छे उत्पादन देने वाली जो नस्लें हैं उनमें देसी और विदेशी नस्ल की दो तरीके की गायें किसान भाई यहाँ पर पालते हैं। तो उसमें देसी जो नस्लें हैं
2: जी,
3: वो गिर नस्ल है, साहिवाल है
2: जी,
3: थारपारकर है, और गाय की विदेशी नस्लों के बारे में अगर हम बात करें तो मुख्यतः अपने यहाँ पर जो है होल्स्टीन फ्रीजियन और जर्सी नस्ल की गाय जो है वो पाली जा रही हैं। अगर हम बात करें भैंसों की, तो भैंसों में इस जलवायु के लिए सबसे बढ़िया जो प्रजातियां हैं वो मुर्रा है, सूरती है और जफराबादी है।
2: जी जी।
3: और इसके चयन प्रक्रिया के लिए सबसे पहले पशुपालन के लिए अगर हम जाते हैं तो जलवायु के हिसाब से हमको यहाँ पर प्रजातियों का चयन करना होता है कि हमारे क्षेत्र में इस वातावरण में कौन सी प्रजातियां जो है अच्छे से सर्वाइव कर सकती हैं।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे जैसे हमारे बहुत सारे किसान भाई जो डेयरी का काम कर रहे हैं और जरूरी ये है कि हमारे जो पशु हैं वो स्वस्थ रहें, इसके लिए जरूरी ये हो जाता है कि पशुओं का आवास उसका प्रबंधन किस तरह से हमारे किसान भाइयों का हो और किस तरह से वो अपने पशुओं का प्रबंधन करें जिससे कि जो पशु हैं वो उनके स्वस्थ रहें और पशु उत्पादन ज़्यादा हो, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से अगर कर रहे हैं हमारे किसान भाई तो उनको दुग्ध उत्पादन ज़्यादा मिले।
3: अगर हम बात करें कि पशुओं के लिए आवास बनाने की या शेड प्रबंधन की, तो उसमें सबसे जरूरी चीज़ है कि शेड के जो बनाने की दिशा है उसको सबसे पहले उस पर विचार करना चाहिए कि हमारा शेड जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ रहे। इससे ये फायदा है कि जो तेज हवाएं चलती हैं वो उससे शेड हमारा उड़े नहीं, उससे नुकसान ना हो। और पूर्व पश्चिम अगर हम शेड बनाते हैं तो उसमें जो है धूप बराबर पूरे शेड में लगती है।
2: जी, जी।
3: और उसके अलावा जो है वेंटिलेशन यानी कि उचित हवा का प्रवाह वो बराबर होता रहे, यानी कि उसमें हवा जो है आती रहे।
2: जी, जी।
3: और अगर नीचे फर्श की बात करें तो फर्श में जो है 1-2% जो है ढलान करके फर्श को बनाना चाहिए और फर्श जो है हमेशा वो सूखे रखने चाहिए। उससे क्या होता है कि पशु जो है हमारा वो गिरेगा नहीं, फिसलेगा नहीं। और आजकल तो नई तकनीकें आ गई हैं कि फर्श पर जो है मोटी रबर की सीट बिछा देते हैं।
2: जी जी।
3: जिससे कि जो है पशु के
2: बैठने का
3: हाँ सही रहता है। और उससे फायदा ये होता है कि जो थर्नेला एक प्रमुख कारण है वो उचित अगर प्रबंधन नहीं रहा, हमारा फर्श उबड़ खाबड़ रहा या बैठने की व्यवस्था गड़बड़ रही, साफ सफाई नहीं रही, तो वहां से जो है और फिजिकल इंजरी की वजह से ये थनेला होने के चांस ज्यादा रहते हैं। और गर्मी के लिए अगर बात करें कि गर्मी के मौसम में पशुओं के प्रबंधन के लिए शेड में तो हमें फॉगर लगाना चाहिए और अगर पंखे की व्यवस्था हो सकती है पंखे की, अगर विदेशी नस्ल की हमारे पास प्रजातियां हैं जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन है, जर्सी है, तो ये ठंडे प्रदेशों की है।
2: अच्छा।
3: तो उसके लिए हमें एयर कंडीशन की व्यवस्था
2: करनी
3: पड़ जाती है। और शरद ऋतु की बात करें तो उस समय पर जो है हमें पर्दे की व्यवस्था अच्छी रखनी चाहिए कि उसमें हवा जो है आर पार ना जाए।
2: डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई है कि हमारे जो पशुपालक हैं उनके लिए पशु आवास और शेड प्रबंधन इस तरह से करना चाहिए, लेकिन अब बात आती है कि हमारे जो किसान भाई अपना जो अब पशु हैं और जो डेयरी कर रहे हैं उनके लिए आहार की व्यवस्था किस तरह से करें और आहार प्रबंधन किस तरह से करें जिससे कि जो पशु हैं उनके स्वस्थ रहें और उनसे उनको सही लाभ मिले।
3: अगर एक तरीके के संतुलित आहार की बात करें हम तो जिस तरीके के मनुष्य के लिए सारे विटामिन्स, प्रोटीन और फैट इन सब की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके जो है हमें अपने पशुओं के लिए भी प्रबंधन करना चाहिए। अगर बात करें हम हरे चारे की तो हरा चारा जो है पशु के लिए बहुत ही कारगर चीज है उसके लिए। और इसको देना कितना है, हमें लगभग 60-70% हरा चारा मिलाना है। और बात करें अगर सूखे चारे की तो सूखे चारा जो है हमारा वो लगभग 30-40% हम मिक्स करके दे सकते हैं। और दाने की बात करें तो दाना जो है वो पशुओं को हमेशा देना चाहिए, जैसे अगर वो सूखे की अवस्था में है यानी ड्राई है तो उसको 1-1.5 किलोग्राम हमें जो है दाना देना चाहिए। अगर वो प्रेगनेंसी पीरियड में है तो उससे 1.5 किलोग्राम से ऊपर हम दाना देंगे।
2: अच्छा।
3: अगर पशु हमारा दूध दे रहा है तो उस कंडीशन में हम उसको प्रति लीटर के हिसाब से लगभग 2.5 लीटर पे गाय के लिए जो है हम 1 किलोग्राम एक्स्ट्रा दाना देंगे, मतलब 2.5 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम जो है हम दाना देंगे। भैंस की बात करें तो 2 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना इस तरीके का देना है कि जितने लीटर दूध दे रही है गाय उसका मुझे मतलब किसान भाइयों को जो है दाना देना सुनिश्चित करना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, ये इस तरह से हमारे किसान भाई अपने पशु के संतुलित आहार में शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर जैसे अगर हम बात करें तो पशु के वजन के हिसाब से भी क्या आहार दिया जाता है, जैसे पशु इतने वजन का है कि छोटा पशु है या बड़ा पशु है या मध्यम पशु है, तो इसको साइज के हिसाब से भी पशु के लिए कुछ आहार की व्यवस्था या मिनरल मिक्सचर दिया जाता है?
3: मिनरल मिक्सचर आज के समय पर जो है पशुओं के लिए बहुत ही जरूरी चीज हो गई है, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे विटामिन हैं, बहुत सारे प्रोटीन हैं जो चारे के माध्यम से पशु के शरीर को नहीं मिल पाती है।
2: बिल्कुल।
3: तो उसको हम आज के समय पर पशुओं को 50 ग्राम जो है पर डे के हिसाब से
2: जी
3: एक पशु को जो है खनिज मिश्रण ये देना चाहिए।
2: अच्छा।
3: साथ ही हमें जो है नमक 30 ग्राम लगभग एक पशु को प्रतिदिन देना चाहिए, ताकि उनका जो है रक्तचाप बराबर रहे
2: जी,
3: और पेट का जो है पीएच वो बैलेंस रहे
2: जी,
3: और इससे जो है पाचन क्रिया सही रहती है।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। और अब बात आती है कि जो हमारे पशु हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए कभी कभी रोग और कीट भी हमारे जो लगते हैं, जैसे बाह्य परजीवी हैं, अंतः परजीवी हैं, तो इनको भी नियंत्रण करने के लिए हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी है
3: जी।
2: अब पशु स्वस्थ रहें इसके लिए कौन कौन सी बीमारी आती है पशुओं में और उनसे किस तरह से बचाया जा सकता है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों के लिए थोड़ी सी जानकारी देने की।
3: किसान भाइयों देखिए, पशुओं में जो सबसे ज्यादा दिक्कतें आती हैं वो लगभग जो बीमारियां हैं उसको हम टीकाकरण से दूर कर सकते हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो समय के हिसाब से जो है टीकाकरण अवश्य कराएं। टीकाकरण में जैसे मौसम के हिसाब से बहुत सारे टीके होते हैं, उम्र के हिसाब से बहुत सारे टीके होते हैं
2: जी।
3: तो टीका लगवाने का एक फायदा ये होता है कि बीमारी आने से पहले का जो बचाव है
2: जी
3: वो हम टीकाकरण के माध्यम से रोक सकते हैं।
2: बिल्कुल।
3: और अब जैसे अब इस समय बरसात ऋतु चल रही है, तो इससे पहले जो हमें टीका गला घोटू, खुरपका, मुंहपका इन सब का लगवा लेना चाहिए।
2: बिल्कुल।
3: और अगर बात करें पैरासाइट या परजीवियों की, तो पशुओं में दो तरीके के परजीवी जो है मुख्यतः वो सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। परजीवियों का ये है कि वो जो पचे भोजन है उससे अपना भोजन बनाते हैं।
2: बिल्कुल।
3: तो हमारा दुग्ध उत्पादन वो कम हो जाता है, पशु के शरीर जो है वो गिर जाता है, और उसके अलावा प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है।
2: बिल्कुल।
3: और इसको हम दूर कैसे करें, उसके लिए होता है कि दो तरीके कीड़े जो है वो नुकसान करते हैं, एक अंतः परजीवी जिसको बोलते हैं हम
2: जी जी।
3: और एक बाह्य परजीवी बोलते हैं। बाह्य परजीवी में हमारे किसान बंधु जो अपने आंखों से देख सकते हैं कि अगर भैंस हो या गाय हो या अन्य कोई भी जानवर हो उस पर किलनी, चिचड़ी, इस तरीके की जो है चीजें वो लगती हैं। अंतः परजीवियों की अगर हम बात करें तो अंतः परजीवियों में सूत्रकृमि है, फीताकृमि है या अन्य इस तरीके के सूत्रकृमि हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं। और इनके कंट्रोल के लिए आजकल जो है बाजार में बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। जैसे बाह्य परजीवियों की अगर हम बात करें तो इसके नियंत्रण के लिए जो है हमारे पास आजकल बाजार में इंजेक्शन भी मौजूद है
2: जी,
3: और पानी में घोल करके लगाने की दवा भी मौजूद है, डायरेक्ट रीढ़ की हड्डी पर भी डाल करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है।
2: अच्छा।
3: या फिजिकली भी हम जो है उसको हटाते हैं। तो सबसे बढ़िया जो तरीका है आजकल कि केमिकल पर ना जा करके अगर हमको पशु को स्वस्थ रखना है तो हमें सबसे आसान तरीका खुरैरा करना चाहिए।
2: अच्छा।
3: जो ब्रश से खुरैरा करते हैं उससे रक्त संचार भी अच्छा हो जाता है और जो है कीड़े जो बाह्य परजीवी हैं उसका नियंत्रण भी हो जाता है।
2: अच्छा।
3: और पहले के जमाने में जो होता था कि पशु को हम बाहर बांधते थे
2: जी, जी।
3: तो उससे क्या होता था कि ये जो चिड़िया हैं, कौवे हैं, तो ये बाह्य परजीवियों को अपना चोंच से निकाल देते थे।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: लेकिन समय के हिसाब से जो है अब इसका प्रबंधन घर के अंदर होने लगा, शेड में होने लगा
2: जी।
3: तो हमारे पास केमिकल कंट्रोल के अलावा बहुत ज्यादा चारा नहीं बचता है। और अगर घर पे मैं बात करूं कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, तो पशु को नहलाने के लिए हम रोज जो है साफ पानी इस्तेमाल करते हैं, तो उसी में हम अगर नीम की खल की जो है और नीम की पत्तियों का उबाल करके अगर हम उससे कोई सोल्यूशन बना लें तो लास्ट में हम उससे नहला दें।
2: बिल्कुल।
3: तो इससे क्या होगा कि केमिकल के प्रयोग ज्यादा ना करने से हमारा पशु अच्छा और स्वस्थ रहेगा।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। और अब बात आती है कि डॉक्टर साहब हमारे किसान भाई दुग्ध का उत्पादन करते हैं, तो दुग्ध उत्पादन में कौन कौन सी सावधानी बरते हैं जिससे कि जो है उनका दूध अच्छा हो और साफ सुथरा हो।
3: अगर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और ये आज के हिसाब से जो है जो दूध का प्रदूषण है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि पशुपालक बंधु, हमारे किसान बंधु कैसे इसका अच्छा मुनाफा कमाएं। अगर दुग्ध उत्पादन हमें पूर्णतया स्वच्छ करना है तो उसके लिए बहुत सारी विधियां हैं।
2: अच्छा।
3: विधियों के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि हमें दूध निकालने की जो विधियां हैं उसके बारे में पता हो कि हमें किस तरीके से जो है
2: दूध निकालना है।
3: उसमें सबसे पहली बात तो यह है कि हम नॉर्मली जो है साफ पानी से थन को धोते हैं।
2: अच्छा।
3: तो अगर हो सके तो हम लाल दवा के इस्तेमाल से जो है थन को साफ कर सकते हैं
2: जी।
3: और हमारे कृषक बंधु क्या करते हैं कि घर में जो थन साफ करने के लिए, जैसे मान लीजिए पानी से थन धुला तो उसके बाद जो है सुखाने के लिए जो घर का पुराना कपड़ा होता है उसको इस्तेमाल करते हैं।
2: अच्छा,
3: जो गंदगी से लिप्त है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो और भी ज़्यादा दूध को प्रदूषित करता है, साथ ही थनैला के आने के चांसेस को बढ़ाता है। तो इसके लिए जो है कि साफ तौलिए का इस्तेमाल करें
2: जी,
3: और इसके बाद जो है जो पहली धार है दूध की
2: जी,
3: वो हमारे किसान बंधु क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको बर्तन में ही निकालना शुरू करते हैं।
2: अच्छा,
3: तो शुरुआत की जो 3 से 5 धार हैं उसको
2: अच्छा,
3: बर्तन से बाहर हमें निकालना है।
2: अच्छा,
3: और इसके बाद फिर क्योंकि जो बैक्टीरिया मौजूद हैं शुरुआत के दूध में तो वो जो है बाहर निकल जाएं। इसके बाद बर्तनों की सफाई में क्या है कि जितना भी हो सके अगर हम गर्म करके बर्तन को सैनिटाइज कर लेते हैं पूर्णतया, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है जीवाणु वैसे ही पहले से रहते हैं तो वो मर जाएंगे, तो दूध जो है वो हमारा सुरक्षित तरीके आ जाएगा।
2: बिल्कुल,
3: और खुरैरा करने का जो बता रहे थे हम, वो यहाँ पर कारगर साबित होता है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में, कि जो पशुओं के शरीर पर मौजूद बाल हैं, जो टूटे हुए बाल हैं,
2: जी
3: जब पशु से हम दुग्ध निकालते हैं तो उस समय पर दूध में ही आ जाते हैं हमारे,
2: बिल्कुल,
3: तो जो टूटे हुए बाल हैं बाहर निकल जाएं, वो हमारे दूध में ना आए।
2: जी,
3: तो ये कुछ विधियां हैं जिससे हम अपना स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है डॉक्टर साहब, इस तरह से हमारे किसान भाई स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कर सकते हैं। और अब बात आती है कि डेयरी व्यवसाय के बारे में शुरू करने के लिए किस चरणबद्ध तरीके से हमारे किसान भाई कर सकते हैं।
3: अगर बात करें हम किसान बंधु, तो जो डेयरी व्यवसाय अगर हमें शुरू करना है
2: जी,
3: तो उसके लिए एक सुनियोजित तरीका होता है, हमें एक योजनाबद्ध तरीके से काम को अपने स्टार्ट करना है।
2: बिल्कुल,
3: उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है उसमें यह है कि हमको सबसे पहले एक प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है,
2: बिल्कुल,
3: कि हमको कैसे व्यवसाय को करना है, कैसे कैसे क्या क्या बीमारियां आएंगी, क्या टीकाकरण होगा, किस तरीके से आवास का प्रबंधन होगा,
2: जी
3: ये सब चीज़ें जो हमें कहीं से प्रशिक्षण ट्रेनिंग लेने के बाद जो है मिलेंगी। तो प्रशिक्षण के लिए बहुत सारी जगह ऐसी हैं जैसे पशु चिकित्सा केंद्र हो गए, या फिर सरकारी विभागों के जो है पशु
2: जी
3: चिकित्सा
2: जी
3: विभाग के प्रशिक्षण केंद्र हो गए,
2: जी जी
3: कृषि विज्ञान केंद्र हो गए,
2: संस्थान है ऐसे बहुत
3: या
2: सारे,
3: फिर जो है पशु चिकित्सा संस्थान है,
2: जी
3: वहाँ से हमारे कृषक भाइयों को सबसे पहले प्रशिक्षण लेना चाहिए। उसके बाद जो है बुनियादी ढांचे के तरफ हमें जाना चाहिए कि
2: जी
3: आवास का प्रबंधन हमें कैसा करना है,
2: जी
3: सही दिशा कौन सी है जिसमें हम आवास बनाएं,
2: बिल्कुल
3: कितनी हाइट का आवास बनाएं,
2: जी
3: किस तरफ से जो है दरवाजा रहेगा, किस तरफ से आने जाने के चीज़ें रहेंगी, ढलान कितना रहेगा,
2: बिल्कुल
3: और आहार के प्रबंधन के लिए जो है हम अपना चारे के जो भौत बनाते हैं वो किस तरफ रहेगी,
2: बिल्कुल
3: गोबर निकालने, मूत्र निकालने, इन सब का उचित प्रबंधन जो है
2: जी
3: वो हमें बुनियादी ढांचे में बनाने का जो मिलता है।
2: जी
3: और उसके बाद आते हैं कि जैसे पशुओं की खरीदारी की बात करेंगे कि हमें कौन से पशु जो है पालने चाहिए,
2: जी
3: तो मार्केट में तो ऐसे इस तरीके के जो है बहुत अच्छे प्रोडक्टिव पशु नहीं मिल पाते हैं, तो हमें जो है किसी पंजीकृत और प्रमाणित जो है पशु मेला हो,
2: जी
3: या कोई पंजीकृत डेयरी फार्म हो, या पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय हो,
2: जी
3: उन या कोई अनुसंधान हो, वहाँ से हमें पशुओं की जो है
2: खरीदारी करनी चाहिए।
3: खरीदारी करनी चाहिए।
2: बहुत अच्छी बात आपने कही है डॉक्टर साहब, और बहुत अच्छी जानकारी दी है डेयरी फार्म प्रबंधन विषय पे, और आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अभी हमारे किसान साथी जो भेंट वार्ता सुन रहे हैं, बाको विषय हो डेयरी फार्म प्रबंधन, जय विषय पर बातचीत के माध्यम से जानकारी दे रहे थे आपसे डॉक्टर पंकज, आपसे बातचीत कर जानकारी करा रहे थे हमारे भैया अनिल किशोर
1: और अखिलेश भैया।
0: हाँ भैया,
1: अब देखो कार्यक्रम में समय ही चलू है कुछ मनोरंजन को, तो आज मनोरंजन में का सुनवा रहे हो?
0: मनोरंजन में अपने किसान साथियों के लिए योगेश कुमारी जी की आवाज में सुनवा रहे हैं जो लोकगीत बोल हैं हमारी ऊंची अटारी। लेकिन भैया बात से पहले सुन लेते हैं कुछ संदेश।

0: डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया दिमागी
1: बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: हम उम्मीद करते हैं कि जलोगी सुन के हमारे किसान साथ जिनको मनोरंजन है वो भरपूर और जो उनकी पूरे दिन की थकान है वो है गई होगी दूर। और भैया आप क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में हमारे किसान साथ इनको क्या सुनवा रहे हो?
1: अखिलेश भैया, हमने पिछले दिनों बात करी एक मछली उत्पादक श्री बीरेंद्र पाल यदवंशी जी से, तो बाय बातचीत अपने किसान साथियों के लिए भी सुनवा देते हैं। आप वो सुनते हैं उनसे करी गई बातचीत।
2: आपको परिचय?
3: मेरा नाम बीरेंद्र पाल यदवंशी, ग्राम प्रहलादपुर तहसील बहड़ी जिला बरेली से हूँ।
2: बीरेंद्र जी, जो सामने गांव दिख रहा है ये अपना ही गांव है?
3: जी जी बिल्कुल।
2: बीरेंद्र जी आप क्या करते हैं?
3: खेती बाड़ी करते हैं, बाकी थोड़ा सा एक तालाब है छोटा सा, उसमें मछली का
2: उत्पादन कर रहे हैं।
3: जी,
2: खेती बाड़ी के साथ साथ मछली उत्पादन कर रहे हैं। यदवंशी जी, आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ तक हुई है?
3: पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन हूँ मैं।
2: खेती बाड़ी और खेती बाड़ी के साथ साथ मछली पालन का भी काम कर रहे हैं आप। हम जानना चाहेंगे आपसे वीरेंद्र जी कि खेती बाड़ी के साथ मछली पालन का काम आप कैसे कर पाते हैं?
3: कर लेते हैं हम, इसमें एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कर लेते हैं, कोई ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। सुबह शाम इसमें मछलियों को वही दाना वाना डालना पड़ता है।
2: कितने बीघे में आपका तालाब है?
3: लगभग 5 बीघा के समथिंग।
2: अच्छा, सब टोटल जमीन अपने पास में कितनी होगी?
3: 5 से 6 एकड़ होगी लगभग।
2: 5-6 एकड़ में से जो 5-6 बीघा आपका तालाब है उसमें मछली पालन का काम कर रहे हैं। अच्छा वीरेंद्र जी, हम यहाँ जानना चाहेंगे कि आपको खेती के साथ साथ मछली पालने का विचार कैसे आया?
3: अब हम मार्केट से संबंध भी रखते हैं तो हमें वहाँ से जानकारी मिलती रहती है, क्योंकि यहाँ से लाभ अधिक हो जाता है। और इसका ये भी है कि जब चाहें तो समय पर हम मछली का बिक्री में भी लगा देते हैं ना।
2: जब चाहें आप मछली बिक्री में लगाकर और जो अतिरिक्त आय है वो भी आ जाती है आपकी, और खेती बाड़ी का काम भी मुझे लगता है कि इससे प्रभावित नहीं होता होगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि सुबह शाम जाकर ही देखना होता है, ज्यादा उसका कोई खास असर नहीं होता है खेतीबाड़ी पे। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जैसे मछली पालन का आपने काम जब प्रारंभ किया शुरुआत में, कई तरह की समस्याएं भी आपके सामने आई होंगी कि पहले तालाब बनाएं, तालाब के लिए कहां से बीज लेके आए, कैसे क्या करें, तो ये सब जानकारी आपको कहां से मिली?
3: ये जानकारी जैसे हम मार्केट में थे तो हम मिलने वाले कुछ लोग करते भी हैं, तो मछली का जो बीज वगैरह जो तो मिलक से ही प्रोवाइड हो गया हमें।
2: अच्छा,
3: बाकी तालाब तो जैसे और साथी लोग हैं उन्होंने खुदवाया होगा तो उसी हिसाब से हमने भी देख लिया।
2: अच्छा, उसी तरीके से आपने भी काम किया?
3: उत्पादन में हमें लाभ हुआ तो अच्छी विचार और लोगों को भी व्यक्त करा हमने।
2: जो आप मछली उत्पादन कर रहे हैं इसमें जो 5-6 बीघा तालाब बता रहे हो आप, इसमें लगभग एक साल में कितना उत्पादन मिल जाता है आपको?
3: 2.5 से 3 लाख।
2: अच्छा, 2.5 से 3 लाख आपको मिल जाता है। और जो 5-6 बीघा जमीन थी, अगर मान लीजिए उसमें कुछ अन्य फसलें की जाए, कुछ सब्जी वाली खेती की जाए या कुछ और फसलें की जाए, तो उनसे क्या इतना उत्पादन मिल जाता है एक साल में?
3: नहीं, इतना नहीं, और लागत ज्यादा आती
2: है। अच्छा, इसमें मछली उत्पादन में क्या लागत आती है आपकी, क्या करना पड़ता है आपको, किस तरीके से करते हैं?
3: कुछ नहीं, इसमें अगर बाजार से सड़ी गली सब्जियां भी डाल दो, बाकी इसका जो मार्केट में वो भी खाने पीने का जो मिलता है ना, वो ले आते हैं कभी कभी और बाजार से भी कर देते हैं।
2: बना बनाया खाना आता है इसका?
3: जी जी बिल्कुल।
2: तो उसको कैसे करके डालते हैं, किस तरीके से, आपका कोई समय निश्चित है या फिर कभी कभी डालते हैं?
3: समय क्या, सुबह गए तो सुबह डाला है, शाम गए तो शाम डाला है, बाकी तालाब में इतना कुछ होता रहता है कि वो मछली अपने आप एडजस्ट कर लेती है।
2: मछली उत्पादन का कार्य है वो आसानी से कर पा रहे हैं आप। अच्छा, जैसे बहुत ज्यादा ठंडे मौसम में मछलियों को कुछ नुकसान होता है क्या?
3: गर्मियों में होता है, ठंडों में।
2: अच्छा, गर्मियों में ज्यादा नुकसान होता है,
3: गर्म होता ना।
2: अच्छा, उसके लिए आप क्या करते हैं?
3: उसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं।
2: मान लीजिए आपकी मछलियों में किसी प्रकार का कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो उसके लिए आप कहीं पर कोई संपर्क करके उनसे उपचार?
3: सलाहकार जो हमारे पुराने मित्र वगैरह हैं जो चलाते हैं, उनसे हम सलाह ले लेते हैं और वो दवाइयाँ जो भी है वो प्रोवाइड करा देते हैं।
2: अच्छा, बहुत अच्छी बात है यदवंशी जी कि आप खेती बाड़ी के साथ साथ मछली पालन का काम कर रहे हैं। अच्छा, खेती बाड़ी में आपने बताया कि आपके पास 5-6 एकड़ जमीन और है, उसमें कौन कौन सी फसलें इस समय आपने लगा रखी है?
3: गन्ना है, गेहूँ है, बाकी कुछ सब्जियों का भी चलता है, पर इतना लाभ हमें नहीं हो पाता जितना इसमें फिलहाल,
2: जितना मछलियों से हो जाता है।
3: जी,
2: अच्छा, मछलियों को जो आप तैयार मछलियां हो जाती हैं उनको आप विक्रय कहाँ करते हैं, आसपास में मार्केट है या फिर कहीं मंडी भेजते हैं आप?
3: अगर ज्यादा अति आवश्यक होती है तो हल्की फुल्की जो मार्केट लगती है बहड़ी में भी है हमारे यहाँ, और अगर हमें ज्यादा एक साथ अगर तालाब खाली करना है तो मंडी भेजती है अगर बरेली।
2: अच्छा, कितने दिन में लगभग आपकी जो मछली आपने अगर मान लीजिए अभी बच्चा डाला और उसके बाद में कितने दिन के बाद लगभग मछलियाँ आपकी तैयार हो जाती है और मार्केट में?
3: तैयार होने का तो ये वजन के ऊपर डिपेंड करता है।
2: अच्छा,
3: हाँ, 4 से 6 महीने जो लगता है, एकदम तो तैयार नहीं हो सकती ना।
2: जी,
3: कोई पहले तैयार हो गई कोई बाद में,
2: तो उसी हिसाब से आप उसकी छटनी करके निकाल देते हैं?
3: जी जी बिल्कुल।
2: अच्छा, उसके लिए अगर जैसे मान लीजिए आपको जल्दी तैयार करनी है तो उनको और अधिक पोषक तत्वों की और जो खाद्यान्न चीजें हैं उनको ज्यादा डाल के अगर आप जल्दी का बढ़वार करना चाहें तो
3: केयर कर लोगे वो जल्दी तैयार हो जाएगी।
2: आप अच्छे ढंग से अपने खेतीबाड़ी के साथ साथ मछली पालन का भी काम कर रहे हैं। आप बता रहे थे कि आपके खेतों में सब्जी वाली फसलें भी लगी हुई हैं, धान गेहूं गन्ना सभी फसलें करते हैं। मुंशी जी आपसे आज बातचीत हुई, आपका।
0: अभी हमारे किसान साथी क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में सुन रहे थे श्री वीरेंद्र पाल यदुवंशी जी को। ये एक अच्छे मछली उत्पादक हैं और इन्होंने अपने बहुत से अनुभव हमारे साथ साझा करे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी किसान साथी इनके इन अनुभवों को लाभ उठाएंगे।
1: और अखिलेश भैया, अब कृषि संकेत की बात कर लें तो आज कृषि संकेत में हम जो बात कर रहे हैं वो है मसाले वाली खेती से कैसे हमारे किसान साथी लाभ ले सकते हैं।
0: तो भैया, आज हम बात करेंगे ऐसी खेती के बारे में जो किसानों की आमदनी बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हो सकती है।
1: अगर हम बात करें हल्दी, अदरक, धनिया, जीरो, मेथी, लहसुन, मिर्च और काली मिर्च जैसे अनेक ऐसे मसाले हैं जिनकी खेती हमारे किसान साथी करते हैं और इनकी मांग केवल भारत में ही ना बल्कि विदेशों तक में अब हो रही है। और जय कारण की मसाले की जो खेती है ना वो किसान के लिए एक अच्छी आय को जरिया बन चली जा रही है।
0: और भैया, अगर आपके पास कम जमीन है तब भी मसालों की खेती से अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। सही फसल का चुनाव, अच्छी गुणवत्ता वाले बीज, समय पर सिंचाई और उचित देखभाल करके किसान अपनी आय कई गुना बढ़ा सकता है।
1: सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की, तो हल्दी एक ऐसी फसल है जिसकी मांग जो है वो साल भर बनी रहती है और इसको उपयोग मसाले, दवा, कॉस्मेटिक और धार्मिक कार्यों में भी करो जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाली अगर आपके पास हल्दी है ना तो बाजार में जाके दाम जो है वो अच्छे मिल सकते हैं और किसान कटाई के बाद हल्की सफाई, उबालने, सुखाने और पॉलिश करने पर भी ध्यान दें तो उन्हें और अच्छी कीमत मिल सकती है जाकी।
0: और भैया, अगर हम बात करें अदरक की, तो अदरक का उपयोग चाय, सब्जियों, अचार, मिठाइयों और दवाइयों में किया जाता है। इसकी मांग पूरे साल रहती है। ताजी अदरक के अलावा सूखी अदरक का भी बाजार है। यदि किसान अच्छी किस्म का बीज चुने और खेत में जल निकास की उचित व्यवस्था रखें तो उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और मुनाफा भी बढ़ेगा।
1: भैया, अगर धनिया की बात करें तो धनिया भी एक लाभदायक मसाले की फसल है जाकि पत्तियां और बीज दोनों बिक जाते हैं। आपने देखी हुई कम समय में तैयार होने वाली फसल है और किसानों को जल्दी आय दिला सकती है। और एक चीज़ को और हम अपने किसान साथियों को बता दें, जिन क्षेत्रों में पानी की कमी रहती है वहाँ भी धनिया की खेती बहुत अच्छे तरीके से करी जा सकती है।
0: और इसके बाद अगर हम बात करें लहसुन की, तो लहसुन की मांग घरेलू रसोई से लेकर दवा उद्योग तक रहती है। यदि किसान अच्छी गुणवत्ता का

0: फसल उगाकर उसे कुछ समय तक सुरक्षित भंडारित करें तो बाजार में कीमत बढ़ने पर बेचकर अधिक लाभ कमा सकते हैं।
1: मेथी भी किसान के लिए एक अच्छा विकल्प है, अगर जाके हरी पत्तियां और बीज दोनों तरीका से हमारे किसान साथी जाको बिक्री कर सकते हैं। कम लागत में जाके खेती बड़े आसानी से करी जा सकती है और कई राज्यों में जाके खेती के लिए सरकारी योजनाओं के तहत सहायता भी मिलती है भैया।
0: और भैया अगर किसान भाई मिर्च की खेती करते हैं तो वे भी हरी और सूखी दोनों तरह की मिर्च बेचकर अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मिर्च की फसल में कीट और रोगों का ध्यान रखना जरूरी होता है, समय पर दवा और उचित देखभाल से अच्छी पैदावार ली जा सकती है।
1: और देखो अखिलेश भैया, ये बात ही मसाले वाले की, लेकिन हम अपने किसान साथियों को बता दें कि प्रमाणित और अच्छी गुणवत्ता वाले बीज को ही प्रयोग करें। इनसे क्या होता है, जो पौधन की वृद्धि होती है वो अच्छी होती है और उत्पादन भी बहुत अच्छी तरीका से रहता है। जाके अलावा समय पर सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण करें तो जो खेत को साफ करने से पौधन को विकास बेहतर होता है और अच्छी पैदावार भी मिलती है और उत्पादन भी उनको बढ़िया मिल जाता है।
0: और साथ ही भैया अगर हम बात करें उर्वरकों की, तो मिट्टी की जांच के आधार पर अगर हम उर्वरकों का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो अनावश्यक खर्च है वो भी कम होगा और हमारी जो है फसल भी अच्छी होगी।
1: बिल्कुल भैया, ये तो ही कुछ बात मसाले वाली फसलों से हमारे किसान साथी कैसे अधिक आय कमा सकते हैं। और अब देखो अखिलेश भैया, बिल्कुल कार्यक्रम में बहुत अधिक समय ना है, लेकिन चलत चलत आप बता दो कि कल के कार्यक्रम में क्या काम।
0: कल भैया एक चर्चा सुनवाई जाएगी नए रोपित पौधों की देखभाल, साथ ही सुनवाई जाएगी भेंट वार्ता, सफल महिला कर सकते भेंट, लोकगीत सुनवाया जाएगा नीली मोरी गोटी, आवाज होगी सोनिका व अमित कुमार की, कृषि संकेत कार्यक्रम में बायो संयंत्र लगाने हेतु सरकारी सहायता, और साथ ही सुनवाया जाएगा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम और दिलवाई जाएगी मौसम की जानकारी।
1: देखो अखिलेश भैया, मौसम की जानकारी तो हम आज अपने किसान साथियों को दे दें कि कल मौसम कैसो रहने की संभावना है। कल अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है और हवा की दिशा पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा से 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा की गति रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और अखिलेश भैया एक बात और बता दें कि हमारे किसान साथी इनको उम्मीद रहती है कि कल कुछ हल्की फुल्की बारिश होने की भी संभावना कहीं कहीं बताई जा रही है। तो जो तो हो मौसम को हाल, और अब देखो कार्यक्रम में बिल्कुल समय ना है तो अब दोनों भैया कर लें राम राम, राम।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कानून और हम। कार्यक्रम में आज हम सुनवा रहे हैं अधिवक्ता इशरत सुल्ताना से की गई वार्ता। विषय है पॉक्सो एक्ट, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। प्रस्तुति अवधेश कुमार गौतम की है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम कानून और हम में आपका स्वागत है। मैं अवधेश गौतम बना रहूंगा आपके साथ इस कार्यक्रम में, और आज का हमारा विषय अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है। आज का हमारा विषय है पॉक्सो एक्ट, अर्थात प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यानी कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं अधिवक्ता इशरत सुल्ताना जी। मैडम, मैं कार्यक्रम में आपका स्वागत करना चाहूँगा।
1: गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने विषय के बारे में संक्षिप्त जानकारी अभी दी है, तो ये विषय संवेदनशील होने के साथ साथ बेहद आवश्यक भी है। बच्चों की सुरक्षा पर बात करने का अवसर मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है।
0: जैसा कि हमारे कार्यक्रम का विषय है पॉक्सो एक्ट 2012, मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि पॉक्सो एक्ट आखिर में है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी?
1: देखिए, पॉक्सो एक्ट के बारे में, उसके नाम के बारे में आपने बता चुके हैं आप। अब इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पहले जो दंड प्रक्रिया संहिता थी, IPC थी, तो उसमें प्रोविजंस थे सेक्सुअल ऑफेंस के अगेंस्ट, लेकिन वो बच्चों के लिए स्पेसिफिक नहीं था।
0: जी,
1: ये

0: क्रिया पर आधारित है।
1: मैडम, जैसा कि आपने जिक्र किया कि यह पूरा का पूरा कानून चाइल्ड फ्रेंडली प्रक्रिया पर आधारित है, हम जानना चाहेंगे और हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि ये चाइल्ड फ्रेंडली प्रक्रिया क्या है।
0: चाइल्ड फ्रेंडली का मतलब इस एक्ट के संदर्भ में यह है कि ये कानून की पूरी प्रक्रिया जो है बच्चों के लिए आसान बनाने की कोशिश की गई है
1: जी,
0: और यही इस कानून की सबसे बड़ी ताकत है। और इसके संबंध में जो प्रोविजन है वो खास तौर से ये है कि जैसे धारा 24 है,
1: जी
0: तो अगर कोई पीड़ित बच्चा है उसकी कोई कंप्लेंट वो करता है
1: जी
0: तो बच्चे से जो भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा
1: जी
0: उसके लिए उसे या तो उसके घर पर
1: जी
0: या उसकी पसंद की कोई जगह, सुरक्षित जगह,
1: जी
0: वहां पर उससे पूछताछ की जाएगी, उसके बयान लिए जाएंगे, उसे पुलिस स्टेशन
1: नहीं
0: नहीं
1: बुलाया
0: बुलाया
1: जाएगा।
0: जाएगा।
1: पूरी तरीके से बच्चों के जो कन्वीनियंस है उसको
0: उसको ध्यान
1: पूरा
0: रखते
1: ध्यान
0: हुए
1: रखा
0: किया गया
1: गया
0: है।
1: जी
0: और कोशिश ये की जाएगी कि कोई
1: जी
0: महिला अधिकारी और वो भी बिना वर्दी के, क्योंकि आमतौर पे एक मनोवैज्ञानिक चीज होती है,
1: जी
0: वर्दी देखकर बड़े
1: वर्दी
0: बिटर
1: देखकर
0: जाते
1: जी
0: हैं, तो मासूम बच्चे तो बहुत
1: जी
0: कोमल होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, तो इसलिए ये प्रोविजन किया गया है कि वो महिला अधिकारी जो होंगी सब इंस्पेक्टर रैंक की, वो बिना वर्दी के होंगी।
1: जी
0: और पूछताछ के दौरान बच्चा जिस पर भी विश्वास करता है, चाहे वो उसके अभिभावक हो या कोई भी जिस पर वो विश्वास करता है, वो अपने साथ रख सकता है उन्हें।
1: मैडम, किस तरह के अपराध इस कानून के अंतर्गत शामिल हैं?
0: गौतम जी, ये एक्ट दुष्कर्म की पारंपरिक परिभाषा से आगे बढ़कर हर तरह के यौन उत्पीड़न को अपराध मानता है और इस कानून में अपराधों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से परिभाषित किया गया है। कुछ हैं जो बहुत ही ज्यादा गंभीर स्तर
1: जी
0: के
1: जी
0: अपराध हैं, वो आते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट
1: जी
0: सेक्शन 3, इसमें रेप वगैरह के अपराध जो हैं कवर होते हैं। और इसका भी एक एग्रीवेटेड फॉर्म है, वो है सेक्शन 5 में। ये वो अपराध है कि जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिस पर उस बच्चे की किसी ना किसी तरह से जिम्मेदारी थी।
1: जी
0: मान लीजिए वो अभिभावक है या वो कोई रिश्तेदार है, या बच्चा पुलिस थाने में किसी वजह से गया है तो पुलिस थाने का कोई अधिकारी है, या
1: जी
0: बच्चा किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, वहां का कोई डॉक्टर है, कोई चिकित्सा अधिकारी है, वो बच्चे के साथ अगर इस तरह का बिहेव करता है, उसका कोई सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो ये उसके लिए है। तीसरी है इसमें सेक्शन 11 में सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट का यह है कि बच्चे के साथ अवांछित यौन प्रकृति का कोई भी शारीरिक संपर्क या गलत तरीके से छूना, ये हालांकि कम गंभीर प्रकृति का है लेकिन ये भी काफी सीरियस माना गया
1: सीरियस
0: है।
1: माना गया है।
0: जी,
1: जी
0: और एक है पोर्नोग्राफी।
1: जी
0: पोर्नोग्राफी को बनाने में बच्चे का इस्तेमाल करना, उसकी कोई पिक्चर, कोई वीडियो, या बच्चे को कुछ अश्लील चीजें दिखाना, अश्लील साहित्य दिखाना, अश्लील वीडियो दिखाना, या उससे अश्लील बातें करना, ये सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में आता है। बस ज्यादा कानूनी शब्दावली इस्तेमाल किए इतना समझना पर्याप्त है कि कोई भी ऐसा कृत्य जो बच्चे की गरिमा, सुरक्षा या शांति को प्रभावित करे, ये उस कानून से पूरी तरह से कवर्ड है।
1: मैडम, इस अधिनियम के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग का काफी जिक्र होता है, ये अनिवार्य रिपोर्टिंग क्या है?
0: ये भी इस कानून का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है,
1: जी
0: मतलब कि आदेशात्मक है,
1: आदेशात्मक है,
0: आदेशात्मक
1: इसको
0: है,
1: मानना ही है।
0: इसको मानना ही है। और इसमें
1: जी
0: ऐसा है कि कोई शिक्षक, डॉक्टर, पड़ोसी या कोई भी व्यक्ति हो, उसे पता चलता है कि किसी बच्चे के साथ कोई इस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है या होने का संदेह भी है,
1: संदेह भी है।
0: तो उसे रिपोर्ट करना उसका कानूनी कर्तव्य है। नाबालिग बच्चे पे भी लागू होता है, कोई बच्चा है उसे लग रहा है कि किसी दूसरे बच्चे के साथ इस तरह से
1: जी
0: व्यवहार हो रहा है अनुचित, तो ये ड्यूटी है उस बंदे की, उस बच्चे की या उस व्यक्ति की कि उसकी रिपोर्टिंग करे। अब रिपोर्टिंग कहाँ करेंगे, इसके लिए पुलिस है, संबंधित थाना, निकटतम जो थाना है, चाइल्ड लाइन नंबर है 1098, या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, इससे संपर्क किया जा सकता है। और रिपोर्ट करने वाले के लिए एक सेफगार्ड इसमें यह दिया गया है कि उस व्यक्ति को जिसने रिपोर्ट किया है, जिसने सूचना दी है, उसकी गोपनीयता को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा।
1: मैडम, पॉक्सो एक्ट की आज हम बात कर रहे हैं, इसी के संबंध में अगर हम ऑनलाइन ऑफेंसेस की अगर हम बात करें तो किस प्रकार ऑनलाइन ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कवर किए गए हैं?
0: देखिए, इस एक्ट में ऑनलाइन ऑफेंस को इस तरीके से कवर किया गया है। मान लीजिए सोशल मीडिया पर बच्चे को कुछ अश्लील सामग्री सेंड करना,
1: जी
0: या किसी बच्चे की तस्वीर को या वीडियो को यूज करते हुए कुछ अश्लील कंटेंट बनाना, दिखाना या साझा करना, या अपने पास उसको सुरक्षित रखना, ये सभी चीजें जो हैं इस एक्ट के तहत अपराध हैं।
1: इस कानून के तहत सजा का क्या प्रावधान है?
0: गौतम जी, इस कानून के तहत सजा अपराध की गंभीरता के आधार पर तय होती है,
1: जी
0: जिसमें 3 साल से लेकर आजीवन कारावास व मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है। कम गंभीर यौन उत्पीड़न के लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान है, और गंभीर यौन हमले के लिए कम से कम 20 साल व अधिकतम उम्र कैद तक की कठोर कारावास का प्रावधान है। अगर बच्चा 12 साल से कम उम्र का है और उसके साथ रेप किया जाता है, तो इसमें

0: आरोपी को मौत की सजा भी दी जा सकती है।
1: मौत की सजा तक भी इसमें दी जा
0: जी
1: सकती
0: जी
1: है। अक्सर कहा जाता है कि कानून तो बन जाते हैं लेकिन उनको लागू करना काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है। पॉक्सो एक्ट की अगर हम बात करें तो क्या चुनौतियां हैं इस एक्ट को लागू करने में?
0: जी हाँ गौतम जी, कुछ चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है हमारा सामाजिक ढांचा,
1: जी
0: जहां पर आज भी अगर कोई बच्चा या बड़ा यौन अपराध से पीड़ित होता है तो इस तरह का एक माइंड मेकअप है सोसाइटी का कि उसी बच्चे को या उसी पीड़ित को शक की नज़र से देखा जाता है।
1: बिल्कुल
0: इसीलिए जो अधिकतर अभिभावक हैं या बच्चे हैं वो अपनी बात को कहने से झिझकते हैं,
1: झिझकते हैं।
0: रिपोर्टिंग कम हो पाती है
1: जी
0: सामाजिक दबाव और
1: जी
0: झिझक से। दूसरी बात यह है कि शिक्षा का स्तर अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा है कि जहां हर छोटा बड़ा अपराध जो है वो रिपोर्ट करे जाकर
1: जी
0: पेरेंट्स या बच्चे, उन्हें पता भी नहीं है। लेकिन हाँ ये बात है कि सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक संस्थाएं लगातार प्रशिक्षण जागरूकता पर ध्यान दे रहे हैं और सामाजिक संस्थाएं व मीडिया इतनी जागरूकता फैला चुके हैं कि स्थिति काफी पहले से बेहतर है। लेकिन ये एक निरंतर प्रक्रिया है और इसमें समाज की भूमिका महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल, इस प्रक्रिया में समाज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और समाज की अगर हम बात करते हैं तो परिवार और स्कूल समाज के महत्वपूर्ण अंगों के रूप में हम देख सकते हैं। परिवार और स्कूल की भूमिका बच्चों को सुरक्षित रखने में और बच्चों को जागरूक बनाए रखने में क्या हो सकती है?
0: बच्चों को हमें बहुत ज्यादा प्यार करना चाहिए।
1: जी
0: बच्चों को प्यार देंगे, भरोसा देंगे, वो आप पर भरोसा करें और आप उन पर भरोसा करें। तो अगर बच्चे के साथ कुछ गलत होता है तो वो आपसे जरूर शेयर
1: जरूर
0: करेगा
1: शेयर करें।
0: और
1: जी
0: ये एक बहुत बड़ी चीज है। आमतौर पे होता ये है कि बच्चे डर जाते हैं, उनके साथ कुछ गलत होता है, उन्हें ये लगता है कि अगर मैं अपनी बात बताता हूँ अपने परिवार में, अपने अभिभावक को, अपने माता-पिता को, तो कहीं मुझे ही शक की नजर से ना देखा जाए।
1: बिल्कुल, नॉर्मली जो फैमिलीज में ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं तब भी उनको काफ़ी डरा धमका कर रखा जाता है, जिसकी वजह से उनका उनके पेरेंट्स के प्रति जो कम्युनिकेशन है वो उतना
0: जी
1: खुला नहीं होता। हमें
0: जी
1: लगता है कि आज के समय में हमें अपने बच्चों को उतनी आज़ादी के साथ उतनी छूट देनी चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अपने अभिभावकों के साथ अपना कम्युनिकेशन स्ट्रांग कर पाएँ और खुलकर बोल पाएँ।
0: जी यही बात है कि बच्चे को, मैंने वही बताया कि बच्चे को प्यार दें, बहुत
1: जी
0: प्यार दें बच्चे को, जिससे वो बिल्कुल भी आपसे कुछ छुपाए ना।
1: जी
0: और ये बहुत बड़ी चीज है इस अपराध को रोकने, किसी भी अपराध को, किसी भी तरह
1: बिल्कुल
0: का यौन अपराध हो, वैसे ही कोई नॉर्मल अपराध हो, तो वो आपको बताया कर और वो आप पर भरोसा करें, आप उस
1: जी
0: पर भरोसा करें।
1: जी
0: परिवार और स्कूल जो हैं इस कानून के सबसे बड़े सहयोगी
1: जी
0: हैं, क्योंकि मैंने बताया पहले भी कि कानून खुद कुछ नहीं कर सकता
1: जी
0: जब तक उसे कोई इस्तेमाल करने वाला सही से ना हो।
1: जी
0: बच्चों से खुलकर बिना डर के संवाद बनाना, सुरक्षित स्कूल का वातावरण, क्योंकि स्कूल घर के बाद बच्चे जो ज्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं वो स्कूल में करते हैं,
1: जी
0: तो सबसे बड़ी बात तो कि स्कूल का जो कैंपस है वो सुरक्षित हो
1: जी
0: बच्चों के लिए। वहां के टीचर्स हैं उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए कि बच्चे के साथ संवेदनशीलता से व्यवहार करें, जो बच्चा उन्हें भी खुलकर कुछ बता सके अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तो बच्चों को ये विश्वास दिलाना कि वे अपनी बात बिना किसी हिचक के कर सकते हैं। गौतम जी, कानून दिशा देता है लेकिन सुरक्षा घर और स्कूल दोनों मिलकर करते हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा मैडम आपने। समय हमें समाप्ति की ओर इशारा कर रहा है और इस विषय पर आप हमें और हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: गौतम जी, मेरा संदेश बहुत ही सरल है। हर बच्चा सुरक्षित बचपन और सम्मानित वातावरण का हकदार है। पॉक्सो एक्ट सिर्फ दिशा देता है लेकिन सुरक्षा हम सब मिलकर करते हैं, परिवार के तौर पर, शिक्षक के तौर पर और समाज के तौर पर। अगर हम बच्चे की बात सुने, उस पर विश्वास करें और उसे सुरक्षित वातावरण दें, तो हम उसके जीवन में एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये विषय संवेदनशील है लेकिन जागरूकता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है, तो इसलिए हम सबको जागरूक रहना होगा।
1: निश्चित रूप से। श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हमारा विषय था पॉक्सो एक्ट, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। सरल अंदाज में बहुत अच्छे तरीके से हमें इस विषय पर जानकारी दी अधिवक्ता इशरत सुल्ताना जी ने। मैडम, आप कार्यक्रम में आई, इतने सरल तरीके से आपने इस टॉपिक पर जानकारी हमारे और हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद गौतम जी।
1: श्रोताओं, कानून और हम के अगले अंक में हम एक नए विषय और अधिवक्ता के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं अवधेश कुमार गौतम आपसे चाहूँगा अनुमति।

अधिवक्ता इशरत सुल्ताना से की गई वार्ता, विषय था पॉक्सो एक्ट, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम। प्रस्तुति अवधेश कुमार गौतम की थी। ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है और अब जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ कार्यक्रमों की।

0: अब से कुछ ही देर यानी 7:31 पर श्रोता सुन सकेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत गजलें कलाकार राजेंद्र मेहता व नीना मेहता के सुरों में। आप सबका फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गाता चल आप तक लाएंगे आज शाम 8:00। कार्यक्रम कवि गोष्ठी आप सुन सकेंगे आज रात्रि 9:30 में, जिसमें आप सुनेंगे शिव कुमार शर्मा चंदन, डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय, आशीष कुमार शर्मा और सतीश चंद्र मिश्र को। कार्यक्रम खेल दर्पण आप सुन सकेंगे रात्रि 10:00। रात्रि 10:30 पर फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम, जो कि आपके अनुरोध पत्रों पर आधारित होता है, गीतांजलि आप तक पहुंचाएंगे। सुनना ना भूलें रात्रि 10:30 पर। ये थी जानकारी हमारी केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के कुछ मुख्य कार्यक्रमों की।
1: जितना जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए योग,
2: उतना ही अनिवार्य है स्वच्छ जल का प्रयोग।
3: बस करना होगा जल का सदुपयोग।
2: पानी बचाओ जीवन बचाओ। ये है आकाशवाणी रामपुर, जिसे सुन रहे हैं आप मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज और FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर।
0: और अब जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कल के कुछ कार्यक्रमों की। कल यानी 8 जुलाई 2026 दिन बुधवार, दिन की शुरुआत होगी भक्ति संगीत के दैनिक कार्यक्रम वंदना के साथ प्रातः 6:05 पर। कल प्रातः 6:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आज का चिंतन, जिसका शीर्षक होगा मानव सृष्टि। कार्यक्रम स्वास्थ्य संदेश श्रोता सुन सकेंगे 6:35 पर। कल प्रातः 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान, अमृत काव्य कलश कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल प्रातः 7:00। कल प्रातः 9:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग के अंतर्गत गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत आप तक पहुंचाएंगे कल प्रातः 9:50 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कल के कुछ कार्यक्रमों की।
4: हमने अपनाई है एक नई संस्कृति, उपयोग करो और फेंक दो।
2: सामने हैं इस संस्कृति के विनाशकारी परिणाम, प्लास्टिक कचरे और पॉलीथीन के बड़े बड़े ढेर।
5: रेलवे लाइन हो या सड़क का किनारा, हर जगह प्लास्टिक कचरे का नजारा। ये

0: प्लास्टिक कचरा खासकर पॉलीथिन पैदा करता है नालियों और डिस्पोजल पाइपों में अवरोध,
1: और हमें अब भी नहीं हो रहा आने वाले संकट का बोध।
0: जागिए और जगाइए,
2: पहले तो कभी न नष्ट होने वाली प्लास्टिक को अपनी जिंदगी से हटाइए
1: और फिर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की समुचित तकनीक अपनाइए।
0: हर परिवार को लेना होगा संकल्प, पॉलीथीन का छोड़ना होगा विकल्प।
3: से नो टू प्लास्टिक।
4: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 7:18 हुए हैं। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

0: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय को बताया निर्दोष, कहा कार्यप्रणाली में हुई चूक, दोषियों को मिलेगी सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाकर विकास को दी गति। राज्य में वृक्षारोपण महाभियान के तहत 12 जुलाई को लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री ने अभियान को जवाबदेही के साथ संपन्न कराने के दिए निर्देश। और लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा है कि मंदिर में चढ़ावा गबन मामले के बाद भी दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने पूरे प्रकरण में ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय को निर्दोष बताया है। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कार्यप्रणाली में उनसे असावधानी जरूर हुई।
1: 32 वर्षों से जानता हूं और इसलिए ऐसी कोई लिप्तता उनमें होगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता हूं। लेकिन कार्य पद्धति के बारे में वे स्वयं असावधान रहे, ये बात तो माननी ही पड़ेगी।
0: श्री गिरी महाराज ने कहा कि जो कुछ हुआ है वह निगरानी में कमी और सावधानी न बरतने का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय होगा और दोषियों को दंड मिलेगा।
1: ये सारा जो हुआ यह निग्लिजेंस का परिणाम है, यह निगरानी न रखने का परिणाम है, सावधान न रहने का परिणाम है। हम लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तो भी हो ही जाना चाहिए, यह निश्चय ट्रस्ट ने किया है। बिल्कुल ठीक बात है, न्याय होगा, न्याय होना चाहिए और जो अपराधी है उनको दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत गहरी चोट उन्होंने सारे राम भक्तों के अंतकरण पर की है।
0: इस मामले में श्रीराम जन्मभूमि न्यास के महासचिव रहे चंपत राय ने एक पत्र में कहा है कि वह एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब देंगे। वहीं मंदिर में चढ़ावा गबन मामले की जांच में अब पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। पुलिस ने अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की एक सप्ताह की कस्टडी रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने तीनों आरोपियों की 18 घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आज सुरक्षा, सुशासन और रोजगार का एक मॉडल स्थापित हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह बात आज प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 111 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने अपनी कार्यशैली से विकास को गति दी है।
2: ये वही प्रदेश है, हमने ये डबल इंजन की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने कोई अलग से नहीं किया। तंत्र वही, लोग वही, राज्य वही, केवल कार्य करने की स्टाइल बदली है। हर गरीब को उसका हक मिले, हर नौजवान का रोजगार पर अधिकार है, हर अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ मिले।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुल्तानपुर को 819 करोड़ रुपए से अधिक की 99 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कनेक्टिविटी सुधार कर पूर्वांचल को विकास से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जनता जब अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल बनता है, और जब सुरक्षा का माहौल होता है तो प्रगति को गति भी मिलती है, जिससे विकसित भारत की संकल्पना को मजबूती मिलती है।
2: अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है, सुरक्षा का माहौल जब खड़ा होता है तो विकास भी होता है और आवागमन के लिए अच्छी सड़कें बनती हैं। ये अच्छी सड़कें केवल कनेक्टिविटी का आधार नहीं है, हमारी प्रगति का भी आधार बनता है।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री ने वाराणसी पहुंचकर कानून व्यवस्था, विकास परियोजनाओं और बारिश के मद्देनजर संभावित बाढ़ को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। प्रदेश में वृक्षारोपण महाभियान के तहत 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। हरियाली का यह उत्सव जन सहभागिता से मनाया जाएगा। अभियान को लेकर आज वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने राज्य सरकार के मंत्रियों संग बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने बैठक में कहा कि 12 जुलाई को सभी विभागों के सहयोग से पूरे प्रदेश में पौधरोपण महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें केंद्र, प्रदेश सरकार के विभागों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, स्कूलों, कॉलेजों की सहभागिता रहेगी। उन्होंने बताया कि नोडल वन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधे लगाएगा। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण महाअभियान 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि 12 जुलाई को प्रस्तावित वृहद वृक्षारोपण अभियान को पूरी तैयारी, समन्वय और जवाबदेही के साथ संपन्न कराया जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का आज 24वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि छात्रों को अपनी योग्यता पर भरोसा रखकर राष्ट्रहित में कार्य करने की जरूरत है। दीक्षांत समारोह में कुल 83 छात्रों को 84 पदक दिए गए। वहीं 62,537 छात्रों को डिग्री और 52 छात्रों को पीएचडी अवार्ड भी प्रदान किए गए। प्रदेश के होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज वृंदावन में बताया कि प्रदेश के कैबिनेट ने होमगार्ड स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों के लिए 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार होमगार्ड्स विभाग में तैनात अवैतनिक अधिकारियों को भी इस सुविधा के दायरे में लाया गया है।
4: एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। होमगार्ड के जवानों के लिए हर थाने में 2 रूम की व्यवस्था रहेगी, एक रूम लड़कियों के लिए, एक रूम लड़कों के लिए। होमगार्ड और अवैतनिक हमारे पदाधिकारी सभी के परिवार को कैशलेस की व्यवस्था से जोड़ा है। आसमान की तरह 5 लाख रुपए की इलाज की व्यवस्था हमारे होमगार्ड जवान, कल ही कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हुआ। ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं होमगार्ड विभाग के लिए सभी।
0: कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज मिर्जापुर में बहुउद्देशीय खाद बीज और प्रसार केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक संसाधनों और तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है।
5: 20 लाख रुपए के लगभग लागत से यहाँ पर किसान कृषि कल्याण केंद्र बनाया गया है। प्रदेश के भीतर लगभग 380 स्थानों पर हम लोग कृषि ब्लॉक विकास खंडों में अपना रहे हैं, जिसमें से एक पहाड़ी ब्लॉक मिर्जापुर जनपद के भीतर आज सुबह का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। इतना भव्य भवन कभी भी किसी सरकार ने किसानों के बैठने के लिए नहीं दिया।
0: हॉकी इंडिया ने ओमान के मस्कट में 20 से 25 जुलाई तक आयोजित होने वाली मेंस यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 से पहले राष्ट्रीय शिविर के लिए उत्तर प्रदेश के 5 खिलाड़ियों को चुना है। इन खिलाड़ियों के नाम शाहरुख अली, राहुल यादव, केतन कुशवाहा, रोमित पाल और प्रहलाद राजभर हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज सुबह से मौसम में बदलाव देखने को मिला। राजधानी लखनऊ समेत फरुखाबाद, शामली, बिजनौर, जौनपुर, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़ समेत कई स्थानों पर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कल राज्य के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर में चढ़ावा गबन मामले में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने चंपत राय को बताया निर्दोष, कहा कार्य प्रणाली में हुई चूक, दोषियों को मिलेगी सजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास, कहा डबल इंजन सरकार ने प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाकर विकास को दी गति। राज्य में वृक्षारोपण महाभियान के तहत 12 जुलाई को लगाए जाएंगे 35 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री ने अभियान को जवाबदेही के साथ संपन्न कराने के दिए निर्देश। और लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में वर्षा का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। शाम के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कलाकार राजेंद्र मेहता और नीना मेहता के स्वरों में कुछ गजलें। आइए सुनते हैं उनकी पहली गजल।

0: भी आजादी भारत की अलामत है, अपना तिरंगा भी अहिंसा की निशा में। उर्दू हो वो हिंदी हो वो इंग्लिश हो कि संस्कृत, कोई भी नहीं गैर मोहब्बत की ज़बान में।
1: आइए हिफाजत करें अपनी विरासत की
0: और मोहब्बत करें अपने वतन से।

0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज आप कार्यक्रम में सुन रहे हैं कलाकार राजेंद्र मेहता और नीना मेहता के सुरों में गजलें। आइए सुनते हैं उनकी अगली गजल, पर उससे पहले ये संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424242।

ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गाता चल।

गीत गाता चल सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी रोहित कुमार कुकरेती का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पूरे परिवार के साथ सुन रहे होंगे अपने रेडियो सेट पर आकाशवाणी रामपुर से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रमों को, और खास तौर से ये आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम गीत गाता चल। कार्यक्रम में आइए जानते हैं पहला नगमा कौन सी फिल्म से है। पहला नगमा है फिल्म मेट्रो इन दिनों से, जिसके गायक कलाकार हैं पापोन, और इस नगमे को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। लालमाता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से अनुरोध करता है हर्षिता रामेश्वर, परमेश्वर मीनाक्षी कान्हा, श्रीमती मनोहर बाई बागरी, प्रभुलाल बागरी, बागरी मोहल्ला रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से नैना सत्यनारायण, कपिल, शुभा, फरदी भाई और परिवार के सभी सदस्य। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शाह, अजय कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री गुप्ता और पेहरा बाजार झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जिया, टूशी आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, मुन्नी

टुक टुक गोहाणकर, आकार हाइट्स बहादुर नागपुर से वैशाली शैलेश गोहाणकुर, सुमित गोहाणकर, कुमारी ध्वनि इसी गीत को मनकरा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगैना बरेली उत्तर प्रदेश से सुना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। बेनी सिंह सागर, पन्नी लाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह हितैष सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता दिव्या भारती और रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती, खनक शगुन सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रताप सिंह। मोताला महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनना चाहते हैं विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर। तो लीजिए आप सभी के अनुरोध पे आइए सुनते हैं फिल्म मेट्रो इन दिनों से पापा उनके स्वरों में ये गीत।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत कथा चल। कार्यक्रम का अगला गीत विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक के स्वरों में, फिल्म का नाम है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। इस गीत को सुनने की आकांक्षा रखते हैं आप सभी श्रोता। छत्तीसगढ़ महासमुद्र से कलीम आसमा डोम, सलीम आसमा, यूसुफ आसमा डोम, यूसुफ

चांदनी चौक बिहार से सरफुद्दीन, फातिमा, डब्ल्यू वी सोनम वली, बिहारी कॉलोनी महासमुद से याकूब आसमा, जेल रोड मथुरा से सरफुद्दीन सोनम वली बेलदार, छठिया पोखरा डुमराव से फातिमा वली बेलदार, आसमा वली बेलदार, डब्लू वली बेलदार, सोनम वली बेलदार, बिहारी भवन दिल्ली से सरफुद्दीन वली कोटरिया और वल्ला वली कोटरिया, जेल रोड जालंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर, धर्मजीत फातिमा, सरगुजा मैनपाट से रेशमा थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा वसीम अकरम, जेल रोड झांसी से फखरुद्दीन अंसारी, फर्जी वली अंसारी, फर्जू वली और फर्जुद्दीन, गांव खावरी अव्वल से चौधरी राजवीर सिंह और चौधरी अव्याना कमवच, मिनिस्ट्री वाली रोड न्यू दिल्ली एरिया मोती नगर से हमारे श्रोता हैं कविता गौरव, अनिल मानसी, नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा पीहू, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू और पप्पी भाटिया, यतमाल महाराष्ट्र से संतोष और विनोद खड़ से, जिला अमरोहा नई बस्ती फतेह खालसा से बहरुल सिद्दीकी, मोहम्मद आलम सिद्दीकी, मोहम्मद यूसुफ सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, फरहीम यासीन, गांव पाडर कवडा से अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री और धनश्री, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सिदारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदार रानी, हिना कौसर, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, इसी गीत को कोटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से सुना चाहते हैं मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, परिधि और मायरा सुरोशे, छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से राजेश और सुरेखा सेन, दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा, हिंगोली महाराष्ट्र से शाजी बोटके, श्रीमती नंदा बोटके, हनुमान बोटके और उत्तम जमदाड़े। तो लीजिए आप सभी के अनुरोध पे आइए सुनते हैं विशाल मिश्रा और हंसिका पारिक के स्वरों में फिल्म विकी विद्या का वो वाला वीडियो से ये गीत।

श्रोताओं, ये कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गीत कौन सा है। अगला गीत जो फरमाइश हमारे पास पहुंच रही है वो गीत है फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से। गायक कलाकार हैं सचिन जिगर, राघव चैतन्य और वरुण जैन। इस गीत को सुनने वाले हमारे अनुरोध करता है आप सभी निवासा खुट्टी महाराष्ट्र से बंडू लोहार पोपलगढ़, माया शिवांश चंद्रकला पोपलगढ़ और देवीदास पोपलगढ़, शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति, प्रहलाद राजेंद्र और सूरज कुशल वर्मा। करमवीर हाउस बूचो कैंचियां भटिंडा पंजाब से परहीम सिंह जौड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत। ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार, शेख शगीर, शेख वजीर, सोहेल शेख, सैयद तहमूर, शामिर खान और अजलान। गांधी समाधि रोड रामपुर से हाजी गफ्फार खान, रजियान खान, सिमरन खान, संदीप सक्सेना, शहनाज बाबू अंसारी, हबीब अहमद इदरीसी, इरफान खान और पक्के बाग से पम्मी। छटिया पोखरा डुमराव से डब्लू वली बेलदार, आसमा वली बेलदार और सोनम वली बेलदार। बिहार भवन दिल्ली से सरफुद्दीन वली कुटरिया, वली वल्ला वली कुटरिया। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान फारिया। बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, सरफराज सरफुद्दीन, सुहाना अजान अबान और पूरा परिवार। मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सैनी। नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना आरिज वसीम, नदीम शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा। कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकट परवीन। तो लीजिए आप सबके अनुरोध पे सुनते हैं फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया से वरुण जैन, सचिन जिगर और राघव चैतन्य के सुरों में ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाता चल। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला गीत जो हम सुनने वाले हैं वो है फिल्म डंकी से। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह। इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने बिहारी कॉलोनी महासमुद्र से याकूब आसमा, फकीर जेल रोड मथुरा से सैफुद्दीन और परिवार के लोग, ग्राम कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन अक्सर, नाजिया हफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब, काट रोड लदावली से इस गीत को सुना चाहते हैं अजीत कसाना, माया देवी ऋतिक और आदित्य कसाना, जेल रोड जलंधर से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर और धर्मजीत साथ में फातिमा, वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शुएब खान, सरगुजा मेन पार्ट से रेशमा थापा, सोनम थापा और परिवार के सभी सदस्य, गनगोला दातागंज जिला बदायूं से इशरत खान, शायरा रहूब खान, साबरीन शाबाश, शैफ ईशान, आजम खान और अरहान, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल काजल, मानवी लक्ष्य, मोहिनी बलवीर सिंह और परिवार के सभी सदस्य, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल और कुणाल मेहरा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ, साइना, निवान, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सापले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, बीरड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री डोमड़े वैष्णवी, चंचल अर्जुन गवनेकर और धीरज सवासेरे। तो लीजिए आइए सुनते हैं आप सभी के अनुरोध पर फिल्म डंकी से अरिजीत सिंह के स्वरों में ये गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गाथा चल। कार्यक्रम में अगला गीत फिल्म एनिमल से गायक कलाकार हैं विशाल मिश्रा और इस गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता। बलहर शाह से सूरज ढोन लौंढे, प्राची एकलव्य लौंढे, ग्राम आनंद गांव से सुनना चाहते हैं आप सभी श्रोता इसी गीत को। शिंदे परमेश्वर, कावेरी शिंदे, प्रहलाद शिंदे, स्वाति वैष्णवी और सभी शिंदे परिवार के सदस्य। वरवट वकाल बुलडाणा से नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या और जय हागे। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सईद भाई, सूफियान अनस, हसनैन, अल्फिया और आहिसा। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनाबुद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड गोगावा से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी। ग्राम चौहलदा बागपत से संजय ढींगिया अमन और अपार ढींगिया। चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा, राजा संगीता रानी, पप्पू महक, सुनीता अर्जू, हसमुख लाल, बुलबुल संजीव और परिवार के सभी सदस्य। बाजार रोड मुंगी सापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, सबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजी सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह। इसी गीत को जलालाबाद वेस्ट से सुनना चाहा है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और नमिता होजा ने। धामण गांव जिल्हा बुलडाणा महाराष्ट्र से अनुरोध करता है भागवत देठे पाटिल, श्रीमती लक्ष्मी, समर्थ दादा, कुमारी सानिका, देठे पाटिल और भागवत। संगमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगड़कर, दिशांत कुमार सिंगड़कर और अर्पिता जी। बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत, चेतन नहाटा, दिशा और खुश मूणत। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश का ये गीत जो कि

गायककार हैं नीति मोहन और विशाल मिश्रा। इस गीत को सुनना चाहे आप सभी श्रोताओं ने। राजद्वारा रोड मीठा कुआं रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित, अभय, रिया और आरुष। गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार हुड्डी, प्रमोद कुमार और समस्त परिवारगण। नवाशहर पंजाब से गगनदीप, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, वामिका और वाणी। जिला मुरादाबाद, ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश, हमजा और गुलशन साहिबा। जिला अमरोहा, नई बस्ती, पतेली खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आलम, मोहम्मद सिफान, मोहम्मद यूसुफ, अनाबिया बेटी, अलीशा, शकील, सुदेश चौहान और मोहम्मद यासीन अंसारी। जनकपुरी, सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस। छत्तीसगढ़, महासमुद्र से कलीम आसमा, सलीम आसमा, यूसुफ, चांदनी चौक बिहार, सरफुद्दीन, फातिमा, सोनम व डब्लू वली। हिंदुस्तान रेडियो मित्र, पलेरा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। छत्रपति संभाजीनगर, महाराष्ट्र से अनिल कुमार वोटके, गोटके, वैशाली, अनिल, प्रजक्ता, वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश। ग्राम करेली, पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर, अब्रार हुसैन, मुन्ना भाई, आशिक हुसैन। बिहार स्टेट, डुमराओं से वलीउल्ला अंसारी, छत्तीसगढ़ से प्रभा और गोरैया से अशोक जाटव। भाटापारा, छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह झाबला, लोकेश जोशी।

ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली ज़िला बरेली से शारून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम और डीजे प्रधान। बटिंडा रोड मंडी डबाली से राजेंद्र नागर, रंजू नागर, मोहित, लक्की, तानिया और

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरल में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन

0: सकता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास शांति स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा समुद्री सुरक्षा व्यापार डिजिटल प्रौद्योगिकी शिक्षा एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु आया हूं। वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में क्यूएस रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
5: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
6: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले तीन वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन

0: उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
1: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
2: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मॉनसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashwani and I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of green ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after landslide hits Wayanad tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India over next 4 days. And in men's cricket, India to take on hosts England in the third T20 international of the 5-match series in Nottingham tonight. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called for a stronger India-Indonesia strategic partnership, saying it will contribute not only to the prosperity of the two nations, but also to the regional and global peace and stability. Addressing the Indonesian Parliament in Jakarta, Mr.

0: Cricket, India will take on hosts England in the third T20 international of the five-match series at Trent Bridge in Nottingham tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. England defeated India by 4 wickets in the second T20 match on Saturday in Manchester. The first match was washed out due to rain. In the Wimbledon tennis, world number one and defending champion Jannik Sinner has stormed into men's singles semi-final, beating Jan Lennard Struff of Germany in London this evening. In women's singles, Coco Gauff advanced to the semi-finals, defeating fellow American Jessica Pegula in a thrilling quarter-final match. And in FIFA World Cup, defending champions Argentina will take on Egypt in the round of 16 match in Atlanta tonight. The match will start at 9:30 p.m. Indian time. Later in another round of 16 clash, Switzerland will face Colombia in Vancouver at 1:30 a.m. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi addresses Indonesian Parliament, says India stands for freedom of navigation in the Indo-Pacific and follows the path of development, not expansionism. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari asserts ethanol blending program is scientifically proven and delivered significant economic and environmental benefits. Home Minister Amit Shah launches mission to plant 70 lakh saplings in Delhi, over 6,000 hectares of Green Ridge area to be developed into forest land. 3 persons killed and 6 go missing after a landslide hits Wayanad Tunnel construction site in Kerala. IMD forecasts heavy rain in several parts of North and South India. And in men's cricket, India take on hosts England in the 30-20 international of the 5-match series in Nottingham tonight. That is all in the news at night. Good night.
1: Adab, ye Akashvani hai. खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीकशुदा है और इससे अहम इक्तसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। आईएमडी ने आइंदा 4 दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ शिमाली और जनूबी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंगहम में 5 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामिल है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। आज दोपहर जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट के एक मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती शराकतदारी को उजागर किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया मजबूत किलीदी शराकतदारी पर यह कहते हुए जोर दिया कि इससे न सिर्फ दोनों मुल्कों की खुशहाली में तआवुन हासिल होगा बल्कि इलाकाई और आलमी अमनो इस्तेहकाम भी मजबूत होगा। जकार्ता में इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के दरमियान ताल्लुकात सदियों पुराने हैं और दोनों मुश्तरका अकदार बाहमी एतमाद और मुस्तकबिल का एक मुश्तरका नजरिया रखते हैं। वजीर आजम ने कहा कि भारत तरक्की अमनो इस्तेहकाम और खुशहाली में यकीन रखता है। वजीर आजम ने दिफा बहरी सलामती तिजारत डिजिटल टेक्नोलॉजी तालीम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अहम मादनियात में मजीद इश्तराक पर जोर दिया। उन्होंने यूपीआई समेत डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे को वसत देने के सिलसिले में इश्तराक की जरूरत पर भी जोर दिया। वजीर आजम ने अवाम से अवाम के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाए जाने की जरूरत को भी उजागर किया। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तरीकेकार के जरिए इंसदादे दहशतगर्दी के लिए करीबी तौर पर मिलकर काम कर रहे हैं।
3: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया

0: दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
1: बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय मईशत आलमी तरक्की में एक अहम रोल अदा कर रही है। आज शाम इंडोनेशिया के जकार्ता में वहां आबाद भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत

0: था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं। भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।
1: वजीर आजम मोदी को आज एक रस्मी तकरीब के दौरान इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुबियांतो से, इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज द बिंतांग आदिपूर्ण से सरफराज किया गया। वजीर आजम मोदी ने इस एजाज के लिए तशक्कुर का इजहार किया और इसे भारत के अवाम को वक्फ किया।
0: सबसे पहले मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए अपने मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज उनके आत्मीयता भरे निमंत्रण पर इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने आज कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर एक तस्दीकशुदा पहल है जिससे अहम इकतसादी और माहौलियाती फायदे हासिल हो रहे हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने तवानाई की यकीनी फराहमी, हुसूलियाबी और जेर जमीन ईंधन की दरामदात पर इन्हिसार को कम करने के लिए मुतबादिल बायो ईंधन को फरोग दिए जाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने कहा कि मुतबादिल ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से आलूदगी में कमी आएगी, ईंधन की दरामदात कम होगी, देही इलाकों में रोजगार के मौके पैदा होंगे और किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। जनाब गडकरी ने 14 किलोमीटर तवील जोजीला टनल, जम्मू कश्मीर कॉरिडोर में 36 सुरंगों, केदारनाथ रोपवे समेत अहम प्रोजेक्टों और कश्मीर से कन्याकुमारी तक वसत पा रहे सड़क राबते को भी उजागर किया जिनसे मुल्क में कनेक्टिविटी मुस्तहकम हो रही है और तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत समाजी और इकतसादी तब्दीली की खातिर एक अहम तरीकेकार होना चाहिए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। इस पहल का मकसद कौमी राजधानी में नबातियाती रकबे में इजाफा करना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि इस पहल का मकसद दिल्ली के माहौलियात को बदलना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली हुकूमत ने इस समत में मस्बत इकदाम किए हैं और 5000 हेक्टेयर रकबे को जंगलाती जमीन करार दिया है। जनाब शाह ने कहा कि मरकजी हुकूमत और दिल्ली हुकूमत ने अगले 4 साल के दौरान 6300 हेक्टेयर ग्रीन रिज रकबे को जंगलाती जमीन के तौर पर तैयार करने और उसका तहफ्फुज करने का अज़्म किया है।
2: रीच के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
1: जनाब शाह ने आज 300 इलेक्ट्रिक बसों का भी आगाज किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए दिल्ली के वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली हुकूमत राजधानी को सरसब्ज, साफ सुथरी और ज्यादा पायदार बनाने की समत में काम कर रही है। इस तकरीब में माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह संधू और दीगर सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति प्रोजेक्ट का आगाज किया जिसका मकसद 20 लाख किसानों और 20,000 से ज्यादा जरई कारोबारियों को बाइख्तियार बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जनाब चौहान ने विकसित भारत के नजरिए को हासिल करने के लिए ज़राअत खुशहाल गांव और खुशहाल किसान बनाने की जरूरत पर जोर दिया। वजीर ज़राअत ने मजीद कहा कि हुकूमत ने प्रगति प्रोग्राम के तहत 26,000 छोटे ज़रई कारोबारियों को तरबियत देने का फैसला किया है।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया

0: कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गांव में काम करते हैं और गांव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: देही तरक्की के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा के साथ एक मीटिंग की ताकि रियासत में विकसित भारत जी राम जी और दीगर देही तरक्याती प्रोग्रामों के नफाज का जायजा लिया जा सके। उन्होंने ग्राम सभा की जेर क्यादत मनसूबों में अवामी फंड्स के शफाफ इस्तेमाल और ग्राम चौपाल मॉडल की पेशरफ का भी जायजा लिया जिससे देही

0: तकरीबन 200 करोड़ रुपए इस्तेमाल हो चुके हैं। केरलम में आज शदीद बारिश के बाद वायनाड जिले के कल्लाड़ी के करीब एक जेर जमीन सुरंग की तामीर के दौरान मिट्टी के तोड़े खिसकने से 3 लोगों की मौत हो गई। जेर जमीन फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है और उन्हें मेपाडी के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दीगर 6 मजदूर अब भी लापता हैं और इनके मलबे के नीचे फंसे होने का खदशा है। फायर और बचाव खिदमात और कुदरती आफात से निमटने की एजेंसियों की टीमों के जरिए बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आइंदा 3 से 4 रोज के लिए दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरलम, माहे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में शदीद बारिश की पेशगोई की है। जनूब मगरबी मानसून आज गुजरात के बकिया हिस्सों और राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों की जानिब मजीद बढ़ गया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: IMD ने इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश के साथ साथ जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक में इस माह की 13 तारीख तक शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कारेकल और तेलंगाना में आइंदा पीर के रोज तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान है। दिल्ली से ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के ठाठरी इलाके में आज अलसुबह बादल फटने के बाद हुई शदीद बारिश के सबब कई मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। हमारे नामा निगार ने बताया कि किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि उन्होंने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा से बात की है और जिला इंतजामिया को मुतासर कुनबों को फौरी राहत और इमदाद पहुंचाने की हिदायत दी है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ जी यात्रा ने आज उस वक्त बड़ी हुसूलियाबी हासिल की जब सालाना यात्रा के 5वें दिन पवित्र गुफा के दर्शन करने वालों की तादाद 1 लाख से तजावुज कर गई। हमारे नुमाइंदे ने बताया कि आज सपहर 3 बजे तक 20,537 यात्रियों ने गुफा के दर्शन कर लिए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा है कि भारत बहरीन इश्तराक लगातार वसअत पा रहा है। डॉक्टर जयशंकर ने आज शाम बहरीन का अपना 2 रोजा दौरा मुकम्मल कर लिया। अपने दौरे में वजीर खारजा ने बहरीन के नायब वजीर आजम खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा के साथ मुख्तलिफ शोबों में भारत बहरीन दोतरफा तआवुन को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर भी अपने ख्याल का तबादला किया। शुरुआती इजाफे के बाद घरेलू इशारिये आज मनफी रुझान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स में 104 पॉइंट्स की कमी आई और ये 78,181 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 32 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई और ये 24,399 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के मिड कैप 100 में 0.3 और स्मॉल कैप 100 में 0.5% की गिरावट देखी गई। मर्दों के क्रिकेट में नॉटिंगहम में ट्रेंट ब्रिज में 5 मैचों की सीरीज के तीसरे T20 आलमी मुकाबले में मेजबान इंग्लैंड का मुकाबला भारत से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। फीफा आलमी कप में आज रात अटलांटा में प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना का मुकाबला मिस्र से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे शुरू होगा। प्री क्वार्टर फाइनल के एक दीगर मुकाबले में वैंकूवर में भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे स्विट्जरलैंड का मुकाबला कोलंबिया से होगा। इससे कबल आज बेल्जियम ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से शिकस्त देकर फीफा आलमी कप के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली थी। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब किया। उन्होंने कहा कि भारत बहरुल काहिल में आजादाना नकलो हमल का हामी है और तौसी पसंदी की राह नहीं बल्कि तरक्की की राह इख्तियार करता है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने जोर देकर कहा है कि एथेनॉल की आमेजिश का प्रोग्राम साइंसी तौर पर तस्दीकशुदा है और इससे अहम इक्तिसादी और माहौलियाती फवायद बरामद हो रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का आगाज किया। 6,000 हेक्टेयर से ज्यादा ग्रीन रिज इलाके को जंगलाती इलाके के तौर पर वसअत दी जाएगी। केरलम में वायनाड में सुरंग के तामीराती मकाम पर चट्टानों के टुकड़े गिरने के बाद 3 अफराद हलाक हो गए हैं और 6 लापता हैं। और मर्दों के क्रिकेट में आज रात नॉटिंगहम में 5 T20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि

0: प्रतिभागी हैं, उनमें वरिष्ठ कवि श्री शिव कुमार चंदन जी रामपुर से और श्री कुमार आशीष जी बदायूं से, डॉक्टर श्रीमती प्रेमवती उपाध्याय जी मुरादाबाद से हैं और मैं हूं सतीश मिश्र अचूक पीलीभीत से। आज आप सबको हम लोग कुछ रचनाएं सुनाएंगे। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं कुमार आशीष जी को, जो बदायूं से आते हैं, अच्छे गजलकार हैं, गीत और मुक्तक सुनाएंगे आपको।
1: बहुत धन्यवाद। मैं गीत पढ़ना चाहता हूं, उससे पूर्व कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं, उसके बाद इस गीत का प्रारंभ करूंगा।
0: स्वागत है।
1: अदबो आदाब अजू दादू से

0: देखे। अगला बंद देखें
1: स्वागत।
0: के चालें शकुनी वाली चलती हैं माताएं,
1: जी वाह,
0: चालें शकुनी वाली चलती हैं माताएं, नग्न नृत्य को आतुर फिरती।

0: देखे।
1: मतलब बंदे के
0: जी
1: के झूठ को 100 100 बार मारते देखा हमने।
0: वाह वाह,

0: से देखे।
1: अभी आप कुमार आशीष जी से सुन रहे थे उनका सुंदर गीत। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शिव कुमार चंदन जी को। आप रामपुर से आते हैं और गीत मुक्तक छंद वगैरह काफी अच्छे सुनाते हैं श्री शिव कुमार चंदन जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: स्वर्ज मुखरित हुआ हास परिहास का। इसी के साथ मैं एक गजल पढ़ रहा हूँ। मीत चुप के से आ गया होता,
1: बहुत सुंदर।
0: मीत चुप के से आ गया होता दिल।

0: काश तू अब तू आ गया हो,
1: बहुत सुंदर,
0: काश तू अब तू आ गया होता, फिर नहीं हो ता कुछ गिला तुझसे, कुछ पता तो बता गया होता, कुछ

0: बहुत सुंदर बात।
1: शाखों पर लहराते पत्तों जैसे भी खुश रह लेना, जड़ कटने से हरा पेड़ भी कब जीवित रह पाता है। मतभेदों को तूल न देना, अवसर पाकर कह लेना, मतभेदों को तूल न देना, अवसर पाकर कह लेना। एक मुक्तक और।
0: जी जी स्वागत।
1: नाम अनेक तुम्हारे प्रभु जी,

हैं लदे तरुवर, फलों से हैं लदे तरुवर, झुके उनके भी सिर देखो निहारो पथनारों का। पिया जिसने विषमतम विष जगत को दे दिया अमृत, पिया जिसने विषम

देना है। और मातृशक्ति विराजमान है, एक माँ को समर्पित एक सवैया देखिए कि पुत भले यम दूत बनो पर आपन प्रीति की रीति घटाई कंस भयो।

और देखिए एक शिव जी को समर्पित एक गोरे ऐसे जीव का पूर तन पे है भस्म धूर नग्न तने और आप व्याघ्र छाल राजे हो भूत प्रेत रहे संग कंठ में पड़े भुजंग नंदी बाबा पीठ नाथ सर्वदा बिराजे हो माता गौरी संग आप देखने से कटे पाप दरस की आस खास मग्न प्रभु साजे हो नमन भवानी साथ कर दो दया हे नाथ आतुर अचूक कहाँ शिव जी बिराजे हो। कर्पूर गौरम का आपने श्लोक का अनुवाद सुना। अब देखिए महामृत्युंजय मंत्र का अनुवाद आपको एक सवैया में सुनाते हैं।

को आवई ही पास बनावहु खास हमें त्रपुरारी, बनावहु खास हमें त्रपुरारी। और एक देखिए, जो कोई धार्मिक आयोजन होता है तो नवग्रह शांति का मंत्र पढ़ा जाता है, उसका भी एक सवैया में अनुवाद देखिए कि इस महेश सुनऊ अजय आजू हरि संग देव त्रिदेव मनाऊ भानु शशि गुरु।

और शांति रहो स्वर भानु सदैव कबंध के बंध से त्रास न पावऊं। देखिए एक छंद क्या फायदा है कि बिन

आए छल्ले छंदी पेड़ रोप झगड़े के दृश्य को मिटाइए। प्राण वायु मिलती है खिलती है जिंदगी भी दूर रह प्रदूषण से मुक्त बन जाइए। प्राण वायु मिलती है खिलती है जिंदगी भी दूर रह प्रदूषण से।

गोमती माँ का उद्गम सुंदर डैम निराला। अब यहाँ बाइफरकेशन नहरों में जल भरता और बाघ हिरन जल जंगल में बिखरी सुंदरता। और देखिए कि मोहित चित्तक खूब करे अरु जीवन रक्षक है अति भारी। चूका सो बीचा है जंगल मध्य घुमावन हेतु है मस्त सफारी। होता मिलाप यहाँ।

और देखिए पीलीभीत क्यों आना चाहिए कि आइए श्रीमान फिर पीलीभीत शहर में, कान्हा वाली बांसुरी भी आपको बुलाती है, हिरणों की कूद फांद बाघ भी लुभा रहे हैं, बासमती की सुगंध दुनिया को भाती है, चूकना ने आप चूका वाइफर में आने को, सात झाल साई फन वादियां बुलाती हैं, देवामाला शारदा डैम की अनूप छटा, उद्गम से आदि गंगा गोमती बुलाती हैं, उद्गम से आदि गंगा गोमती बुलाती हैं। और देखिए यहाँ पे एक सप्त सरोवर भी बहुत अच्छा स्थल है जिसको सात झाल कहते हैं। देखिए क्या है कि सात झाल सा

0: जाल सप्त सरोवर नाम है, सात झाल सात ताल। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रामपुर से कवि गोष्ठी, जिसमें आपने भी रचना पाठ सुना, जो यहाँ हमारे प्रतिभागी कवि थे श्री शिव कुमार चंदन जी रामपुर से, कुमार आशीष जी बदायूं से, और डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय जी मुरादाबाद से, और मैं सतीश मिश्र अचूक पीलीभीत से। आप सबका धन्यवाद।
1: हम आकाशवाणी के रामपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल दर्पण, हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: DARPA.
1: Hail DARPA. DARPA.
2: खेल दर्पण में आज आकाशवाणी अयोध्या की प्रस्तुति के साथ बरसों पुराना आपका रेडियो मीत एजे अमरजीत सिंह और इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है सरस्वती पाठक। खेल प्रेमी श्रोताओं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। आइए पहले अयोध्या मंडल की स्थानीय खेल खबरों की ओर चलते हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में आयोजित दो दिवसीय पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का बुधवार 1 जुलाई को समापन हुआ। ये प्रतियोगिता विश्वविद्यालय के 28वें दीक्षांत समारोह की तैयारियों के तहत आयोजित की गई थी। विश्वविद्यालय के अटल बिहारी क्रीड़ा स्थल पर इस आयोजन में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में बालक एवं बालिका वर्ग के लिए कबड्डी, खो खो, बोरी दौड़ और लंगड़ी दौड़ का आयोजन किया गया। इसके अलावा बालक वर्ग के लिए गुल्ली डंडा और कंचा प्रतियोगिताएं भी शामिल थी। इन पारंपरिक भारतीय खेलों का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेल भावना, शारीरिक दक्षता और सांस्कृतिक विरासत के प्रति जुड़ाव बढ़ाना था। समापन समारोह में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। कुलपति डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि पारंपरिक खेल हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं और इनके संरक्षण से युवाओं को स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के प्रदर्शन की सराहना की और भविष्य में भी ऐसे आयोजनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक अधिकारी और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर प्रतिभागियों ने प्रसन्नता व्यक्त की और इसे विश्वविद्यालय की एक सराहनीय पहल बताया। अंडर 16 ओल्ड ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए आयोजित चार दिवसीय चयन ट्रायल के तीसरे दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। मकबरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में ट्रायल मुकाबले में अंबेडकर नगर की टीम ने सुल्तानपुर को 55 रनों से पराजित कर जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए अंबेडकर नगर की टीम ने निर्धारित ओवरों में 215 रन बनाए। टीम के बल्लेबाजों ने संयमित और आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा किया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुल्तानपुर की टीम 160 रन पर ही सिमट गई और मुकाबला 55 रनों से हार गई। क्रिकेट एसोसिएशन के जिला सचिव उमेर अहमद ने बताया कि अंडर 16 ओल्ड ट्रॉफी के लिए मंडल स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के चयन के लिए ट्रायल आयोजित किए जाते हैं। ट्रायल में अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर और गोंडा जनपद के खिलाड़ियों ने भाग लिया। चयनकर्ताओं की ओर से खिलाड़ियों के बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण कौशल का बारीकी से मूल्यांकन भी किया गया। अयोध्या में 8.84 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जो खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करेगा। इसके अलावा मकबरा स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्रीड़ा स्टेडियम के उच्चीकरण और नवीनीकरण के लिए भी राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अयोध्या के विकास खंड है रिंगटनगंज की ग्राम पंचायत ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और स्टेडियम की फिनिशिंग अंतिम चरण में है। इस स्टेडियम में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए मल्टीपर्पज हॉल, बाउंड्री वॉल, बोरिंग गार्ड रूम, पंप हाउस, सीसी सड़क, ओपन जिम तथा आधुनिक रनिंग ट्रैक जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं। इस क्षेत्र के युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने के लिए बेहतर मंच उपलब्ध होगा। स्टेडियम के शुरू होने से ग्रामीण क्षेत्र में खेल गतिविधियों को एक नया प्रोत्साहन मिलेगा और युवा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और अभ्यास की सुविधाएं प्राप्त होंगी। खेल दर्पण में अब हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम

0: वेट लिफ्टिंग, जूडो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, ये सब खेल और कुश्ती, ये सब गेम यहाँ पे
1: अभी
0: चल रहे
1: हाल
0: हैं।
1: ही में कौन सा लेटेस्ट खेल गतिविधि चल रही थी?
0: अभी अभी बिल्कुल बैडमिंटन खत्म हुई है 1 तारीख को,
1: जी
0: पूरा राज्य के बच्चे यहाँ आए हुए थे और उसमें से जो सिलेक्ट हुए हैं वो लोग नेशनल खेलने भी जा रहे हैं, तो इसलिए उस प्रतियोगिता का
1: एक
0: बहुत
1: ट्रायल हुआ था
0: महत्व,
1: उसका।
0: प्रतियोगिता कम ट्रायल था,
1: जी जी
0: एसोसिएशन द्वारा वो आयोजित की गई थी, क्योंकि यहाँ पर अपने खेल विभाग के अलावा अगर एसोसिएशन या क्लब्स या कोई भी आकाशवाणी भी चाहे तो अपने कोई प्रतियोगिता छोटी सी करा सकते हैं, तो कोई भी जना उसको कर
1: तो
0: सकता
1: जो बच्चे उसमें सिलेक्ट हुए वो कहाँ जाएंगे खेलने
0: है,
1: के
0: वो
1: लिए?
0: नेशनल नहीं जाएंगे,
1: नेशनल,
0: राष्ट्रीय स्तर पर
1: जी,
0: जाएंगे,
1: राष्ट्रीय स्तर
0: यूपी
1: पर
0: की तरफ
1: जाएंगे
0: से प्रतिनिधित्व करेंगे
1: बैडमिंटन में।
0: बैडमिंटन में। इसी प्रकार से अलग अलग गेमों में चलता रहता
1: जी,
0: है।
1: और इस स्टेडियम में कौन कौन से ऐसे खेल हैं जिसमें यहाँ नवोदित खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे वो अपने खेल को निखार कर, प्रोग्रेस करके, उसमें उन्नति करके अयोध्या मंडल का नाम रोशन करेंगे?
0: ये खेल तो जो मैंने आपको नाम बताया ये सर तो लोकल ही बच्चे इसको खेलते रहते हैं और बाहर के भी खेलते रहते हैं,
1: जी
0: साथ साथ ये स्टेडियम के अंदर 7 जो है गेमों के अंदर हॉस्टल है, और वो भी अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ सिर्फ बालिकाओं का ही हॉस्टल है, पूरे प्रदेश से हमारे 135 लड़कियाँ यहाँ पर रहकर खाना, उनकी सुविधाएं, ठहरना और सब चीज़ की दी जाती है, जिसमें हॉकी, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, तो कुश्ती और वॉलीबॉल, ये 7 गेम।
1: स्थानीय खिलाड़ियों के अलावा जाहिर सी बात है यहाँ जिले के आसपास के ग्रामीण अंचलों से या प्रदेश के बाहर के भी खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होंगे। ऐसे में क्या खिलाड़ियों को छात्रावास की भी सुविधा है यहाँ रहने के लिए?
0: 7 गेमों के अंदर यहाँ पर हॉस्टल है जिसमें हमारी बालिकाएं रहती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ बालिकाओं का हॉस्टल है, तो उसमें वो लोग कर सकती हैं, और इसका सिलेक्शन होने का प्रोसेस जो है जिला स्तर से शुरू हो जाती है, पहले जिला स्तर पे अपने सिलेक्शन होगा,
1: अच्छा,
0: उसमें से जो बच्चे सिलेक्ट होंगे वो मंडल पे जाएंगे, मंडल में जो सिलेक्ट होंगे वो फिर स्टेट में जाएंगे, फिर एक स्टेट में उनको 15 दिन का एक कैंप लगाया जाएगा, सेंट्रल कोचिंग कैंप कहते हैं,
1: जी,
0: उस 15 दिन बाद जो कोच होगा उसमें से फिर जितनी सीटें होंगी 2, 5, 7 वो बच्चे जो टॉप के होंगे उनको ले लिया जाता है, जिसको सरकार की ओर से रहना, खाना पीना सब चीज़ फ्री।
1: तो उसमें किन किन खेलों के लिए यहाँ पे छात्रावास है? क्योंकि सभी खेलों के लिए तो नहीं होगा।
0: हॉकी है, हैंडबॉल है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, एथलेटिक्स है, कुश्ती है, लगभग इसमें हर एक में 20 20 20 20 बच्चे रहते हैं, लड़कियां जो कि खेलेंगी या प्रैक्टिस करती हैं।
1: जी, छात्रावास में रहकर खिलाड़ी को अपने खेल कौशल को निखारना है तो उसे एडमिशन के लिए कौन कौन सी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं? एडमिशन के लिए उसे क्या कुछ करना होता है?
0: देखिए लोकल अगर आना चाहता है तो लोकल यहाँ पे केवल ₹200 रजिस्ट्रेशन फीस होती है
1: वार्षिक?
0: वार्षिक, वो करके कोई भी जना कर सकता है 18 साल से कम वर्ष का, और
1: जी
0: अगर 18 साल से ऊपर है वो लोग जो शौकिया खेलने आते हैं या अगर आप भी घूमने आना चाहेंगे या खेलना चाहेंगे तो उसमें ₹200 महीना उसको देकर
1: जी
0: यहाँ पर उसके अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं
1: जो
0: अपने आप,
1: स्पोर्ट्स की किट है वो वगैरह फ्री है सब?
0: नहीं वो सिर्फ उनको हॉस्टल के जो बच्चे होते हैं उनको होती है, या वो खिलाड़ी जो हमारे यहाँ मंडल में की ओर से राज्य स्तर खेलने जाता है तो उनको जाते वक्त में अयोध्या मंडल की एक किट उनको उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वो आगे जाके वहाँ पे खेलते हैं।
1: तो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर अयोध्या मंडल के किन किन खिलाड़ियों ने अभी हाल ही में प्रतिभाग किया, उसका क्या परिणाम रहा? अभी
0: सारे
1: हाल ही में कौन सी
0: नेशनल
1: टीम स्टेट लेवल या नेशनल गेम खेलने गई?
0: नेशनल में अभी जूडो में भी गए
1: अच्छा।
0: हैं, हॉकी भी जीतती रहती है, हॉकी तो अधिकतर कहीं ना कहीं से हमारा मेडल लेकर आती ही है यहाँ की, वॉलीबॉल से भी 2 3 लड़कियाँ इस बार सेलेक्ट हुई थी,
1: बच्चों के पेरेंट्स की ओर से आपको किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है?
0: उसी की जरूरत है, हम उस फिराक में लगे रहते हैं कि किस बच्चे के माँ बाप भी उसको सपोर्ट करते हैं,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: माँ बापों के सपोर्ट के बिना कोई नहीं बढ़ता था, जैसे कोच कोचिंग दे रहा है, हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं, खिलाड़ी भी खेलने जा रहा है लेकिन घर वाले खाना डाइट या उसका ध्यान नहीं दे रहे, या कोचिंग के समय पे उनके रिश्तेदारी में भेज दिया, घर पे आटा
1: जी
0: लेने भेज दिया, तो वो सब जो सपोर्ट होता है वो घर से बहुत जरूरी
1: कभी कभी जूडो में कहते हैं कि बहुत खतरनाक गेम है, उसको मत खेलो, ऐसा डरा भी देते हैं बच्चों
0: है।
1: को।
0: जूडो में तो सबसे पहले गिरना ही सिखाते हैं, जब गिरना
1: जी
0: आ जाता है उसके बाद फिर उनको चोट ही नहीं लगती,
1: जी जी
0: तो ऐसा कोई नहीं किसी भी खेल में चोट करना।
1: तो खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सक्सेना जी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत भी की गई भारत में। अगर हम अयोध्या और इसके आसपास के ग्रामीण अंचलों की बात करें तो इस मुहिम का कितना असर आप देख रहे हैं?
0: शुरुआत हो गई है असल में खेलो इंडिया की तरफ से, एक तो पहले एक जिला एक खेल करके एक स्कीम है जिसमें हम लोगों को एथलेटिक्स दिया गया, एथलेटिक्स में एक कोच है, उसमें 25 बच्चे उसमें सेलेक्ट करे गए, उनको किट और वो सब दी जाती है,
1: अच्छा।
0: किट है, जूते हैं, ब्रोजे, सब चीज़ उनको देके और वो लोग प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, तो वो लोग खेलो इंडिया के तहत आगे जा सकते
1: अगर कोई एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहता है तो
0: हैं।
1: उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, कितने घंटे अभ्यास उसको जरूरी है और डाइट किस तरह की होनी चाहिए?
0: सबसे पहले तो भगवान द्वारा जो आपका शरीर बना के भेजा है
1: जी
0: अगर वो सही स्वस्थ और उस तरह करके भेजा तो वो पहली बात तो वो स्पोर्ट्स के अंदर आ सकता है, और कई बार कोई दिव्यांग भी होते हैं तो वो भी उस चीज़ के अलग से उसके अंदर भगवान से कुछ गलती हो गई लेकिन फिर भी वो लोग उसके अंदर निकल आते हैं, तो इस पहले तो हमारा शरीर उस हिसाब से होना चाहिए, हर गेम के लिए अलग तरीके का शरीर चाहिए होता है,
1: जी
0: एथलेटिक्स के लिए पता तो गोला फेंकने

0: के लिए तगड़ा,
1: जी हाँ,
0: किसी में एजिलिटी ज्यादा है, किसी में स्पीड
1: हाइट
0: ज्यादा
1: वगैरह
0: है,
1: भी देखी जाती होगी।
0: हाइट है तो बास्केटबॉल वॉलीबॉल खेलेगा। तो इस तरह करके हर खेल के लिए अलग अलग अलग वो चलता है,
1: जी,
0: आपका शरीर होना चाहिए पर फिर उसके अंदर जुनून होना चाहिए। बहुत सारे
1: सबसे
0: चीजें
1: बड़ी ये
0: हैं,
1: चीज है कि
0: हाँ
1: जुनून होना
0: जुनून
1: चाहिए।
0: होना चाहिए उसके
1: अगर
0: अंदर, तो
1: जोश नहीं है तो फिर गेम
0: बिल्कुल
1: खेल
0: सही
1: नहीं
0: है।
1: पाएगा
0: हाँ, फिर
1: वो।
0: उसकी स्पीड, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, ये सब चीजें होंगी, वो
1: जी
0: धीरे धीरे डेवलप कर लिया।
1: अनिमेश जी, हमारे जो पारंपरिक ग्रामीण खेल हैं, खो खो, कबड्डी है, कुश्ती है, तीरंदाजी है, और ये सभी खेल मिट्टी से जुड़े हुए हैं,
0: जी।
1: तो इन प्रतिभाओं को आगे लाने और उनके खेल को निखारने का कितना प्रयास इस स्टेडियम में किया जा रहा है?
0: देखिए कबड्डी में भी है, यहाँ पर कोचिंग चलती है, एक महिला है वो कोच है। ऐसे ही हमारे कुश्ती भी चलती है,
1: जी
0: कुश्ती हमारे गद्दे पे होती है पूरे अच्छे से, कबड्डी भी गद्दे पे होती है नए तरीके से। तो ये सब हमारे यहाँ चल रहा है। अभी खो खो का नहीं है, लेकिन खो खो के पोल लगाए गए हैं, लेकिन यदि कोच नहीं है तो इसलिए बिना कोच के बच्चे प्रैक्टिस अपने आप
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: कम कर पा रहे हैं, तो ये कारण इसके है। बाकी हमने दो गेम तो पकड़ रखे हैं
1: चलिए, पूरी बातचीत में अगर मुझसे कोई भी बात छूट रही है तो आप
0: जी
1: उसमें ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: स्टेडियम के बारे में कुछ और आप विस्तार से बताना चाहें तो बता सकते हैं।
0: जिले में जागरूकता की बहुत जरूरत है, खास करके अयोध्या में,
1: जी
0: क्योंकि वही बात है, एक तो थोड़ा दूर है स्टेडियम
1: जी
0: हमारे शहर के उससे, तो हमारे आसपास के खिलाड़ी ज्यादा आते हैं।
1: जी
0: बस यही है कि माँ बाप जो भेजेंगे, जागरूकता रहेगी तभी वो आगे निकल सकते हैं, आ सकते हैं। अगर आएंगे ही नहीं स्टेडियम तो कोई बच्चा निकलेगा कैसे? तो
1: तो
0: ज्यादा से ज्यादा आए यहाँ
1: जी
0: पर आके खेले।
1: तो बातचीत खत्म करने से पहले एक बार फिर से हमारे श्रोताओं को बता दीजिए कि इस स्टेडियम में कौन कौन से ऐसे गेम हैं जिनकी ट्रेनिंग दी जा रही है।
0: कबड्डी है, क्रिकेट है, जैसे कबड्डी है तो कबड्डी हमारे मैट के ऊपर कराई जाती है, मिट्टी पे भी कराई जाती
1: जी
0: है,
1: जी
0: ये खासियत है। क्रिकेट जो है हमारा, इससे बड़ा स्टेडियम शायद ही कहीं, जैसे ग्रीन पार्क है
1: जी जी
0: इतना बड़ा है, जिसके अंदर हम अभी जल्द में रणजी भी कराएंगे। हॉकी जो है, हॉकी एस्ट्रो टर्फ पे खेला जाता है, बाकी सब जो
1: जी
0: मैदान में खेलते हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट ने एस्ट्रो टर्फ दे रखा है। हैंडबॉल ओपन कर दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हैंडबॉल जो है इंडोर है,
1: जी
0: सर्दी गर्मी बरसात कभी भी हॉल के अंदर कर सकते हैं। स्विमिंग पूल सब जगह एक होते हैं, हमारे यहाँ 3 स्विमिंग पूल है,
1: अच्छा
0: जो लर्निंग भी है और मेन भी है, ओलंपिक भी है, और डाइविंग पूल भी है। वेट लिफ्टिंग में छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, जूडो है
1: अभी जहां मैं इंटरव्यू कर रहा था हॉकी
0: जी
1: प्लेयर्स से,
0: जी
1: तो वहां देखा था मैंने, एस्ट्रोटर्फ भी लगी
0: ऐसे
1: हुई है,
0: हाँ वही
1: सारी
0: जो
1: सुविधाएं
0: जी
1: हैं।
0: वो पूरा सुविधा है उसके अंदर। तो वही चीज़ है कि अब जो मॉडर्न जमाने में जिस तरह चलना, जैसे एथलेटिक्स है
1: जी
0: सिंथेटिक ट्रैक पे होता है, तो हमारे सिंथेटिक ट्रैक है। अब मैदान वाला बच्चा जो मैदान में प्रैक्टिस कर रहा है उस ट्रैक पे दौड़ नहीं पाता है,
1: जी जी
0: लेकिन हमारे अयोध्या के लिए सौभाग्य है कि यहाँ के खिलाड़ी उसको ऊपर प्रैक्टिस करते हैं और आगे निकलते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम ढाबासिमर अयोध्या से क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी अयोध्या मंडल श्री अनिमेश सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आकाशवाणी अयोध्या की ओर से। ये थे हमारे साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ढाबासिमर अयोध्या मंडल के क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी श्री अनिमेश सक्सेना जी। आकाशवाणी अयोध्या पर तैयार किया गया खेल दर्पण कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। खेल दर्पण में आज आकाशवाणी अयोध्या की प्रस्तुति के साथ बरसों पुराना आपका रेडियो मीत एजे अमरजीत सिंह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ढाबासिमर अयोध्या में हमने कुछ खिलाड़ियों से भी बातचीत की जो वहाँ पर अलग अलग खेलों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम है?
2: प्रियांश यादव।
1: प्रियांश, आप यहाँ पर कौन सा गेम खेल रहे हैं?
2: कबड्डी सर।
1: और कब से आ रहे हैं यहाँ पर?
2: मैं 1 साल हो गया सर।
1: तो नेशनल लेवल पे भी आपने गेम खेला है?
2: यस सर।
1: कहाँ गए थे खेलने के लिए?
2: छत्तीसगढ़ सर।
1: और पूरी टीम के साथ गए होंगे आप?
2: यस सर।
1: तो क्या परिणाम रहा, कब गए थे आप?
2: जनवरी में।
1: तो ये बताइए, गेम्स तो बहुत से थे, आपने कबड्डी को ही क्यों चुना, ऐसा क्या था इसमें?
2: सर मुझे अच्छा लगा सर, अच्छा खेल
1: क्योंकि
2: लेता
1: अपनी
2: सर।
1: मिट्टी से जुड़ा हुआ
2: यस सर।
1: खेल है ना। आपका क्या शुभ नाम है?
3: राकेश यादव।
1: राकेश यादव जी, आप इस स्टेडियम में कहाँ से आ रहे हैं?
3: मैं अयोध्या से आता हूँ।
1: किसने बताया आपको कि यहाँ पर इस तरह सिखाया जाता है, आपको पता कैसे लगा?
3: पहले मैं स्कूल गेम खेला था, स्कूल में तो भैया आते थे प्रैक्टिस करने,
1: हाँ
3: उन्हीं के
1: हाँ
3: साथ आए।
1: स्कूल में कौन से गेम्स खेलते थे?
3: कबड्डी ही खेलते थे।
1: कबड्डी खेलने में कौन सी टेक्निक जो है सबसे बेहतरीन होती है, जिसमें जीत बिल्कुल लगता है कि अब जीत जाएंगे हम?
3: सर एंकल मारना और उसके बाद चैन मारना।
1: अच्छा,
3: हाँ ये बढ़िया टेक्निक है।
1: और कहते हैं सांस का बहुत बड़ा, ब्रीथ का बहुत बड़ा गेम होता है।
3: हाँ ये सर बहुत होता है, उसके बाद ना इसमें डर वर कोई वही नहीं रहता है, बिना डरे खेलो।
1: अच्छा, तो आप कहाँ कहाँ खेलने गए हैं अभी तक?
3: सर हम आंध्र प्रदेश गए हैं, तेलंगाना गए हैं और इधर बंगाल उंगाल साइड।
1: ये बताइए कि इस गेम में कितनी आपको प्रैक्टिस टाइम देना पड़ता है, कितना अभ्यास करना होता
3: सर?
1: है?
3: न्यूनतम सर सुबह 3 घंटे, 3 घंटे शाम तक।
1: तो डाइट भी कुछ विशेष बताते हैं कि कुछ भी खाइए?
3: नहीं सर, और बताते हैं डाइट कुछ भी थोड़ी ना, सर इसको घोटाले खा सकते हैं जब
1: जी
3: खेलना है तो, इतना तो
1: जी जी
3: सुबह डाइट रहता है।
1: और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम किसी भी गेम को खेल रहे हैं अगर, तो हमारी फिजिक बहुत अच्छी रहती
3: हाँ ये सब तो अच्छा रहता है,
1: है ना, और
3: क्योंकि
1: मेंटली भी हम अच्छे रहते हैं।
3: मेंटली भी बढ़िया रहते हैं, फिजिकल भी सब कुछ बढ़िया रहता है बॉडी के लिए।
1: जी जी
3: ठीक।
1: आपका क्या नाम है?
3: सौरभ कुमार।
1: आप कब से आ रहे हैं?
3: 2 साल हो गए।
1: 2 साल आपको हो गया?
3: यस सर।
1: और कहाँ के रहने वाले हैं?
3: अयोध्या जिला।
1: अच्छा, जब आप बाहर खेलने जाते हैं, नेशनल लेवल आप खेलने गए थे,
3: यस,
1: तो वहाँ से भी

0: और भी बाहर से भी बहुत से खिलाड़ी आए होंगे,
1: यस
0: तो वहाँ पे उनसे मिलकर आपने क्या सीखा वहाँ पर जब बाहर गए?
1: ये सीखा सर, और मेहनत करें और अच्छा खेलें। हम
0: हाँ
1: लोग
0: हाँ
1: हार गए थे वहाँ जाके, एक पॉइंट से फाइनल।
0: क्योंकि जब कभी हार मिलती है तो उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हार के आगे जीत होती है,
1: यस सर,
0: क्योंकि हम किस वजह से हारे तो हम उस पर काम करते हैं, है
1: यस
0: ना।
1: सर।
0: आपका क्या शुभ नाम है?
1: सत्यम पाल
0: आप भी ये स्पोर्ट्स स्टेडियम ढाबा सेमर में सीख रहे हैं कबड्डी।
1: जी
0: कबड्डी खेल आपको क्यों अच्छा लग रहा है?
1: सर, ये मिट्टी से जुड़ा है, प्लस इसमें इंटरेस्ट था मेरा।
0: आप कहाँ के रहने वाले हैं?
1: हम लखनऊ के हैं।
0: तो क्या आप भी नेशनल लेवल कहीं खेलने गए हैं? कहाँ गए?
1: स्कूली गेम मैंने खेला है छत्तीसगढ़ में,
0: अच्छा, तो वहाँ पर जो टीमें और आई होंगी उनसे मिलकर आपको कैसा लगा?
1: उनसे मिलकर अच्छा लगा, और ये देखा कि मतलब कैसे रहना चाहिए, कैसे स्पोर्ट्स प्लेयर रहते हैं और वो लोग कैसे स्ट्रैटेजी से खेलते हैं,
0: अच्छा,
1: वैसे
0: ब्रीथिंग
1: करते
0: के
1: हैं।
0: लिए क्या आप योगा वगैरह भी करते हैं घर पे?
1: हाँ होता
0: क्योंकि इसमें सारा खेल तो सांस रोकने वाला है।
1: हाँ वो तो है, मगर जैसे कि प्रैक्टिस होती है तो प्रैक्टिस में स्टेमिना बढ़ता है, स्टेमिना से ब्रीथिंग भी बढ़ती है।
0: आपका क्या शुभ नाम है?
1: कोमल यादव,
0: आप इस स्टेडियम में कहाँ से आ रही हैं सीखने के लिए?
1: हॉस्टल से।
0: लोकल अयोध्या की रहने वाली हैं?
1: नहीं, बनारस।
0: छात्रावास से यहाँ पे रह रही हैं? अच्छा, तो ये बताइए आपने कौन सा गेम चुना है जो उसको आप सीख रही हैं?
1: 400 मीटर एथलेटिक्स, हमें आगे वर्ल्ड
0: हाँ,
1: रिकॉर्ड बनाना है।
0: अभी देखिए इंडिया में जो है 100 मीटर का भी नेशनल रिकॉर्ड टूट गया। किसी ने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पर कोई जो 100 मीटर भी 10 सेकंड के अंदर पूरा कर लेगा। आप एथलेटिक्स में और कौन कौन सी रेस जो है वो सीख रही हैं?
1: 200 400।
0: आप कितने साल से सीख रही हैं यहाँ पर?
1: अभी तो हम लोग लखनऊ में थे, यहाँ ट्रांसफर हुआ है, 1 साल हुआ है।
0: और इसी स्टेडियम में श्रोताओं अब हम मिलने जा रहे हैं कुछ हॉकी प्लेयर्स से। आपका क्या शुभ नाम है?
1: तेजस्वी निषाद,
0: तेजस्वी निषाद जी, आप इस हॉकी को कब से खेल रही हैं?
1: 3 साल होने हैं।
0: लोकल यहीं की रहने वाली है कहीं बाहर से?
1: नहीं, प्रयागराज,
0: प्रयागराज से। यहाँ हॉस्टल में रह के रह
1: आपकी
0: रही?
1: साल चयन हुआ है।
0: तो आप कहाँ कहाँ अब तक खेलने गई हैं?
1: अभी तक दादर से नेशनल खेले हैं, राजगीर में हुआ था, और रांची में, राजगीर में कैंप लगा था और रांची में ही हुआ था।
0: तो नेशनल लेवल में तो वहाँ से बहुत सी टीमें आई होंगी,
1: हाँ,
0: तो आपने वहाँ जाकर क्या कुछ सीखा?
1: यही हम लोग पासिंग से खेल रहे थे,
0: जी,
1: अच्छा मिला मिला, टीम
0: क्योंकि जब तक हम कहीं बाहर नहीं
1: मिला।
0: निकलेंगे, बड़ी टीमों के साथ जाएंगे नहीं, तब तक हमारे खेल में उतना निखार नहीं आएगा,
1: नहीं,
0: है ना। तो हॉकी को ही आपने क्यों चुना? ऐसा क्या था हॉकी में?
1: हॉकी गेम मतलब कि इंटरेस्ट था।
0: जी, जैसे फुटबॉल भी बहुत ही स्पीड का गेम है और हॉकी भी बहुत स्पीड का गेम है।
1: नहीं, हॉकी में इंटरेस्ट था
0: जी
1: इसलिए।
0: जी तो हॉकी में आपका जो आइडियल प्लेयर कौन सा है, किसको आप पसंद करती हैं?
1: सविता पुनिया
0: आपका क्या शुभ नाम
1: सर,
0: है?
1: शिवम
0: शिवम, आप कहाँ से हॉकी खेलने यहाँ पे आ रहे हैं?
1: सर, यहीं बगल से 2-3 किलोमीटर है।
0: आप भी कहीं स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे खेलने गए
1: जी
0: हैं?
1: सर,
0: कहाँ गए हैं?
1: सर अंडर 19 खेले थे जालंधर में
0: अच्छा,
1: 2023 में, और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप खेले थे दिल्ली में, वो भी 2024 में, और सब जूनियर खेले थे वो भी दिल्ली में खेले थे 2022 में।
0: जब पूरी टीम के साथ यहाँ से आप गए होंगे,
1: जी सर,
0: तो जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पर पहुँचकर आपको दूसरे खिलाड़ी भी वहाँ मिलते
1: जी
0: हैं,
1: सर,
0: तो क्या कुछ वहाँ पे आपको सीखने को नई चीज़ें मिलती हैं?
1: सर सबसे पहले तो ये रहता है कि हमें टीम कॉम्बिनेशन बना के मैच जीतना रहता है, बाकी अदर टीमों को मैच देख के सीखना रहता है कि अगली टीम कैसे खेल रही है, हमारे अंदर क्या कमी है, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं।
0: आपका शुभ नाम?
2: चंचल मौर्या
0: चंचल मौर्या, आप कहाँ से इस स्टेडियम में आ रही खेलने के लिए?
2: जी, मैं मलिकपुर गांव से आती हूँ
0: जी,
2: और मैं बहुत ही छोटे घर से बिलोंग करती हूँ,
0: तो
2: तो
0: आप जब वहाँ से आती हैं तो जो लोग गांव में आपको पूछते होंगे तो वहाँ भी आप प्रमोट करती हैं, लोगों को बताती हैं कि चलिए मेरे साथ आप भी खेलिए वहाँ?
2: जी बोलती हूँ, पर मेरे साथ मेरी फ्रेंड आती है, गांव
0: जी,
2: से ही है।
0: तो
2: मैंने तो इस हॉकी स्टार्ट तभी किया उसकी वजह से, वो आती थी तो
0: अच्छा
2: उसको
0: अच्छा
2: देख के।
0: आप कब से खेल रही हैं?
2: मुझे 4 साल हो गए हैं,
0: 4 साल
2: पांच
0: हो गए आपको, तो आप तो फिर कहीं बाहर भी खेलने गई होंगी।
2: जी नेशनल खेला है,
0: कहाँ पे गई थी नेशनल गेम खेलने?
2: आंध्र प्रदेश काकीनाड़ा में हुआ था चैंपियनशिप
0: अच्छा,
2: 2025
0: तो
2: में।
0: क्या रिजल्ट रहा वहाँ पे?
2: मेरा गेम थोड़ा लूज था कि जो मैं
0: जी
2: प्रैक्टिस कर रही थी वहाँ नहीं खेल पाई, अपना परफॉर्मेंस नहीं
0: जी
2: दे
0: जी
2: पाई। पहली बार मैं गई थी खेलने तो वहाँ
0: मेन
2: पे
0: चीज़ ये होती है ना, जैसे मान लीजिए आप नेशनल लेवल खेलने गई हैं तो अगर नहीं भी जीती हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है
2: जी
0: वहाँ पर।
2: बहुत कुछ मिला, हमें क्या कमियां हैं, हम क्या अपनी गेम को और कितना डेवलप कर सकते हैं, अच्छा
0: हाँ
2: खेल
0: हाँ
2: सकते
0: हाँ
2: हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं अपनी गेम में, वो
0: जी,
2: सारी चीज़ सीखने को मिली मुझे।
0: ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि हॉकी में जो है थकावट बहुत जल्दी हो जाती है?
2: जी लगता है, जैसे 70 मिनट का मैच होता है उसमें भी 4 क्वार्टर होते हैं, तो हमें टाइम मिल जाता है, हम प्लेयर चेंज करके खेल लेते हैं।
0: आइडियल प्लेयर आपका कौन सा है, किसका गेम आपको सबसे अच्छा लगता है?
2: मेरा वंदना कटारिया है और बॉयज में है अविश्,
0: आपका शुभ नाम?
3: सब नीलाक्षी
0: आप इस स्टेडियम में कहाँ से आई खेलने
3: सर।
0: के
3: हम
0: लिए?
3: ये बगल के 1 किलोमीटर पड़ता है चांदपुर हरबंस सर, यहाँ से आते हैं।
0: तो आपके लिए तो बहुत बढ़िया होगा, घर के पास ही आपको
3: यस
0: स्टेडियम
3: सर,
0: मिल
3: सर
0: गया। तो आपने जब हॉकी को पहली बार चुना तो आपको कैसा लगा?
3: हमें बहुत अच्छा लगा सर, पहले तो हॉकी पसंद आई है स्टेडियम में।
0: अच्छा जी, इसके अलावा जब कभी आप खाली होती हैं तो जो नेशनल लेवल के गेम्स होते हैं टीवी पे आते हैं
3: यस
0: उनको
3: सर,
0: अभी आप देखती होंगी,
3: यस सर, फोन पे
0: तो
3: हॉकी
0: आपका भी कोई अच्छा प्लेयर है?
3: सविता पूर्णिया।
0: चलिए आकाशवाणी

0: अयोध्या की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप अपने खेल में इसी तरह से अपना खेल निखारते रहें और अयोध्या जनपद का नाम रोशन करें। धन्यवाद आप सभी।
1: और अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों की बात करते हैं और सबसे पहले चलते हैं क्रिकेट के मैदान पर। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर 28 जून को खेले गए ग्रुप ए के अपने आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर सेमीफाइनल की रेस से भारतीय टीम को बाहर कर दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अभी हाल ही में 7 महीने पहले 50 ओवर्स के एक दिवसीय मैच का वर्ल्ड कप जीतकर अपने नाम किया था। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया ने 171 रनों के लक्ष्य को एक ओवर बाकी रहते ही 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 170 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 27 गेंदों में 56 रन की तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें 6 चौकों के साथ अंतिम ओवर में हरमनप्रीत ने 3 छक्के भी लगाए। आखिरी ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने 23 रन बटोरकर टीम का स्कोर 170 तक पहुंचा दिया और ऑस्ट्रेलिया के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए लक्ष्य हासिल कर लिया। ग्रुप स्टेज में भारत ने 5 मैचों में से 3 मैच ही जीते, लेकिन अंतिम मुकाबले में हार के कारण टीम शीर्ष 2 में जगह बनाने से चूक गई और टूर्नामेंट से ही बाहर हो गई। वनडे विश्व चैंपियन भारतीय महिला टीम का भले ही टी20 विश्व कप का सफर जल्दी खत्म हो गया, लेकिन टीम ने क्वालिफाई कर एशिया का कोटा हासिल कर लिया। साथियों, क्रिकेट में जब हम चैंपियन बनते हैं तो हमें पूरी टीम वर्क के साथ लगातार मैचों में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है, तभी हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं और फिर से चैंपियन बनते हैं। आज मेंस क्रिकेट टीम में इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि 3 क्रिकेट की टीमें तैयार की जा सकती हैं, लेकिन महिला क्रिकेट टीम में वैसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टी20 के पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। 125 के टारगेट को ऑस्ट्रेलिया ने 13वें ओवर में ही पूरा कर लिया। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 40 रनों से हराकर फाइनल में बीते रविवार 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला किया। लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर बीते रविवार 5 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच महिला टी20 विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ये चौथी भिड़ंत थी। इसके पहले तीनों ही बार जीत ऑस्ट्रेलिया के हाथ लगी और चौथी जीत भी ऑस्ट्रेलिया के नाम रही। टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम रही, उसने 7वीं बार खिताब जीता है। उसके अलावा इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड एक एक बार चैंपियन बनी है। फाइनल में इंग्लैंड ने 20 ओवर्स में 150 रन ही बनाए, ये टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने 18वें ओवर्स में 3 विकेट खोकर बना लिया। ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से 7वीं बार 7वें महीने में ये जीत हासिल की। यही नहीं, वुमेन्स ऑस्ट्रेलिया ने वनडे वर्ल्ड कप भी 7 बार जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया टीम की विकेट कीपर बेथ मुनी को चुना गया। इस मैच में मुनी ने 64 रन बनाए। लिचफील्ड ने 16 गेंदों में 48 रन बनाए। इन दोनों ने मिलकर टीम के लिए 100 रन की पार्टनरशिप भी की। सिक्सर किंग वैभव सूर्यवंशी भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 5 जुलाई को मैनचेस्टर इंग्लैंड में 15 साल 99 दिन में इंग्लैंड के साथ दूसरे टी20 में अपना पहला मैच खेलकर सचिन तेंदुलकर और शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वैभव ने इंटरनेशनल क्रिकेट की सिर्फ 3री गेंद पर छक्का जड़ दिया। भारतीय पारी के 3रे ओवर में जोफ्रा आर्चर पहली बार वैभव के सामने आए। वैभव ने घुटना टेकते हुए पहली ही गेंद को विकेट कीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया। ये उनके इंटरनेशनल करियर का पहला छक्का था। वैभव ने इस मैच में 10 गेंदों पर 2 छक्कों की मदद से 14 रन बनाकर अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का आगाज किया। हालांकि उनका पहला इंटरनेशनल मैच जीत के साथ यादगार नहीं बन सका। इंग्लैंड ने 191 रन का टारगेट 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वैभव इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने वाले दूसरे यंगेस्ट प्लेयर भी बन गए हैं। पाकिस्तान के हसन रजा सबसे युवा खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 1996 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 14 साल 227 दिन की उम्र में डेब्यू कर लिया था। और उधर महान बल्लेबाज द वॉल के नाम से मशहूर और भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ ने आधिकारिक तौर पर भारत की अंडर 19 में अपना सफर शुरू कर दिया है। श्रीलंका में श्रीलंका अंडर 19 के खिलाफ खेले जा रहे पहले अनऑफिशियल वनडे मुकाबले में अन्वय को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, जो उनके क्रिकेट करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। और अब बात करते हैं फुटबॉल की। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल 2026 के रोमांचक मुकाबलों का सिलसिला तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। राउंड ऑफ 32 की कड़ी चुनौतियों और उलट फेरों के बाद अब टूर्नामेंट में केवल 16 टीमें ही बची हैं, जिनके बीच खिताबी जंग और तेज हो गई है। राउंड ऑफ 32 का सबसे चर्चित मुकाबला अर्जेंटीना और केप वर्डे के बीच रहा।

0: अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने गोल किया, लेकिन केप वर्डे ने शानदार संघर्ष करते हुए मुकाबले को बेहद रोमांचक बना दिया। अंत में अर्जेंटीना 3-2 से जीतकर अगले दौर में पहुंच गया। राउंड ऑफ 16 में पहुंचने वाली टीमों में कनाडा, ब्राजील, पैराग्वे, मोरक्को, नॉर्वे, फ्रांस, मेक्सिको, इंग्लैंड, बेल्जियम, अमेरिका, स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, मिश्र, अर्जेंटीना और कोलंबिया शामिल हैं। सभी टीमों ने अपने अपने राउंड ऑफ 32 मुकाबले जीतकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और फ्रेंड्स, अब टूर्नामेंट पूरी तरह से नॉकआउट चरण में पहुंच चुका है, जहां हर मैच करो या मरो का होगा। अर्जेंटीना, ब्राजील, फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और पुर्तगाल जैसी दिग्गज टीमें खिताब प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं, जबकि मोरक्को, नॉर्वे, कनाडा और कोलंबिया जैसी टीमें उलटफेर करने की ताकत रखती हैं। राउंड ऑफ 16 के विजेता क्वार्टर फाइनल में पहुंचेंगे, इसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल के लिए संघर्ष करेंगे। अब हर मुकाबले में हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, जिससे प्रतियोगिता का रोमांच और बढ़ा जाएगा। निशानेबाजी। होनहार निशानेबाज जतिन ने जर्मनी में आयोजित जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत और कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ा दिया है। जतिन ने कड़ी मेहनत की, उसने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अर्जित किए। खंडवा जिले के 18 वर्षीय कुश्ती खिलाड़ी नीरज पटेल ने थाईलैंड में एशियन कुश्ती में जापान के नारुसेम्बा को 4-3 से हराकर भारत के लिए कांस्य पदक जीत लिया। नीरज ने अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में 55 किलोग्राम वर्ग में प्रदर्शन करते हुए ये पदक हासिल किया। भारतीय हॉकी टीम ने 28 जून को लंदन में खेले गए अपने अंतिम FIH प्रो लीग मुकाबले में इंग्लैंड को शूटआउट में 3-2 से हराकर अभियान का शानदार समापन किया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों के बीच मुकाबला गोल रहित रहा, इसके बाद भारत ने शूटआउट में जीत दर्ज कर बोनस अंक हासिल कर लिया। शूटआउट में भारत की ओर से अभिषेक, शिलानंद, लाकरा और हार्दिक सिंह ने अपने प्रयास से गोल किए। वहीं शानदार डिफेंसिव प्रदर्शन के लिए डिफेंडर संजय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। भारतीय टीम ने पूरे अभियान में 4 मैच जीते, 5 ड्रॉ खेले, 2 शूटआउट बोनस अंक अर्जित किए और 7 मुकाबलों में हार का सामना किया, जबकि पाकिस्तान अपने सभी 16 मुकाबले हार कर सबसे निचले स्थान पर रहा। बेल्जियम ने टूर्नामेंट चैंपियन के रूप में 39 अंकों के साथ लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए सीधा क्वालिफिकेशन भी हासिल कर लिया है। आकाशवाणी अयोध्या केंद्र पर तैयार किए गए खेल दर्पण कार्यक्रम को समाप्त करने की अब अपने बरसों पुराने रेडियो मित्र AJ अमरजीत को आज्ञा दीजिए। खेल दर्पण में वाचन, संकलन और संपादन अमरजीत सिंह का और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता सरस्वती पाठक। आप सभी हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सेहतमंद रहें और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना और अपनों का सबका बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। आज के कार्यक्रम से अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के अयोध्या केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11:30 होने को हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

कार्यक्रम गीतांजलि सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी रोहित कुमार कुकरेती का प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और सुन रहे होंगे अपना कार्यक्रम गीतांजलि, जिसमें आप सभी भेजते हैं अपने पत्र और पत्रों के माध्यम से आप अनुरोध करते हैं अपने सबसे प्रिय गीत को सुनने का। आइए सुनते हैं आज के गीतांजलि कार्यक्रम का सबसे पहला गीत कौन सा है। श्रोताओं, सबसे पहला गीत है फिल्म जहर से। गायक कलाकार हैं आतिफ असलम और इस गीत को सुनने की आकांक्षा रखते हैं आप सभी श्रोता। मोहल्ला बारादरी महमूद खान, रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई मोहम्मद, आमिर और नगमा नाज मंसूरी, सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े, आकाश कुमार, पंगरा शिंदे तहसील वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से टेलर रामचंद्र धोंडिबा इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू रामाबाई सुरेंद्र, मयूरी सुरभि मंजुषा, नामदेवराव, मास्टर विलास शिंदे पाटिल, सुनील चपड़े अशोकनगर वसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से, दीपाली राजू टोके पार्वती सखाराम, रोहित सोनू मोनू जीजा माता नगर हिंगोली महाराष्ट्र से, लक्ष्मी उत्तम कामले तामसा रोड तहसील हदगांव से, श्यामराव पड़घणे बेबी विठल पड़घणे, मोहल्ला मजार चांद श्याम मियाँ रामपुर से, मोहम्मद रमजान खान, अदनान अली मंसूरी, अरमान अली मंसूरी, रायना चंदनी, अनमता राहेमन और आशु भाई मंसूरी, बिस्मिल्ला मस्जिद रामपुर से फौजिया रोशनी और शायना काजल, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश, ग्राम बग बुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रणामिका उत्कर्ष नेताम, डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजभैये, राधिका गजभैये, बेबी अनिष्का, तजमा गजभैये, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन, जिला बहुंगीर तेलंगाना से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, यूसुफुद्दीन, फजान लल्ला, फरहान ला, समीर आजमीन गुड़िया, पुराला धरणता मालेगांव से दत्ता घायल, सुनीता भाई घायल, सानिका और गजानन घायल, मेन रोड तिलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा सुनील, साहिल और कुमारी सुजाता पोहरकार, खुर्जा उत्तर प्रदेश से अनुरोध करता है तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदर और अंकुश अरोड़ा, टीढ़ी मल्होत्रा सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से इनके साथ ही ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक नवनीत, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल, बठिंडा रोड डब्बाली से राजेंद्र नागर, अंजू नागर और मोहित नागर, सरोचोक चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आसमा सालिया, शोएब खान, पोत्रा मुश्तबा खान, रहू भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर, पंडित नगला बाईपास कोहिनूर तिराहा के पास से डॉक्टर अख्तर हुसैन, बहरून नशा, असलम हुसैन एडवोकेट, डॉक्टर महमूद हसन और बेबीपुर से मकसूद हुसैन और नाजिम अली। तो लीजिए आप सबके अनुरोध पे आइए सुनते हैं फिल्म जहर से आतिफ असलम के स्वरों में ये सुंदर सा गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म गैंगस्टर से गाया कलाकार हैं सुनिधि चौहान और अभिजीत। इस गीत को सुना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू और चरडोंगरी बेपरिया से दुर्गा राम साहू, पुणे से प्रियंका आर्य, पंकज वाडोदे, जरूर वरूर से बाबा साहब वाडोदे और मीनाक्षी चरपे, लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड वंदना नगर इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति, प्रयाग चौधरी, MIDC चंदनगर सतारा से।

सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा श्रमण, श्रमेण वाघमारे, वारणा शाहपुर कोल्हापुर से विजय चौहान, तेजस्विनी, अंकिता, अनिकेत और माया चौहान, गणेशपुर गंज डंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी, फिरासत हुसैन, मुनावर लल्ला, पप्पू भाई बिजली वाले, शिक्षमा परवीन, अलक कमर बेगम, अफसाना बेगम, मैज अभिषेक और मिर्ज़ा नसरीन बेगम, जतूका किशनपुर से आलम दिलकर, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान रजा, आलम शेख और शबाना आलम, साथ में चांदी नाज, बागपत उत्तर प्रदेश से मास्टर मुनीर खान, संजय ढेंगे, अब्दुल सत्तार अब्बासी, परी महल कासगंज से आवाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान, मोहल्ला पो यलगुड़, जिला कोल्हापुर से अतुल गौदमी, धमदिना, अरुण काले, ए डी कांबले, जिला कोल्हापुर से ही हमारे श्रोता हैं जो हमें इसी गीत को सुनने का अनुरोध करते हैं, तुषार कुरने, प्रासिक कांबले, एकता बिघना, उत्कर्षा और अरुण, बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद मुणत, नेहान जैन, दीपक मैंग मुणत, चेतन नहाटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मुणत, वार्ड नंबर एक भोपाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार और अर्पिता, जाबरूनता अर्धापुर से अनुरोध करता है दुर्गादास जोशी, गंगाधर, गजानन, संजय, आशीष, पृथ्वीराज, कुमारी साध्वी और परमणी हुन, गणेश और साथ ही परिवार के सदस्य, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, पुराना तबलाव डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी, सारिमपुर बक्सर से आरएसडी अंसारी, इंदिरा विहार दिल्ली से डब्ल्यू अंसारी, जेल रोड बक्सर से नरेंद्र कुमार यादव, चटिया पोखरा डुमराओं से सुनील कुमार वर्मा और मुस्तफ़ा पाद, दिल्ली से लाल बाबू दीवाना। तो लीजिए आप सब अनुरोध करता हूँ कि पसंद का ये गीत जो कि अभिजीत और सुनिधि चौहान के स्वरों में है, फिल्म गैंगस्टर से।

कार्यक्रम गीतांजलि का अगला गीत फिल्म क्रिमिनल से गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और कुमार सानू, और इस गीत को सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने कंवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली। डाबर तालाब लोनी से रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा महाराज। बीड शहर महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया, पराग, दीपक, प्रदीप और केशव पटेल, साथ में रामनिवास अग्रवाल। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, मोहम्मद मीर हमजा। कोल सिटी बरका काना से अफजाल ताज, शाइन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, नेपी साहनी और मोहम्मद अफजाल इब्राहिम। जमशेदपुर से डॉक्टर तस्नीम कौसर, डॉक्टर इशिता साहनी, डॉक्टर प्रियंका मोदी, डॉक्टर सोनम वली और अफजाल मलिक। लदावली जिला मुरादाबाद से अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना। मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, अनमोल, धर्मवीर सिंह लाठी, विवान, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण सिंह ग्रोवर, रमेश मिगलानी। शहबाजपुर कला कस्बा पागबाड़ा से मजाहिर हुसैन अंसारी, बेगम रईसा नाज, बेटा मुजक्किर, बापू मजहर, असीम और बेटी सुमैया महक। लक्षनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, भोपका भाटापारा से देवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित, सुमित्रा साहू। मोवा रायपुर से गोपेंद्र कुमार साहू और मंजू साहू। सादुल शहर राजस्थान से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वी प्रकाश चौहान। राजौरा रोड मीठी कुएं रामपुर से आकाश रस्तोगी, दीपक रस्तोगी, रवि रस्तोगी, अर्पित रस्तोगी, अभय रिया, आरुष फिरासत। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयस नायक, शोभा नायक और समस्त परिवारगण। तो लीजिए आप सब अनुरोध करता हूँ कि पसंद का ये गीत चुकी है फिल्म क्रिमिनल से कुमार सानू और अलका याग्निक के सरों में।

आकाशवाणी रामपुर से श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से, गायक कलाकार हैं कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानो। इस गीत को सुनना चाहें आप सभी श्रोताओं ने। इंदिरा विहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम वलीउल्ला नूरजहां, राजनाथ गांव से यकूब आसमा, यूसुफ इमरान, इरफान आसमा, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी, अदीबा तिवारी, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ, शाइना और निमान शर्मा, कनेरा मोहल्ला पटियाला से भत्ता परिवार, मुकेश भत्ता, नीलम भत्ता, नितिन पलक, गीतू, निहारिका हार्दिक, करण और वंश भत्ता, मोहल्ला चामुंडा कस्बा नरौली से इंतजार राही, शादाब राही, मेहताब निशा, सिकंदर राही, साहिल अंसारी, कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, श्रीमती उषा रॉय, अमित कुमार और हैप्पी रॉय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रॉय, श्रीमती रोशनी रॉय और प्रांजल रॉय, पंजूसराय संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, सैयद मुख्तार अंसारी और सैयद असद अंसारी, मीरगंज से कल्लू मिस्त्री, मिलक भोजपुर, आशा जिला मुरादाबाद बड़ी मस्जिद के पास से रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन, शहजाद हुसैन और आसमा भी, महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोटके, नंदा बोटके और हनुमान बोटके, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक और ज्ञानेंद्र वर्मा, जिला मुरादाबाद संभल रोड बस्तौर से अतर सिंह सैनी, मुन्नी पवित्रा, अजय सिंह, आंचल आकांक्षा, आकाश विक्की सैनी, मानवी आयुषी, आराध्या रुद्र, नैना सैनी, हीरावती देवी और सभी सैनी परिवार के सदस्य, रामगंज खड़वा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, संजय महोबिया, कविता विशाल, विवेक, सपना, शिवी सलोनी, राजू चराटे और पिंटर बाबू, शीतुलजा भवाना भवानी, माता वार्ड संख्या, वार्ड खंडवा से अनिल वेंचुरकर, मंगला शोभित वेंचुरकर, उदयनगर से मोहित रत्न पारखी, स्वाति मिष्टी और मनस्वी रत्न पारखी, सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा अदीबा, बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सैफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू, जेल रोड मथुरा से वसीम, आसमा बेलदार, अखरम आसमा बेलदार, उल्ला आसमा बेलदार। तो लीजिए आप सब श्रोताओं के अनुरोध पे सुनते हैं फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति के स्वरों में ये गीत।

फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के इसी गीत के साथ इजाज़त दीजिए अपने रेडियो साथी रोहित कुमार कुकरेती को कार्यक्रम गीतांजलि संपन्न करने की। नमस्कार।

0: के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

रामपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सवेरे 5:55 पर अपनी कल की पहली सभा के कार्यक्रमों के साथ मीडियम वेव और FM पर एक साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आगे